लौटने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552। स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
1: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 trillion से बढ़ाकर $30 trillion करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिनी अमरसूर्या को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमरीका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।

0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने डीएनए किट, अर्भिक्रमक और डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधे उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है, वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस यह सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष, मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मॉनसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए, राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Union Cabinet approves Railway's 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's singles semifinal at US Open in New York. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at a total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said, of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees.

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: हे, यू आर ट्यून्ड इनटू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
5: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
6: मुरादाबाद, तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
7: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली। छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में। मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
6: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
8: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

दोस्तों कहते हैं जिंदगी है तो समस्याएं आना तो स्वाभाविक है और इंसान के जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं। बस इंसान को अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वो चाहे तो उसका सलूशन ढूंढ ही सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। सुप्रभात, नमस्कारम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। 10 सितंबर की सुबह, समय हुआ है 8:21। आज दिन है गुरुवार का। अपने गुरुओं का नाम लेकर कीजिए आज के दिन की शुरुआत। मैं देता हूँ आज के दिन की आपको ढेरों मंगल शुभकामनाएं। श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के स्टूडियो से लाइव हूं और इस वक्त आपको समय भी बता दिया है। मौसम के हालचाल जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको बता देता हूं कि इस वक्त आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पर एक बहुत ही अमेजिंग शो के साथ जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग, और मैं हूँ आपका प्यारा सा दोस्त आनंद। अब से लेकर 10 बजे तक रहूंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर आपके साथ, जहाँ पर होंगी बातें ढेर सारी दिल से दिल तक इसी स्टेशन पर। हाँ जी, तो देखिए, अच्छा गीत संगीत जब होता है तो मन जो है अंदर से प्रसन्न हो जाता है सुबह सुबह सुनकर।

ढेर सारे श्रोता साथी सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ जाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे उम्दा संदेश पहुंचाते हैं, बेहतरीन लाजवाब मैसेज करते हैं, तो मन खुश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए श्रोताओं, आज के सफर की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ। लेकिन उससे पहले बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, इंसान है तो समस्याएं आना स्वाभाविक है, मैंने पहले भी कहा। और मुझे ऐसा लगता है कि हर सुबह आपके लिए एक नई एनर्जी लेकर आती है, एक नई ऊर्जा, और साथ ही साथ एक नया विश्वास भी लेकर आती है कि जो चीज़ कल नहीं हुई वो आज ज़रूर हो जाएगी। बस आप अपना सही करने का अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास कीजिए। जब आप सही दिशा में प्रयास करेंगे, सही दिशा में आप प्रयत्न करेंगे, तो यकीन मानिए आपका वो काम ज़रूर सफल होगा। बस उसके लिए आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी, उसको मेंटेन रखना है। और अपने अंदर से जो है भाई साहब, किसी के बारे में भी गलत मत सोचिए, अच्छा सोचिए सबके लिए, अपने लिए, तो यकीन मानिए ऊपर वाला ज़रूर आपके साथ अच्छा करेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को और यह है FM मुरादाबाद। एक खूबसूरत गीत के साथ कर रहे हैं आज के सफर की शुरुआत, तो मैं और आप मिलकर चलते हैं एक बेहतरीन गीत की ओर, और लौट कर आएंगे तो करेंगे आपसे ढेर सारी बात। कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: भाई साहब, ये गाना इतना ब्यूटीफुल है ना, मतलब मुझे आई रिमेम्बर, आज भी याद है वो बचपन में अपन छोटे वाले फोन चलाते उसमें बजता था ये गाना, कितने लोगों को याद है, आई डोंट नो, बट फ्लैश बैक में लेके चला गया। वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ हैं आप। ढेर सारे मैसेज आपके पहुंचे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत मैसेजेस के लिए, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं भैया, शुक्रिया आपका करना चाहता हूं, इतने खूबसूरत मैसेज आप करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों के लिए, और बड़ी पॉजिटिव मैसेज आप करते हो ना, बड़ा मजा आता है, मतलब थैंक यू सो मच इतने प्यारे मैसेज करने के लिए सबसे पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल, और हाँ ताली बजाओ, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलो आगे बढ़ते हुए, आपका वार्म वेलकम कर दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ देखिए ढेर सारे मैसेज आए, देखिए हमारे पास प्रणव का मैसेज आया, लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग प्रणव जी, ये लिखते हैं गाने अच्छे लगाते हो यार, सुबह सुबह मजा आ जाता है और इतनी अच्छी अच्छी बातें आप करते हो, और थैंक यू सो मच मेरे भाई। मैसेज मेरे पास पहुंचा है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज शिखा, हाय शिखा हाउ आर यू, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई होप आप भी अच्छे होंगे यार। एक और मैसेज पहुंच गया मेरे पास, हाय आनंद कैसे हो, मैं बढ़िया हूँ जी, बढ़िया, आई एम गुड। ये मैसेज हमारे पास किन क्या पहुंचा है, हाय डॉली गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं, डॉली लिखती हैं आनंद सर गाने सुन के बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह बातें अच्छी हो रही हैं, ऑल राइट जी, ऑल राइट। चलो हमारी कोशिश होती है कि यार बस सुबह सुबह आपको किसी भी तरीके से अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और आपकी सुबह बस झकास हो जाए, किसी भी तरीके से मजा आ जाए बस आपको, मेरा ये मतलब है।
1: यू आर लिसनिंग टू द बिगेस्ट हिट्स, द बिगेस्ट हिट्स नॉनस्टॉप।
0: हाँ जी बिल्कुल, अभी आप नॉनस्टॉप बिगेस्ट हिट्स एंजॉय करेंगे मेरे साथ, और ऑफ कोर्स अच्छे गाने सुबह सुबह सुन के मजा आता है। एक मैसेज आया है, कल करे सो आज करे सो अब, आनंद जी बस जिंदगी में जो है इसी बात के साथ आपको आगे रहना है, और अपनी जिंदगी में हर दिन कुछ नया ट्राई करना है, लाइफ तो आपकी परीक्षाएं लेती ही है, बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ इस बात से यार। दोस्तों सुबह सुबह का समय है, हम आपको सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जीवन में भाग दौड़ तो हर किसी की ज़िंदगी में है, लेकिन आपको भागना नहीं है, आपको दौड़ना नहीं है, आपको थोड़ा सा रुकना है। जब आप इस भीड़ में थोड़ा सा रुकते हैं तो आपको ये पर्सनली रियलाइज़ होता है कि हाँ मुझे क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं। जब आप भागम भाग में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाती हैं, यकीन मानिए जब हम ऑफिस जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं और हमें बहुत जल्दी होती है तो बहुत सारी चीज़ें हमारी रह जाती हैं, फिर हमें बाद में याद आती है ना, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको पूरी कूल एंड काम के साथ चीज़ों को करना है। और सुबह का समय है, जब आप अच्छी सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो यकीन मानिए पूरा दिन बहुत अच्छा हो जाता है, और ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है, ये सच में बहुत ही जैसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स हैं, अगर आप इनको एक बार अप्लाई करेंगे अपने जीवन में तो यकीन मानिए ये आपको बहुत आगे लेकर जाएंगी। और अभी हम इसी बात के साथ आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर जो आप मैसेज कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक खूबसूरत गीत आपके रेडियो सेट पर निकाल रहा हूँ, और इस गीत के बाद वापस आता हूँ, फिर मैं आपको आज के दिन के बारे में बताऊंगा, आज का दिन क्यों खास है, क्या स्पेशल है आज के दिन में, और बाकी आप लोग जो मैसेज कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम ये भी अभी शामिल करेंगे, लौट कर आएंगे। तो इसी चैनल पर आप ऐसे ही ट्यून इन रहो यार आनंद के साथ, सुनते रहो 89.6 FM, RJ आनंद को सुन रहे हैं आप मुरादाबाद रेडियो पे, और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो। मौसम बहुत औसम है, चलिए एक काम करते हैं, मौसम के हाल आपको फटाफट बता देते हैं इमिडिएटली, क्योंकि मौसम के बारे में आपको जानना है ना, मुझे पता है।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गाना आप तक पहुंचेगा बस जरा सी देर में, लेकिन उससे पहले वेदर अपडेट मैं आपको दे देता हूं। मौसम क्या कह रहा है आज का। सो मौसम कुल मिला के मौसम हो रहा है, सुबह की धूप जब आप देखोगे तो आपको मैं बता रहा हूँ ऐसा लगे आप सर्दियों में एंटर हो गए। हालांकि सर्दी आप धीरे धीरे आ ही रही है, हम सर्दियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सुबह की धूप सच में बड़ी प्यारी लगती है यार, है ना, और सर्दियों की तो खास करके। तो फिलहाल अभी जो है सूर्य देवता प्रकट रहेंगे, हल्के फुल्के बादल रहेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस अभी करंट टेम्परेचर है। एंड अगर हाइस्ट की बात करूँ तो 33 डिग्री पहुंचेगा आज ये, और लोएस्ट की बात करूँ तो 26 डिग्री पहुंच सकता है। अगर ह्यूमिडिटी की बात करूँ तो 94% दिखा रहा है, यानी कि गर्मी आपको लगेगी वैसे वाली तो नहीं, लेकिन हल्का फुल्का पसीना रहेगा और हवा 2 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, एयर क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये था आज का वेदर का हालचाल। फिलहाल के लिए एक अच्छा गाना, उसके बाद वापस आ रहा हूँ इसी स्टेशन पर, आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ। 8:40 हो गए स्टेशन क्लॉक में।

0: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: मुरादाबाद, तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
3: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
2: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद, 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

देखो भाई साहब, एक साथ जब दो गाने बज जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि भैया कौन से वाले गाने की हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मेरा जो म्यूजिक चल रहा था वो मैंने इसलिए भी प्ले कर दिया था ताकि देखता हूँ कितने सारे मैसेज, और इधर इतने मैसेज आने लग जाते हैं ना भाई, मैं क्या बताऊँ। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, आनंद के साथ सुन रहे हैं आप एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक। और तमाम सारे श्रोता मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लगातार आपके संदेश मुझे मिल रहे हैं और मैं बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ पूरे दिल से आपका यार। इतने संदेश प्यारे प्यारे आप पहुँचाते हो, मजा आता है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं इतना कहना चाहता हूँ आज की सुबह कि अगर आप भी अपने मन में एक अच्छी उम्मीद लेके आज घर से बाहर निकल रहे हैं, तो मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज वो काम आपका जरूर सक्सेसफुल होगा। मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। 8:53 हो रहे हैं। बात करते हैं आज के दिन के बारे में। आज 10 सितंबर की तारीख क्यों खास है इतिहास के पन्नों के लिए।

चलिए श्रोताओं, बात करते हैं आज के दिन के बारे में। तो 1966 में भारतीय सांसद ने पंजाब और हरियाणा के राज्य को गठन को मंजूरी दी थी आज के दिन श्रोताओं। एंड इसके अलावा आज के दिन आपको बता दें, भारत और चीन के बीच सीमा विवादों को दूर करने के लिए पहला समझौता हुआ था 1993 में आज के दिन श्रोताओं। इसके अलावा आपको बताते चले, आज के दिन 1887 को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था आज के दिन। 1972 को बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अनुराग कश्यप जी का भी जन्म हुआ था श्रोताओं आज के दिन। इसके अलावा 10 सितंबर को एक और बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जो है दिवस मनाया जाता है, और इस पे बात करना बहुत जरूरी है। इस पे मैं डेफिनेटली बात करूंगा, थोड़ी देर में जब लौट कर आऊंगा तो इस पे विस्तार से चर्चा करूंगा श्रोताओं। आपको बता दें, हवाई द्वीप में पहला थिएटर खुला था 1847 में आज ही के दिन। ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपके साथ साझा करी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां आप सुनते हैं डेली आरजे आनंद। तो कुछ ना कुछ नया और स्पेशल होता है हर दिन की तारीख में, और हर दिन हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ नया होता है, या तो कुछ सीख कर जाते हैं या फिर कुछ जीत कर जाते हैं। ऐसे ही ट्यून इन रहिएगा और सुनते रहिए आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ढेर सारे मैसेजेस के लिए शुक्रिया। एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपसे पूछने वाला हूँ जरा से दिन में। चलिए अभी आपको मिलेगी नेक्स्ट आवर में, तब तक के लिए आप ऐसे ही अच्छे गाने और अच्छी बातों के लिए ट्यून इन रखिए यार आरजे आनंद के साथ। ऐसे ही मजे लेते रहिए। कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे सुबह सुबह मैसेज कर सकते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपको लगता है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू शेयर विद मी 9837 8986 8986। दिस इज माई नंबर।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
7: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
8: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारी, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
7: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
9: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
3: बिंदास मॉर्निंग।
7: एग्जैक्टली आप सही वाला शो सुन रहे हो, सही वाले स्टेशन पे भी हो। लेडीज एंड जेंटलमैन वेरी गुड मॉर्निंग। अभी तक तो बहुत सारे लोग निकल चुके होंगे अपनी डिस्नी पर पहुंचने के लिए। भैया मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हो आप? मुझे पता है भैया जिनकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है ना उनके लिए थोड़ा सा हो जाता है सुबह सुबह भागम भाग वाला टाइम। हेलो जी, कैसे हालचाल? यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आनंद के साथ सुन रहे हैं। ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो बंदे का नाम आनंद है। बंदा हाजिर हो गया है, दिस इज माय लास्ट आवर लेडीज एंड जेंटलमैन। और यार जिंदगी में ना दुख सुख तो आते रहते हैं, लेकिन असली दोस्त आपके वही होते हैं जो आपके हमेशा नियर बाय खड़े होते हैं, बिना सोचे समझे आपकी बात समझ जाते हैं।
10: सुख होवे तुसी मेरे,
7: आने वाला गाना
10: अपनी यारी नु होगे देख किन्ने साल यारा।
7: जरा सी देर में बहुत ही बेहतरीन ट्रैक आप एंजॉय करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर।
10: सुख होवे तुसी मेरे नाल यारा, अपनी यारी नु होगे देख किन्ने साल यारा।
7: जरा सी देर में तो ये गाना आएगा ही, इसके अलावा और भी अच्छे गाने आएंगे। और अभी फिलहाल यहाँ पर आपके जो ये प्यारे संदेश आ रहे हैं ना, इसके लिए थैंक यू करना चाहता हूँ यार पूरे दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे आनंद जी, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? हेलो, इस वक्त मैं अपने ऑफिस के लिए निकल चुका हूं, मैं काशीपुर जा रहा हूं, आपका शो एंजॉय कर रहा हूं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफी अच्छे गाने आप प्ले करते हैं, सुनकर सुबह सुबह बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच, मेरी भी पूरी पूरी कोशिश होती है कि सुबह सुबह आपको ऐसे गाने सुनाए जाए ये आपकी सुबह जो है वो और ज्यादा औसम हो जाए, और ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाए। एक मैसेज और आ गया, हाय मॉर्निंग मॉर्निंग आनंद, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, मैं बढ़िया हूं जी, गुड मॉर्निंग। ये मैसेज तो आपने कर दिया लेकिन अपना नाम नहीं लिखा यार, अगर आप मैसेज वैसेज करो तो नाम वाम लिख दिया करो यार। एक और बहुत ही प्यारा मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज पल्लवी, कैसे हो आनंद जी? मैं बहुत अच्छा हूँ। ये लिखती हैं, आनंद जी सुबह सुबह बस इतना ही कहना चाहते हैं आपके रेडियो के माध्यम से कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स आना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है। अरे वाह, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी सही कहा आपने, कुछ लोग मेहनत भी करते हैं मैम, ऐसा नहीं है, लेकिन बस वही है ना कि जब समय नहीं होता है तो वो मेहनत भी कुछ नहीं कर पाती है। अभी के लिए आगे बढ़ेंगे इस गाने के साथ।
10: समझा नहीं ये दिल, इसको हम तो रहे समझा।

0: समझाते।
1: अभी भैया मीटा ने अपना एक नया पर्सनल AI एजेंट जो है वो बना दिया है, AI एजेंट बनाया है, और ये क्या करने वाला है, इसको लॉन्च किया है, क्या है इसका विजन, डेफिनेटली बताऊंगा। आज 10 सितंबर से 25 सितंबर तक क्या स्पेशल होने वाला है इस पे बात करने वाला हूँ, और एक बहुत ही अच्छी चीज स्टार्ट होने वाली है कल से, इस पे बात करेंगे। अच्छी बात है यार, बातों को हैंगओवर होते रहना चाहिए। कुछ और खास चीजें हैं जो देश दुनिया में चल रही है वो आपको बताऊंगा फटाफट से इस स्टेशन पर। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अच्छा सा सवाल लेकर जल्दी से वापस आता हूँ।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग अभी आप एंजॉय कर रहे थे आनंद के साथ, बेशरम मूवी का एक गाना। फिलहाल घड़ी देख लो बाजी, क्या टाइम हो रहा है, 9:16। देखने में लगता है आरजे आनंद भोला, घड़ी मिलाओ तो हो गए 9:16।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
0: एग्जैक्टली। मेरा नाम आनंद है, गुड मॉर्निंग। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपके जो प्यारे मैसेज आए हैं उसके लिए दिल से थैंक यू करना चाहते हैं, इतने वंडरफुल मैसेज के लिए। थैंक यू सो मच जनता इतने प्यारे मैसेज करने के लिए। और ऑफ कोर्स मुरादाबाद के रेडियो पे जब आनंद होता है तो ये सफर माइक से दिल तक हो जाता है, कनेक्शन कुछ खास बन जाता है। चलिए जी, सुबह सुबह का टाइम है, जो बच्चे दूध सूद पी के निकल रहे हैं अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ बच्चे स्कूल पहुंच चुके होंगे पाजी, बहुत सारे सुबह सुबह। आई नो बच्चों का टाइम स्कूल का जल्दी हो रहा है ना, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। आप भी बच्चों को छोड़ के आ रहे हो, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है, ऑफिस पहुंची। और फिलहाल मैं जरा इन तक पहुंचता हूँ, ये क्या पहुंचा रहे हैं आज की सुबह।
6: गुड मॉर्निंग सर,
0: गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया।
6: मैं फिरोज फातिमा,
0: अरे वाह,
6: शायरी सुनाना चाहती हूँ।
0: अरे श्योर,
6: नई सुबह नई उम्मीद का पैगाम लाई है, नई सुबह नई उम्मीद का पैगाम लाई है, हवाओं ने भी आज खुशियों की खुशबू सजाई है। मुस्कुरा कर शुरू करो आज का दिन, मुस्कुरा कर शुरू करो आज का दिन, क्योंकि जिंदगी ने एक और खूबसूरत सुबह दिखाई है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है बिंदास मॉर्निंग, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: क्या बात है, सुबह सुबह इतनी अच्छी शेर व शायरी कर दी मैम आपने, तो मतलब मजा आ गया सुबह सुबह। हाँ इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने बोल दी है ना, सच बता रहा हूँ, दिन बन गया यार, बहुत बढ़िया। आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा। दोस्तों आप भी अपनी प्यारी प्यारी ऐसी शेर व शायरी हम तक पहुँचा सकते हैं।
7: शख्सियत अच्छी होगी तभी तो लोग उसमें बुराइयां खोजेंगे।
0: क्या बात है यार,
7: वरना बुरे की तरफ देखता ही कौन है। कटुता वहां उत्पन्न होती है जहां हम स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं, और प्यार वहां पनपता है जहां हम निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं। नमस्कार, सुप्रभात, मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत पागबड़ा से। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज, वॉइस नोट FM मुरादाबाद, गुनगुनाते रहिए, बजाते रहिए, जिसका नंबर है 9838968096। ये वही नंबर जो जोड़ता है आपको अपने अपनों से और जोड़ता है आपको सारे देश तथा सारे संसार से। तो भेज दीजिए अच्छे अच्छे मैसेज, अच्छे अच्छे वॉइस नोट। नमस्कार, राधे राधे।
0: राधे राधे भूपी जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी बढ़िया बात कर दी है, मजा आ गया। और सच बताऊं सुबह सुबह इतनी बढ़िया बातें जब आप लोग करते हो तो सच में यार दिल से खुशी का एहसास होता है कि वाह यार क्या मतलब, कहां से मैसेज करते हैं हमारे लिसनर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज, मजा आ गया। कुछ और मैसेज आए मेरे पास। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है आनंद जी। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज निधि। निधि मुझे लिखती है, आनंद जी सुबह सुबह गाने सुन के तो अच्छा लगता ही है, लेकिन जब एक नई आवाज सुबह सुबह सुनने को मिलती है तो यकीन मानना आनंद जी मन खुश हो जाता है, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। आपकी बात बहुत प्यारी प्यारी होती है, एंड साथ ही साथ आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हैं अपना, बहुत मजा आता है, सच्ची बात है। अरे वाह क्या बात है, मतलब यही चाहिए अपने को, इसीलिए तो इतनी शिद्दत से मेहनत करते हैं यार, पहले से ज्यादा काम अच्छा कर रहा हूं है ना। चलो अब तो यार वैसे आप लोग को भी अपने प्यारे मैसेज कर देने चाहिए, 9837896896 पर ये स्टूडियो का नंबर है मेरा व्हाट्सएप वाला। आतिफ असलम, श्रेया घोषाल की आवाज में जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा। रमैया अवस्था वही ट्रैक एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। जरा सी देर में अभी लौट कर आता हूँ, बताता हूँ आज बहुत ही स्पेशल डेज मनाए जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी ना आजकल इंस्टाग्राम पे आप देखो ना 80s वाला ट्रेंड कम बैक कर रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। मैंने भी उस पर अपनी एक फोटो अपलोड की है। आप 80s में कैसे दिखते हैं, वो कुछ इस तरीके की नॉस्टैल्जिया वाइब जो है आपको देखने को मिल रही है इंस्टाग्राम पे। कब क्या वायरल हो जाता है पता नहीं चलता है यार, बट सीरियसली बहुत ही बढ़िया यू नो फुल ऑन धमाकेदार वाइब है ना। सो आप मुझे बताओ आपकी वो बचपन में आपने कौन सी ज्यादा यू नो अच्छी एंजॉय की है मूवीज, या कौन सा आपने टीवी सीरियल बहुत देखा है जो आपको लगता है कि आजकल के बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं। जैसे मैंने ना अपने टाइम में शक्तिमान बहुत देखा, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता था शक्तिमान। एंड आई गेस मैंने और क्या देखा था, मुझे दिमाग काम नहीं कर रहा लेकिन शक्तिमान सबको याद रहता है। आपने और क्या स्पेशल देखा जो आजकल के बच्चे बहुत मिस करने वाले हैं सीरियसली? बस वो सिर्फ अब देख तो पाएंगे, मोबाइल पे हर चीज अवेलेबल है, लेकिन जो हमने एक अलग ब्लैक एंड वाइट टीवी पे देखी है, मतलब वो एक अलग ही फील होती थी। सुबह सुबह कलर टीवी पे जब नया नया आया उस पर कुछ नया देखना, उसकी वाइब ही अलग थी। आपने अपने स्कूल टाइम में क्या चीज़ सबसे ज्यादा एंजॉय की है जो आपको लगता है कि आजकल के बच्चों को थोड़ा सा मिसिंग आनंद, ये चीज़ उनको भी डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर वो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे वेब सीरीज पे आ गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उनके लिए आ गई हैं, तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं, नेटफ्लिक्स आ गया है और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अपने टाइम में तो सिर्फ एक दूरदर्शन D1 ही होता था, राइट? तो आप बताओ मुझे, आपने अपने बचपन वाले टाइम में कौन कौन से टीवी सीरियल्स देखे हैं? अभी भी जो मुझे सुन रहे हैं वो भी आप बता सकते हो यार, क्योंकि हो सकता है आपको कोई बढ़िया सा मेमोरी किसी की याद को और ज्यादा फ्रेश बना दे, सुबह सुबह और ताजा तरीन कर दे। फटाफट मैसेज करना आप मेरे को। और अभी मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग चीज पूछने वाला हूँ और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूँ, एक मूवी के बारे में बात करूंगा जब लौट कर आऊंगा। तो बहुत ही कमाल की फिल्म है ये, बस आपको इतना बता रहा हूँ कि इस फिल्म के अंदर बहुत ही कमाल के स्टार कास्ट थी, जिमी शेरगिल, अर्जुन रामपाल, प्रीति जंटा एंड महिमा चौधरी। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, रेखा जी ने बहुत अच्छा रोल किया था एंड दिस इज सच अमेजिंग मूवी। बहुत ही कल्ट क्लासी फिल्म थी, इतनी अच्छी तो ये नहीं चल पाई मूवी, लेकिन इसका म्यूजिक बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। सन 2002 में फिल्म रिलीज हुई थी, बहुत ही कमाल की फिल्म है। और इसकी बात क्यों कर रहा हूँ डेफिनेटली बताऊंगा अभी लौट कर आऊंगा। तो अगर आपको समझ में आए कौन सी फिल्म है तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा जरूर कौन सी फिल्म है। बहुत ही कल्ट क्लासी मूवी थी लेकिन बहुत ज्यादा चली नहीं थी, बट इसका म्यूजिक बहुत ट्रेंड किया था। आई रियलाइज इसका एक गाना था बहुत पॉपुलर, मैं डेफिनेटली थोड़ी देर में प्ले करूंगा। अभी के लिए गाना सुनते हैं, वापस आता हूँ। गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: करो।
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
2: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली। छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारी, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
1: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉर्गेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
3: कोई मिल गया,
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: वेलकम बैक, यू आर लिस्टिंग

92 FM मुरादाबाद 89.6 बंदा हाजिर है 9:32 हो गए स्टेशन क्लॉक में। हाँ जी, कैसे हाल चाल है? आज थर्सडे की सुबह है, ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, ब्रांड न्यू बातें हैं, ब्रांड न्यू गाने हैं, ऑफ कोर्स सारी चीज़ें तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया होती रहती हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। हाँ जी, कैसे हाल चाल है लेडीज एंड जेंटलमैन? बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आपके पहुँच रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले एक कल क्लासिक फिल्म के बारे में बता के गया था, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं चली बट म्यूजिकली बहुत ज़्यादा मेजर रही है मूवी, एंड मूवी बहुत ही मुझे बहुत बेस्ट लगी। अगर आप बहुत ज़्यादा यू नो ऐसे क्रंची कॉन्टेंट देखना पसंद करते हो तो यूट्यूब पर फिल्म अवेलेबल है, एंड मतलब इसकी कास्टिंग सुन लो एक बार ध्यान से, मतलब महिमा चौधरी, प्रीति जिंटा, अर्जुन रामपाल एंड जिमी शेरगिल, साथ में रेखा जी, इतनी बढ़िया फिल्म थी ये, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। 180 मिलियन व्यूज़ हैं इस मूवी पे गाइस, कैन यू इमेजिन? हाँ जी, 180 मिलियन व्यूज़, एंड बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो आज भी इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मूवी स्टोरी मुझे मूवी की बहुत अच्छी लगती है। आपने कितनी बार देखी जरूर बताना यार, कौन से फिल्म की बात करूँ, आज के दिन रिलीज हुई थी ये मूवी, एंड बहुत ही कमाल की फिल्म थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टारकास्ट अच्छी थी, एंड बट मूवी उतना अच्छा कलेक्शन नहीं कमा पाई जितनी एक्सपेक्टेशन थी, बट म्यूजिकली मूवी बहुत अच्छी थी। एंड आई रिमेंबर, मुझे याद है भैया लास्ट टाइम मुझे एक मैंने इसका गाना बजाया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब जब आप ध्यान से सुनो तो आपको मज़ा आता है गाने सुनने में, और कुछ गाने इतने अच्छे होते हैं, कुछ म्यूजिक इतने सुपर हिट होते हैं, उनको सुन के ना आपको जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है यार। और मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो मेरे स्कूल टाइम में भी जो बस वाले भैया थे या हमारे पड़ोस वाले भैया, वो सब इसका कैसेट्स पूरा पूरा बजाते थे, और बहुत सुपर हिट गाने भी रहे हैं इस फिल्म में। काफ़ी गाने ऐसे रहे जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहे, जिनको सुन के सच में मज़ा आ जाता है, जैसे कि दिस वन। ये सॉन्ग सच में अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैक है, ऑफ कोर्स आपने सुना होगा, मैं गाना तो नहीं प्ले कर रहा हूँ।

0: बहुत ही कमाल के गाने थे इस मूवी में, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। एंड ऑफ कोर्स आपने देखी होगी, डेफिनेटली नहीं देखी है तो जाओ यूट्यूब पे चेक करके आओ, बहुत अच्छी फिल्म है। तालियां इसलिए क्योंकि यार मूवी की स्टोरी अच्छी थी। एंड ऑफकोर्स मेरे जैसे बहुत सारे मिलेनियल्स हैं जो अभी सुन रहे हैं मुझे, देखो यार मैं तो जिंदगी वाला बंदा हूँ है ना, बट मैं फॉलो वही वाली बातें करता हूँ जो पुराने लोग करते हैं, वो अच्छी लगती हैं। तालियां भैया, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में जो है हमें मिली हुई है देखने के लिए, और अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी तो फिर आप क्या कर रहे हो भैया, विरासत में फिल्में मिल रही हैं, जाके देखो। बॉडीगार्ड का एक ब्यूटीफुल ट्रैक रेडियो सेट पे निकाल रहा हूँ आपके। थोड़ी देर पहले पूछा था आपने क्या कुछ स्पेशल बचपन में देखा है जो आज के बच्चे बहुत मिस करेंगे। मैसेज आया मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम संस्कृति है, पहले तो नाम बहुत वंडरफुल है संस्कृति, ये मुझे लिखनी है। आनंद जी मैंने ना जूनियर जी बहुत देखा है, एक बहुत पॉपुलर सीरियल था ये और बहुत मज़ा आता था मुझे देखने में जूनियर जी, और हम उसको DD1 पे देखते थे। अरे वाह, थोड़ा थोड़ा मैं भी नॉस्टैल्जिया हो रहा हूँ अब। एक और मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज भव्या, गुड मॉर्निंग भव्या, ये मुझे रामगंगा बिहार से मैसेज करती हैं और लिखती हैं, आनंद जी मैं साई मंदिर रोड की तरफ रहती हूँ और मैं बचपन में मैंने बहुत सारी कलर टीवी पे बहुत सारी फिल्में देखी है, और एक मेरा फेवरेट सीरियल आता था सोन परी, मैंने बहुत देखा है। ओ माय गॉड, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो जंतु अंकल बहुत कमाल के थे ना। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय मेरा नाम मनमोहन है, गुड मॉर्निंग, आपका तो नाम ही बहुत प्यारा है यार मनमोहन जी, ये मुझे मैसेज आ रहा है कांट रोड से, लिखते हैं सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह आपका शो सुन के बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बातें होती हैं आपके प्रोग्राम में। और आपने पूछा बचपन में आपने सबसे ज़्यादा क्या इन्जॉय किया, तो भाई मैंने भी शक्तिमान बहुत देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता था शक्तिमान, और उसी तरह बनने की भी बहुत कोशिश की है ना, मुकेश खन्ना साहब की तो बात ही अलग है, हर कोई शक्तिमान बनता था भाई, सच्ची बता रहा हूँ मैं, उस टाइम पे तो बात ही अलग थी। खैर अब तो क्रेज बहुत कम हो गया है।
1: अरे आनंद इज बैक,
0: नाइन 36 हो गए हैं, अभी लौट कर आता हूँ, कुछ खास बातें बताता हूँ। गणपति उत्सव आने वाला है जिसको लेकर बड़ी सारी तैयारियां चल रही हैं, और आज बहुत सारे स्पेशल डेज मनाए जाते हैं, उस पर बात करेंगे। अभी वापस आता हूँ, डोंट गो एनीवेयर, आप ऐसे ही ट्यून रहिए आनंद के साथ, एक बहुत ही बेहतरीन और ब्यूटीफुल ट्रैक जो आपको सिखा देगा भाई साहब लाइफ में कैसे जीना है अपने हर दिन को। गोलमाल श्री का गाना, प्रीतम का म्यूजिक, शान की आवाज,
2: रफ्तार से चल पड़ी।
0: बिल्कुल यार, इस गाने के एक एक लिरिक्स को अगर आप फील करोगे ना, आपको लगेगा गाना मेरे लिए बना हुआ, सच अमेजिंग सॉन्ग, बहुत ही वंडरफुल ट्रैक। आज के सुबह इसी को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये ट्यूसडे मॉर्निंग है, आप आनंद को सुन रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, चलो ध्यान से सुनना गाने को। हाँ, और अभी लौट कर आता हूँ कुछ और खास बातों के साथ।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
2: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली। छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में। मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
1: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
5: You are listening to the biggest hits. The biggest hits, non-stop.
6: अभी बजाएगा ना भिड़ो।

0: ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र ₹100 में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: चलिए भैया, ब्रेक हो गए हैं खत्म और अभी हम वापस आ गए हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर लेकर आपके ढेर सारे मैसेजेस के जवाब, जो आपने मुझे संदेश पहुंचाए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये थर्सडे की सुबह जहां बातें हो रही है ढेर सारी आनंद के साथ और बहुत सारे लोग निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पर। अभी आपने जो गाना सुना बॉडी कार्ड का, उसमें करीना कपूर खान बड़ी कमाल की लगी और अभी चर्चा में भी है करीना, यानी कि बेबू भाई साहब, उन्होंने एक ऐसी ड्रेस जो पहनी है जो 600 घंटे में तैयार हुई है एंड काफी रॉयल क्वीन लगी करीना। यस बेबू, एंड एक्चुअली आपको बताइए, जब भी कोई फैशन कैंपेन होता है, जब भी कोई फैशन शो होता है जिसमें पार्टिसिपेट करती है अपनी बेबू, तो भैया वो कोई ऐसी वैसी ड्रेस नहीं पहनती है, वो जो भी ड्रेस पहन के आती है वो काफी ट्रेंड में हो जाती है। वैसे भी इन्होंने जो है एक ड्रेस पहनी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, इंस्टा हैंडल पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। रितु कुमार की ये नई बहुत ही फैशनेबल ऐसे डिजाइनिंग कॉस्ट्यूम उन्होंने बनाई है जो 600 घंटे में तैयार हुई, एक ऐसी ड्रेस जो वाकई में बहुत ही गजब की है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी गजब की बात यह है कि यहाँ पर मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसके बारे में आपको मेरे को आंसर करना है 9837896896 पे। और आज इलेक्शंस भी शुरू हो गए हैं, कहाँ पर बताता हूँ अभी आपको, यहाँ पर इसी स्टेशन पर। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल सुन लो यार, 9837896896 नंबर बता रहा हूँ, इसको नोट करके रखो एंड इसी नंबर पर आप मुझे मैसेज करोगे 9837896896 पर, व्हाट्सएप करोगे अपने नाम के साथ अपना सही जवाब, एग्जैक्टली 9837896896 दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर जिस पर आपको मुझे अपने सवालों के जवाब पहुंचाने हैं आपने मेरे नंबर पे मैसेज करके, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल होगा मेरा सवाल, ये मेरा सवाल नहीं है भाई, गाना है, जरा सी देर में बार बार दिखूंगा ट्रैक एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम। मुझे समझ नहीं आया इस गाने में मैडम को चिल्लाने की क्या जरूरत थी भाई, गाना था ठीक है, जरा सुनो ये देखो, चिल्लाओ जरा मैडम। I don't know यार, well, जो भी ये गाना बहुत मजेदार है, बार बार देखो ये गाना आपके रेडियो पे पहुंचने वाला है। अभी फिलहाल आपको पहुंचाना है मेरे सवाल के जवाब, बहुत ही अल्टीमेट ट्रैक है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, ऑफ कोर्स आपने बहुत बार ये गाना रेडियो पे सुना होगा और इस गाने का एक म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है आपके लिए, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा गाना है। व्हाट्सएप करके बताना है आपको, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, जनता मुरादाबाद की, जनता मुरादाबाद के बाहर की जनता भी, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, प्लीज आपको उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, कौन सा गाना है। अगर आपको समझ में आ गया है ये कौन सा गाना है तो जल्दी से आपको आंसर टाइप करके मेरे को बताना है, ठीक है, फटाफट मैसेज करिएगा मुझे। और आज और बहुत सारी स्पेशल डेज बनाए जाते हैं, उस पर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, लौट कर आता हूँ। उससे पहले अगेन रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, चलो मैसेज कर दो आप मुझे फटाफट से, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, चलो जल्दी से मैसेज करो, मैं आता हूँ लौट कर। वक्त हो गया 9:50, 10 सितंबर की सुबह, आनंद को सुन रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग।

काला चश्मा लगा के निकल जाओ भैया, धूप तो निकल ही रही है, ये आपकी आंखों को भी प्रोटेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मेरे से बहुत सारे लिसनर्स पूछ रहे हैं, आनंद जी जो आपने भी म्यूजिक प्ले किया था प्लीज अगेन रिपीट कर दो। तो यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गाना आइडेंटिफाई करना है। चलो बहुत प्यारा गाना है, आपके लिए हिंट दे रहा हूँ, दिस इज योर हिंट, अमान मलिक एंड पलक मुच्छल ने गाया है, बहुत ही अल्टीमेट सॉन्ग है और एक क्रिकेटर के ऊपर ये पिक्चर बनी है, पूरा क्लू मैंने आपको दे दिया है, उसी का ही गाना है, प्लीज बताना है कौन सा गाना है। चलो जी मैसेज कर दीजिएगा 9837896896 पर, अगर आप सही जवाब दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, है ना। तो इंतजार करूंगा मैं आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का, 9837896896 दिस इज माय नंबर, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं आज की सुबह, अगर आपको पता लग गया है क्या है सही जवाब। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी थोड़ी सी जरा आज की कुछ खास चीज़ों के बारे में, इमीडिएटली आपको बता देता हूँ। अभी मैंने इलेक्शन की बात की थी, इलेक्शन जो है कहाँ पर है इसके बारे में मैं आपको बता रहा था ना अभी आपको। तो भैया वन स्टेट वन इलेक्शन का पहला प्रयोग आज होगा राजस्थान में, बेसिकली जो है आज इलेक्शन हो रहे हैं, यस राजस्थान में जो है आज इलेक्शन की शुरुआत हो गई है, मतलब वहां पर जो है आज चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है और आज जो है राजस्थान में मतदान होगा। इसके अलावा आपको बताते चले फटाफट से, अपने उत्तर प्रदेश का एक डेटा आया है जिसमें पता चला है कि यूपी में 42 लाख लोगों ने अभी तक जो है बिल जमा नहीं किया, मतलब अभी भी उन लोगों ने कभी जमा ही नहीं किया है अपना बिजली का बिल, भाई पता नहीं आई डोंट नो क्यों। और ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही थी, मतलब आपको भी जानकर हैरानी हो जाएगी, अपने उत्तर प्रदेश में सोचिए आप, मतलब 42 लाख लोग हैं जिन्होंने कभी बिजली का बिल जमा ही नहीं किया है। और इस जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो बिल है ये भी अच्छी खासी रकम का है, करोड़ों में रकम है भाई, सोचिए आप भैया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका बिल है आप समय पर चुकाएं, बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप पर एक नया फीचर आने वाला है जो आपको बहुत सारी हेल्प करने वाला है एग्जैक्टली, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं सावधान, व्हाट्सएप पर आया ट्रैफिक चालान फर्जी लिंक भैया जो है आपका खाली कर सकता है अकाउंट, तो जरा सावधान रहिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके व्हाट्सएप पर ट्रैफिक चालान का कोई लिंक आया है या कोई मैसेज आया है तो प्लीज आप भूल कर भी उस पर क्लिक ना करें, अगर आपने क्लिक किया उस लिंक पे तो दिक्कत हो सकती है। ये एक नया स्कैम मार्केट में बहुत ट्रेंड कर रहा है, एग्जैक्टली स्कैमर्स जो है नई नई चीजें को अपनाते रहते हैं, स्कैमर्स व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजकर दावा करते हैं कि आपकी गाड़ी पर ट्रैफिक चालान बकाया है और मैसेज में पेमेंट लिंक जो है चालान चेक करने के लिए वो एक लिंक भी भेजते हैं, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट से सारे पैसे गायब हो जाएंगे। तो वेरी वेरी केयरफुल एंड वेरी वेरी अलर्ट, ओके। इन गलतियों से आप डेफिनेटली बच सकते हैं। व्हाट्सएप पर अगर कोई भी लिंक आ रहा है तो प्लीज तुरंत उस पर क्लिक ना करें, एकदम रैंडमली अगर कोई भी लिंक आ रही है तो उस पर इमिडिएटली जो है आप इंस्टेंट क्लिक ना करें, ठीक है। कोई भी अनजान अगर आपको लग रहा है APK डाउनलोड करने की कुछ भी अगर आपको लिंक आती है, कोई पेमेंट की लिंक आती है, कोई भी अनजान लिंक आती है तो उसे एकदम से ऑन करके भाई साहब आपने क्लिक नहीं करना है, बस आपने छोटी छोटी चीज़ों को ख्याल में रखना है यार, बाकी सब बढ़िया होगा। बाकी हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत सिंपल सवाल पूछा था मैंने आज आपसे, समझ में आया हो तो मैसेज कर देना, अभी लौट कर आता हूँ, बताता हूँ कौन है आज के शो का विनर।

0: नलायक बेटा।
1: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
3: मॉर्निंग। आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
4: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
5: वेलकम बैक है वंस अगेन। सुबह के 10:01 हो गए हैं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे आरजे आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारे मैसेज मेरे पास बैक टू बैक पहुंच रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन संदेशों के लिए। और आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। एक सवाल पूछा था, उसका जवाब देने के लिए एक लकी कॉलर को शॉर्टलिस्ट करता हूं। आप ऐसे ही बस ट्यून इन रहिए।

थर्सडे की सुबह आनंद के साथ 10 सितंबर की तारीख है। आप जहां भी जा रहे हैं गुड लक, ऑल द वी बेस्ट। आपको फटाफट से एक बात बताने आ गया हूं। अभी एक रिसर्च में पता लगा है ज्यादा चाय कॉफी अगर आप बहुत ज्यादा इसका इंटेक लेते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी दे सकती है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल बताई जा रही है। स्पेशली नींद को लेकर जो है भाई साहब, अगर आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी के शौकीन हैं तो आपकी नींद जो है इससे प्रभावित हो सकती है। एग्जैक्टली, चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन आपके लंबे समय तक एक्टिव और जागृत जो है आपके अंदर की कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना हमारी बॉडी के अंदर जो हम उसको डालते हैं कि भैया अभी हम चाय पियेंगे तो हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, हमारा सर का दर्द दूर होगा, कॉफी पियेंगे थोड़ी एनर्जी आएगी, है ना, थोड़ा सा इंस्टेंट हम रिचार्ज हो जाएंगे। लेकिन यही कॉफी और चाय अगर बहुत ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करते हो तो ये आपकी नींद को जो है थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चाय ले रहे हो, वैसे तो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं लेता तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो भैया चाय कॉफ़ी के बहुत बड़े लवर हैं। तो चाय कॉफ़ी अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो ये आपकी नींद में थोड़ी सी दिक्कतें डाल सकती है, आपकी बेचैनी भी बढ़ा सकती है। ज़्यादा चाय पीना खतरनाक हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए। एग्जैक्टली, चाय नहीं इनफैक्ट कॉफ़ी भी। खाली पेट चाय कॉफ़ी पीना बिल्कुल पेट के लिए हानिकारक होता है, आप सभी जानते हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करो। जो लोग बैड टी के लवर हैं भैया उनको कहना चाहते हैं थोड़ा सा हैबिट चेंज कर लो यार अब। लेकिन सच बताऊं चाय के बिना दिन की शुरुआत भी नहीं होती है ना। एनीवेज, 10:05 हो गए हैं और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और इस गाने को आइडेंटिफाई करना था।

0: थैंक यू वेरी मच। बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था ना, आज के दिन एक फिल्म रिलीज हुई थी सन 2002 में, जो फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चली बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन म्यूजिकली बहुत ही ज़्यादा मेजर हिट हुई है। इसके गाने बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं, मतलब सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर हुए थे इस मूवी के। और बिल्कुल सही जवाब दिया बहुत सारे लोगों ने, दिल है तुम्हारा की बात कर रहा था मैं यार। थैंक यू सो मच। ये सिटी तालियां सिर्फ आपके लिए थी। और अभी ये जो मैं म्यूजिक प्ले कर रहा था, आई मीन गाना प्ले कर रहा था, इसका राइट आंसर क्या है ये बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया आज की सुबह, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एवरीबडी। बहुत लोगों ने जवाब दिए हैं एंड आज की सुबह मेरे पास यहाँ पर प्रिंस ने जो है सबसे पहले सही जवाब दिया। लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, आपके गाने सुन के बहुत मज़ा आता है और राइट आंसर है कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। एग्जैक्टली भाई, दिस इज द राइट आंसर। पलक मुच्छल, अमान मलिक की आवाज़, एम एस धोनी का गाना था ये, बहुत ही प्यारा गाना था। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे यार, हाय हाय,
1: प्यार करेगा
0: वाह
1: जैसे मैं करती,
0: चल झूठी। वेल, आप लोग जो भी कर रहे हैं करते रहिए भाई, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। सब लोगों ने एकदम बढ़िया जवाब दिए हैं, धाकड़ वाले आंसर्स दिए हैं।

थैंक यू सो मच। जल्दी से आपके नाम ले लेता हूँ, लेकिन कंग्रेचुलेशन प्रिंस, आज की सुबह आप बनते हैं हमारे शो के विनर। बहुत बहुत बधाई है मेरे भाई। बाकी लोगों ने भी जवाब दिए थे। सुपर हिट प्रोग्राम आनंद, गुड मॉर्निंग कश्मीर से, ये महराजुद्दीन साहब जुड़े मेरे साथ आज की मॉर्निंग। एंड गुड मॉर्निंग आदरणीय आरजे आनंद, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी। जय माता दी, कैसे हालचाल हैं? अजीत कसाना, माया देवी, आदित्य देवी कांटरूट लदावली से जुड़ रहे हैं आज की सुबह। ललिता कश्यप नवीन नगर से मेरे साथ जुड़ रही हैं आज की मॉर्निंग से ही जवाब के साथ। और ये मुझे बहुत सारी चीज़ें लिख रही हैं, इन्होंने अपने बचपन में क्या क्या चीज़ें इन्जॉय करी, इन्होंने पूरा बता दिया मेरे को। कोटा

ललिता जी लिखती हैं, गुड मॉर्निंग जी, कलर टीवी छोटे सीरियल बहुत मज़ेदार लगते थे देखने में और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें आती थी इन्होंने, शक्तिमान, रामायण, श्री कृष्णा, महाभारत और भी बहुत सारे, जय संतोषी माँ, काफ़ी सारे इन्होंने स्पिरिचुअल शोज की बात करी है। थैंक यू सो मच। आगे मेरे साथ कोमल जी जुड़ी हैं सही जवाब के साथ। कोमल जी थैंक यू सो मच, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। ये मेरे साथ दरक्षा फातिमा मेरे साथ जुड़ रही हैं आज की सुबह सही जवाब के साथ। सहारनपुर से जोन रोजी पलविलीज मेरे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल हैं? इन्होंने मुझे लिखा, आनंद भाई, 90s का दौर जो था बहुत ही बेमिसाल था, छोटी छोटी खुशियाँ बहुत ही कमाल की होती थी उस टाइम पर और बहुत ही मज़ा आता था। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने तो हातिम भी बहुत देखा है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हमारे साथ जुड़ी थी यहाँ पर अलका वर्मा जी, बुद्धि बिहार से राधे राधे लिखती है। एंड इसके अलावा आगे मैसेज पहुँचता है, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल हैं जी? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। और इन्होंने अपना नाम लिखा है मोहसिन अंसारी फ्रॉम बनारस, लिखते हैं, ऊपर वाले की हर दुआ, ऊपर वाला आपकी हर दुआ कबूल करे, चेहरे पर हमेशा मुस्कान आपके भरपूर करे, जिंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, हर दिन खुशियों से आपका घर भर दे। वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल हैं? अतुल चौधरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज की सुबह सही जवाब के साथ, हाय अतुल जी, गुड मॉर्निंग। विक्की सागर जुड़े हैं, लिखते हैं, रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग। कश्मीर से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं इस वक्त प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। दुर्गेश कल्याणपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में भूपी शर्मा जी जुड़ रहे हैं। चमनलाल साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। और भी ढेर सारे मैसेज, रेहाना मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, तमाम मैसेज पहुंच रहे हैं आप लोगों के लिए, इन मैसेजेस के लिए शुक्रिया। 10:10 हो गए, मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाज़त, जल्दी होगी मेरी आपकी मुलाकात, कल ही होगी यार, आप तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, खुशी के साथ करिए और भी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन, इन्जॉय। अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, हैव अ वंडरफुल डे, सिर्फ आज के बारे में और अपने बारे में सोचिए।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
0: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी, मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, अपने आप में आज का दिन बहुत स्पेशल है एंड थर्सडे मॉर्निंग है और तारीख है आज 10 सितंबर की। वक्त हुआ है अभी राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में 10:18। और बाहर की धूप इतनी तेज है ना कि मतलब जाने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है बाहर निकलने का। और अभी मैं ऑफिस जब आ रही थी सुबह 9:30 आई थिंक, तो इतनी तेज गर्मी, हाय रब्बा, ऐसा लग रहा था कि मई जून वाली गर्मी है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं ना तो प्लीज छाता जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है, और पानी की बॉटल तो अपने पास रखो ही। और आज ब्यूटीफुल से सुबह है देखिए एंड गुरुवार का दिन है, बहुत ही खूबसूरत सा। और आज का विचार भी बहुत प्यारा है कि कभी कभी जिंदगी में ना आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं बस अपना नज़रिया बदलना पड़ता है। हर चीज़ का तुरंत जवाब मिल जाए ये ज़रूरी नहीं, कुछ जवाब ना वक्त के साथ मिलते हैं। इसीलिए आज खुद पर प्रेशर कम रखिए, अपने मेहनत पर भरोसा रखिए और बस इतना याद रखिए कि आपकी जर्नी किसी और से कंपेयर करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग, हैप्पी ट्यूसडे मॉर्निंग एवरीवन। आप भी मेरे साथ आज की सुबह कनेक्ट हो सकते हैं, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। तो फिर सोच क्या रहे हो आप, जल्दी से अपने मैसेज पहुंचाइएगा। और मैं आप तक पहुंचाती हूँ एक शानदार सा गाना, लौट कर आती हूँ मैं बस एफएम मुरादाबाद 89.6 पर इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और अपने संदेश जल्दी से पहुंचाइएगा। और आज क्या स्पेशल है सब आपको बताएगी खुशी, बस थोड़ा पेशेंस बनाकर रखो एवरीवन, क्योंकि वो बहुत जरूरी है।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना अमेजिंग ट्रैक चन्ना वे ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। वक्त हुआ है अभी 10:30 राइट नाउ। और आपके खूबसूरत संदेशों की तो यहाँ पर बारिश हो रही है भाई, क्या बात है। लगता है आज आपकी जो उंगलियां हैं ना वो फोन से हटने का नाम नहीं ले रही हैं। फटाफट से टाइपिंग करके आप भेज रहे हैं अपने खूबसूरत संदेश, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों सिलसिला शुरू करते हैं। आपकी जो खूबसूरत यहाँ पर संदेश आए हैं मैं उनको जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आता है, ये मैसेज हमें भेजा है मधुबनी बिहार से मोहम्मद शाबिर परवाना जी ने। आज की सुबह गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं एवरी मॉर्निंग की तरह, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बबली अंजान जी का, और साथ में गीता कश्यप जी हैं, लक्ष्मी कश्यप हैं। आप सभी को सुबह की प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी का, और ये अपना आदाब हमें पहुंचाते हैं, आपको भी आदाब। नेक्स्ट संदेश हमें मिला है यहाँ पर, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आज की सुबह ताज मोहम्मद अंसारी जी आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और कहते हैं आदरणीय प्रसारक जी को हमारा प्यार भरा आदाब, नमस्कार। आपको भी नमस्कार सर। अगला मैसेज हमें मिला है यहाँ पर धरोरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद सलमानी जी मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। अगला मैसेज हमारे पास यहां पर पहुंचा है जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जमुना देवी साहू एंड प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा बीपी आराध्या साहू। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अभी, गुड मॉर्निंग खुशी दी, कैसे हैं आप, आपकी दोस्त अफरोज फातिमा। अफरोज जी हम तो ठीक हैं, आप बताइएगा कैसी हैं। और अगला मैसेज हमारे पास यह

यहाँ पर आया है। इन्होंने बहुत सारे नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इतने सारे नाम मेंशन ना किए कीजिए, एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलो कि वो भी अपना संदेश यहाँ पर पहुँचाएं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी का, और ये गाना सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी मन चली से, गम का फसाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, बहुत खूबसूरत गीत है। देखिए दोस्तों, हम भी आपके हाल चाल पूछते रहते हैं, मालूम करते हैं, क्योंकि हमें आपकी फिक्र होती है और हम आपसे प्यार करते हैं अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं से, तो आपके हाल चाल जानना तो हमारा फर्ज है ना। एंड आप भी हमें गुड मॉर्निंग पहुंचा सकते हैं एवरीवन। हमारा मोबाइल नंबर है 9883789686। और अभी लौट कर आऊँगी तो बताऊँगी कि अपने यूपी में क्या कुछ स्पेशल हो रहा है और अपनी मुरादाबाद सिटी में क्या कुछ खास है, सब आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आप बने रहिए, सुनते रहिए खुशी को, और अपने संदेश पहुँचाना ना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, ठीक है। चलो सुनो एक शानदार सा गाना, और ये ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ करण औजला की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, ही खूबसूरत गाना। आई होप आपको आपको अच्छा लगेगा, आप इंजॉय करेंगी।

हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मुझे मालूम है कि आप भी यही बोल रहे हैं कि खुशी जी जल्दी से हमारी मैसेज शामिल कर दीजिए ना, हम इंतजार कर रहे हैं। समझो ना, समझ रहे हैं हम आपकी बातों को। दोस्तों, मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजी खुशी और बात करते हैं अपने मुरादाबाद शहर की। जी हाँ, मुरादाबाद की अपडेट भी बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने मुरादाबाद शहर में क्या कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, सब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। और आज मुरादाबाद का मौसम कैसे रहने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, मुरादाबाद में ना रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते ना प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव और निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने और नदी के आसपास जाने से बचने की सलाह दी है। वहीं मौसम की अगर बात करें तो आज मुरादाबाद में हल्की धूप के साथ बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। दिन का अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो आप भी मौसम और प्रशासन की गाइडलाइंस को ध्यान में रखें, खासकर नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और अच्छी खबर की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से देश के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में लखनऊ ने स्वच्छ हवा के मामले में पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों, लखनऊ ने 198 अंक के साथ ये उपलब्धि अपने नाम की है, जबकि इंदौर दूसरे स्थान पर रहा। शहर की इस कामयाबी को स्वच्छ हवा और बेहतर इन्वायरमेंट की दिशा में एक बड़ी अचीवमेंट माना जा रहा है। तो वाकई दोस्तों, ये सिर्फ एक रैंक नहीं है बल्कि साफ हवा और बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ता हुआ एक पॉजिटिव कदम है। तभी मैं आपसे भी बोलती हूँ कि दोस्तों, आप भी पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाइए और उनकी देखभाल भी कीजिए। चलिए, आपके यहाँ पर और संदेश भी शामिल कर लेते हैं जो बैक टू बैक आपके खूबसूरत संदेश आ रहे हैं। भैया, मैं तो उनको पढ़े बिना नहीं रह पाऊंगी, तो चलिए शामिल कर लेते हैं। हमारे श्रोताओं ने आज की सुबह क्या क्या पहुँचाया है। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हाय खुशी दी, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये मैसेज हमें दरक्षा फातिमा जी का आया है। साथ में दोस्त इनकी हैं रुकैया फातिमा एंड लाइबा अफरोज फातिमा और खुशी दी, थैंक यू। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड, मैं बहुत अच्छी हूँ। और जब आप सबसे बात हो जाती है, आप सबकी खूबसूरत यहाँ पर संदेशों को देख लेते हैं तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं हरिओम महेश्वरी जी मुरादाबाद लाइन पर से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हेलो गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं हमें आज की सुबह मोहम्मद ईशान जी लुधियाना पंजाब से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज प्रिंस मुरादाबाद से। और प्रिंस कहते हैं, मुझे ना मैम एक ट्रैक सुनना है। श्योर, हम पूरी कोशिश करेंगे इस ट्रैक को प्ले करने का, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, किन का, ये जरा हम शामिल कर लेते हैं। ये मैसेज हमारे पास है, हाय मैम, आपका नंबर कौन सा है जिसे हम जिस पर हम गाना सुन सकते हैं? रिहाना जी का मैसेज हमारे पास आया है, रिहान अली जी का मैसेज हमारे पास आया है, रिहान अली आलम जी का, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और भी संदेश यहाँ पर आ रहे हैं, हम सभी को शामिल करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? बस आप मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अपने संदेश जल्दी जल्दी से पहुँचाइएगा, जितने जल्दी मैसेज पहुँचाओगे उतनी जल्दी आप अपना फेवरेट गाना भी सुन पाओगे और हाँ, आपकी थॉट, आपकी बातें भी हम आप तक पहुँचाएंगे, अपने तमाम श्रोताओं तक पहुँचाना चाहेंगे जो आप
हमारे साथ शेयर करते हो।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर।

0: निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
4: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी खुशी, जी हाँ, आपका फेवरेट शो लेकर हाजिर हूँ मॉर्निंग मसाला, जहाँ पर ढेर सारी बातें भी होती है, इन्फॉर्मेशन भी होती है एंड एंटरटेनमेंट का डोज भी आपको मिलता है। और वक्त की अगर बात करें तो समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में, राइट नाउ अभी स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 11:03। आप भी अपनी घड़ियां मिला लीजिए। और दोस्तों, आज की एक बेहतरीन सी खबर, और ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक माँ के हौसले और अपनी बेटियों के सुनहरे भविष्य के सपने की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की रमाबाई अपनी बेटी की पढ़ाई का सपना पूरा करने के लिए रोज करीब 3 किलोमीटर दौड़ती थी। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आईं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उनका ये संघर्ष अब देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी तक पहुँचा। रमाबाई के परिवार को नालसा के जरिए जरूरी सहायता दिलाने की पहल की जा रही है। और सच कहें तो दोस्तों, माँ के कदम भले ही 3 किलोमीटर दौड़ते हों लेकिन उनका सपना अपनी बेटियों के लिए उससे कहीं ज़्यादा दूर तक जाता है। रमाबाई जी की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत होना तो एक इंसान अपने परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकता है। बेटियों की पढ़ाई सिर्फ उनका भविष्य नहीं बनाती बल्कि पूरे परिवार का भविष्य संवारती है। इसीलिए दोस्तों, आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए एंड जो भी उनके ड्रीम है उसमें आप उनका सहयोग कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। और जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना तो बेटियां बहुत आगे तक जाती हैं। और सलाम करते हैं हम अपनी माँ को भी, क्योंकि मम्मा के बिना तो लाइफ अधूरी है एंड वो जीवन में हर मोड़ पर, हर सिचुएशन में हमारा साथ देती हैं। मम्मा पापा दोनों का जीवन में सपोर्ट मिलना और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं ना कि फर्स्ट गुरु हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, वही हमें सिखाते हैं जीवन में कैसे आगे चलना है एंड हमें फर्स्ट संस्कार अपनी फैमिली से ही मिलते हैं। और हम बहुत प्राउड करते हैं अपने पेरेंट्स पर, बहुत गर्व करते हैं एंड बहुत लकी भी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास मम्मा पापा दोनों हैं और उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी मेहनत एंड हमारी भी मेहनत है जो हम यहाँ पर इस मुकाम पर हैं। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है हमारे लिए ताकि हमारे बच्चे लाइफ में आगे बढ़ें और हर पेरेंट्स करते हैं। तो मैं हर बच्चों से कहना चाहूँगी जो राइट नाउ इस समय मुझे सुन रहे हैं, स्टूडेंट हैं एंड जो वर्क करते हैं, कि आपके मम्मा पापा ने आपके लिए बहुत मेहनत की है तो आप भी इतनी मेहनत कीजिए ज़िंदगी में कि उनके सारे ड्रीम आप पूरी कर पाएँ, आप उनको हर खुशी दे पाएँ एंड वो भी प्राउड से कहें कि हाँ, हमारे बच्चों ने हमारी जो मेहनत है फाइनली वो रंग लेकर आई है। और यहाँ पर खूबसूरत आपके बैक टू बैक संदेश आ रहे हैं तो मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ अपनी बातों के साथ साथ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहर हुसैन सिद्दीकी जी का, और ये अपनी पूरी फैमिली के साथ इस समय रेडियो की कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर विकी सागर जी का, गुड मॉर्निंग आरजी खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये ब्यूटीफुल रेडियो आपने भेजा है ब्लू कलर का, बहुत खूबसूरत लग रहा है सर, थैंक यू। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आपको भी जय श्री राम, वेरी गुड मॉर्निंग। ये अपना संदेश हमें पहुँचाते हैं दुर्गी सैनी जी कल्याणपुर मुरादाबाद से। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवली जी का, आज की सुबह गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास अभी आया है राइट नाउ एंड ये मैसेज हमें कौन पहुंच रहा है जरा देख लेते हैं। हाँ,
ये संदेश हमें मिला है नवीन नगर मुरादाबाद से, मैसेज पहुंचाती हैं लीता कश्यप जी आज की सुबह। गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहती है मैम आज का मौसम बहुत ही औसम है और बाहर कभी धूप होती है तो कभी बादल हो जाते हैं। कहती हैं इन्होंने बड़ी प्यारी सी पंक्तियां लिखी हैं कि नाम है खुशी तो खुशियां बांटना आपका अंदाज है, आपकी मीठी बातों में भी एक अलग सा राज है। ओके यूं ही मुस्कुराती रहिए खुशी मैम, आपकी मुस्कान ही तो इस महफिल की आवाज है। अरे वाह क्या बात है मैम, शुक्रिया। और रही कहती है हम आपका शो ना रेगुलर सुनते हैं मैम, बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ओके नाश्ता करते करते हमारा शो एवरी मॉर्निंग सुनती हैं मैम, थैंक यू सो मच। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है हिमपाल सैनी जी का, हनुमान नगर मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग खुशी मैडम जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहते हैं कि मौसम के अनुसार ना आप मुझे गाना सुनवा दीजिएगा। फ्रॉम द मूवी प्रेम रोग से ही गाना सुनना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको ट्रैक सुनवाएंगे। और जो हमारे पास अभी संदेश आए हैं मैं उनको भी शामिल करूंगी। बस आप बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। और भी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं लौटूंगी अभी।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक। इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी विकी सागर जी ने, फ्रॉम द मूवी दुल्हन हम ले जाएंगे। बहुत सारे श्रोताओं ने जमकर डांस भी किया और उनको ये ट्रैक पसंद भी आया है ना। गाने ही इतना खूबसूरत था, और कुछ गाने ना ऐसे होते हैं कि हम ना चाहते हुए भी ना डांस करने पर मजबूर हो जाते हैं, हमारे पैर ऑटोमेटिकली थिरकने लगते हैं। और दोस्तों अब रुक करते हैं ग्लैमर और टेक्नोलॉजी की दुनिया का, एप्पल के बड़े ग्लोबल इवेंट में जहां नई और शानदार गैजेट्स ने लोगों का ध्यान खींचा, वहीं सेलेब्स की मौजूदगी ने भी खूब लाइमलाइट बटोरी है। जी हाँ, इस खास इवेंट में पंजाबी सिंगर एपी डिलो और बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आई हैं। बस फिर क्या था, इवेंट की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होने लगी हैं। यानी एप्पल के इवेंट में टेक्नोलॉजी का जलवा तो दिखा ही था, साथ में ग्लैमर का तड़का भी खूब देखने को मिला। और एपिडिलो का ना एक ट्रैक है बहुत ही खूबसूरत सा, मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा, मैं उस ट्रैक को जरूर प्ले करूंगी। अभी आपके संदेशों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे श्रोताओं ने आज की सुबह और क्या क्या पहुंचा रहे हैं। बैक टू बैक सभी के मैसेज आ रहे हैं, तो सभी के संदेशों को शामिल करना खुशी की जिम्मेदारी है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर अभी आया है राइट नाउ, ये मैसेज हमें मिला है, हाँ ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं रानी नांगल से रिहाना जी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहती हैं कि मैम आज मेरी भांजी का ना बर्थडे है जुनैद का, एंड आप अपनी पसंद का कोई भी बर्थडे सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। जुनैद जी को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक है, वो हमेशा लाइफ में हैप्पी रहे एंड जो भी वो करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी ड्रीम्स हैं सब अचीव करें। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है भाई, खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। खुशी जी आपके द्वारा बताई गई बातें जो कि हमें अपने शहर से और देश से कनेक्ट करती हैं, उसके लिए आपका और आपके प्रोग्राम का बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम सर। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अमित वर्मा जी हिमगिरी कॉलोनी मुरादाबाद से, और एक ट्रैक सुना चाहते हैं, हाय हाय महंगाई। देखिए महंगाई पर तो क्या ही मैं बोलूं, एक तारीख को सैलरी मिलती है और जैसे ही हाथ में सैलरी आती है ना इतने सारे खर्च होते हैं, हम कितना भी बजट बनाकर चलते हैं लेकिन फिर भी आखिर में ना वो बजट गड़बड़ा ही जाता है, क्योंकि इतनी महंगाई है चीज़ों पर एंड इतनी सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं। और अब महंगाई भी है लेकिन जो चीज़ें लाइफ में ज़रूरी हैं उनको हमें शामिल भी करना पड़ता है। ये महंगाई का ट्रैक भी हम आपको सुनवाएंगे फ्रॉम द मूवी रोटी कपड़ा और मकान से। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी आपको नमस्कार, नमस्कार आपको भी। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं अजीत कसाना जी, माया देवी जी, ऋतिक और आदित्य कसाना जी का मैसेज आज की सुबह हमारे पास आया है, कांट रोड लदावली से अपने मैसेज पहुँचाते हैं एवरी मॉर्निंग की तरह। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है पूजा जी का, और ये मैसेज हमें पहुंचाती है अभी राइट नाउ विकास नगर से, गुड मॉर्निंग खुशी दी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहती हैं कि कैसे हैं आप, देखो आप हमारी आवाज़ से जान ही गए होंगे कि हम कैसे हैं, और बाकी तो आप सबका प्यार है, ब्लेसिंग्स हैं, तो अच्छे हो ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी हम अच्छे हो जाते हैं, आपके प्यार में जादू है दोस्तों।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिल्म मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और आपकी यहाँ पर खूबसूरत मैसेज देखकर मैं सच में खुश हो गई दोस्तों। थैंक यू एफएम मुरादाबाद से इतना प्यार करने के लिए। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मसाला में आपको सुन रहे हैं एंड आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह आज भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपकी प्यारी सी आवाज और सुंदर अंदाज, आपकी जो पेशकश है वो हमारी सुबह को खूबसूरत बना देती है, खुशनुमा बना जाती है। एंड उन्होंने लिखा है कि सुबह की इस खूबसूरत शुरुआत पर एक छोटी सी शायरी अर्ज करते हैं कि सुबह की किरणें खुशियों का पैगाम लेकर। ओ वाओ, इन्होंने जो लाइनें लिखी है ना वो बड़ी कमाल की हैं कि सुबह की किरणें खुशियों का पैगाम लाए, हर नया दिन आपके लिए मुस्कान लाए और दिल में जो भी ख्वाहिशें हो वो मुस्कान, अच्छा वो मुकाम पाए। ओके, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका दिन खुशियों से भर जाए। और ये कहते हैं कि आपको और एफएम की पूरी टीम को हमारी तरफ से दिल से ढेरों शुभकामनाएं। यूं ही मुस्कुराती रहिए आप और अपनी खूबसूरत आवाज से सभी श्रोताओं को ऐसे ही हंसाती रहिए एंड सभी की सुबह को खूबसूरत बनाती रहिए आप। थैंक यू सो मच, ये हमें मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह आसिफ जी फ्रॉम इटली से। एंड शुक्रिया, आपने अपना संदेश आज की मॉर्निंग पहुंचाया, इतना ब्यूटीफुल आपने लिखकर भेजा है, उसके लिए शुक्रिया तहे दिल से आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं, महराज अंसारी जी हैं। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। थैंक यू, आपको हमारा शो और जो गाने हम प्ले कर रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं। दोस्तों मैं ना अभी लौट कर आऊंगी और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, है ना, तो आप सब तैयार हो जाइए। और सब कहते हैं ना कि मैम बहुत इजी क्वेश्चन पूछती हैं, लेकिन आज मैं जो क्वेश्चन पूछने वाली हूँ ना वो थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा ना अब जवाब देने में वैसे आप माहिर हैं, नो डाउट इंटेलिजेंट हैं, फटाक से अपना जवाब पहुंचा दोगे, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आज थोड़ा सा ना मैं भारी सा क्वेश्चन आपको दूं ताकि आपके जो माइंड की एक्सरसाइज है ना वो थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, है ना। चलो अभी गाना सुनो, उसके बाद में लौट कर आती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा, यूं ही मुस्कुराइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: दोस्तों, अब हम लेकर आए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। और मैंने कहा चलो आज की सुबह अपने श्रोताओं से पूछ लेते हैं। एक बड़ा मजेदार सा सवाल है आज की सुबह, और आप मुझे बताइए दोस्तों, एक ऐसा कौन सा फल है जिसके बीज फल के अंदर नहीं बल्कि बाहर की तरफ दिखाई देते हैं? हाँ जी, ऐसा कौन सा फल है जिसके बीज फल के अंदर नहीं बल्कि बाहर की तरफ दिखाई देते हैं? जरा सोचिए, जवाब शायद आपकी नजरों के सामने ही हो सकता है। बताइए, ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसके बीज ना बाहर की तरफ दिखाई देते हैं? और फटाफट से अपना सही जवाब पहुंचाएगा इमीडिएटली। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बहुत टेस्टी भी है और बहुत हेल्दी भी है वो फ्रूट। जल्दी जल्दी से अपना जवाब पहुंचाएगा। जब तक आप जवाब पहुंचाते हैं, तब तक हम आपको सुनवाते हैं एक अमेजिंग ट्रैक बब्बू मान जी की आवाज में। और ये ट्रैक सुनकर ना आप अपनी पुरानी यादों में चले जाएंगे, क्योंकि गाना बहुत ही सोना सा है।
1: इसके ऊपर कुछ कीजिए, लीजिए इंस्पिरेशन कहीं से। मैं तो कल रखे बैठा रिकॉर्डिंग और परसों

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग माय लवली लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आज की सुबह मैंने आपसे इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा था, और ये फ्रूट बहुत हेल्दी भी है, खाने में अच्छा भी लगता है, टेस्टी लगता है और देखने में भी ब्यूटीफुल लगता है ना। तो आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था, ऐसा कौन सा फल है जिसके बीज फल के अंदर नहीं बल्कि बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। और हमारे श्रोताओं के यहाँ पर जवाबों की तो भैया झड़ी लग चुकी है, सही आंसर की झड़ी लग चुकी है, और आपके लिए जोरदार क्लैपिंग तो बनती है भैया, इतनी मेहनत से आपने सही जवाब पहुँचाया, अपने जो दिमाग की कसरत की है भैया, तो तालियां तो बनती है आज की मॉर्निंग। ये जोरदार तालियां हमारे प्यारे सभी श्रोताओं के लिए जिन्होंने सही जवाब पहुँचाए। और सबसे पहले राइट आंसर हमारे पास कहाँ से आया है और किसने दिया है, कौन बनते हैं आज हमारे शो के लकी सुपरस्टार, वो तो हम आपको अभी ऑन एयर बताने वाले हैं।

0: के हमारी मॉर्निंग शो की विनर बनती हैं, बता देना। चलिए बता देते हैं, आज हमारी शो की विनर बनती हैं अलका वर्मा जी, बुद्धि बिहार से। जोरदार तालियां मैम आपके लिए। मैम ने दिया है राइट आंसर, स्ट्रॉबेरी। एग्जैक्टली राइट, बहुत बहुत बधाई है मैम, आज आप हमारे शो की बनती हैं सुपर क्वीन, क्योंकि आपका जवाब सबसे पहले आया है। और अगला यहाँ पर सही जवाब हमें पहुँचा है दरक्षा फातिमा जी ने। लगता है स्ट्रॉबेरी खाने के आप भी बहुत बड़े शौकीन हैं। हाँ, और नेक्स्ट हमें सही जवाब पहुंचाते हैं आसिफ जी। एंड इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है अफरोज फातिमा जी का, और अफरोज भी पहुंचाती है सही जवाब। मैम इसका सही जवाब है स्ट्रॉबेरी। एग्जैक्टली राइट, नेक्स्ट मैसेज हमें ललिता कश्यप जी पहुंचाती है नवीन नगर मुरादाबाद से। बहुत सुपर फास्ट है मैम आप। हाँ, गुलाम जलानी पाशा जी का भी मैसेज हमारे पास आया है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है खुशी दीदी जी को, हमारा नमस्कार दिल्ली द्वारिका सेक्टर 9 से ये मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह ब्रजेश मिस्त्री जी, और साथ में इनके मैसेज है कविता, एंड इनकी डॉटर है वैष्णवी, और इनके सन है दिव्यांश, इनके ब्रदर हैं सोमपाल, एंड ये पूरी फैमिली के साथ एफएम मुरादाबाद सुन रहे हैं। और इन्होंने एक प्यारे से ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजी है, हम बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ये मैसेज किया। अगला यहाँ पर मैसेज हमारे पास कहाँ से आया है, ये इन्होंने नाम नहीं लिखा है बट मैसेज पहुँचा है आज की सुबह सही जवाब स्ट्रॉबेरी। एंड आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी छोटी सी कि प्लीज आप जब भी मैसेज करें ना अपना नाम जरूर लिखा कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी मालूम होगा कि हमारे जो लिसनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, जो इतना प्यारा सही जवाब पहुंचा रहे हैं, उनका नाम भी तो जानने का हमारा फर्ज बनता है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मैसेज करें ना अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, अस्सलाम वालेकुम खुशी जी। वालेकुम सलाम, ये मैसेज हमें पहुंचाती है नेहा जी मुरादाबाद से। और ये कहती हैं कि मैम आज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है, प्लीज एक बर्थडे सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल जी, प्ले करेंगी। अगला मैसेज हमारे पास आया है, इन्होंने डायरी के लिए लिखा है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, और नाम तो नहीं लिखा है। हाँ, अभी नाम भी मुझे शो कर गया है। ये निपेंद्र चौधरी जी का मैसेज हमारे पास आया है। निपेंद्र चौधरी जी एडवोकेट मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है प्रतीक्षा का, एंड प्रतीक्षा भी सही जवाब के साथ जुड़ी है। और दोस्तों आज की सुबह ये खुराफाती सा सवाल मेरे मन में कैसे आया, क्योंकि मैंने आज सुबह सुबह स्ट्रॉबेरी खाई और मुझे तभी आइडिया मिला कि आज अपने श्रोताओं से क्यों ना मैं ये क्वेश्चन पूछूं। और दोस्तों स्ट्रॉबेरी खाने के ना बहुत सारे फायदे हैं, इसमें विटामिन सी होता है जो हमारी इम्यूनिटी यानी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसमें फाइबर और पानी की अच्छी मात्रा होती है जो डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। कम कैलोरी होने की वजह से ये एक हेल्दी अच्छा ऑप्शन भी है, तो आप इसको ले सकते हैं डाइट में अपने शामिल कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल दीजिएगा मुझे जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे 3 से 5 नई बातों के साथ, नई अपडेट के साथ और नए नए गानों के साथ, ठीक है? तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय एवरीवन। सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ,
2: आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रीना। पिछले एपिसोड के बाद बहुत सारे कॉल आए, लोगों के मन में ढेरों सवाल है लेकिन ज्यादातर खुलकर बात नहीं करना चाहते, तो आज हम उसी जरूरी कम बोली जाने वाली बात पर सिर्फ चर्चा करेंगे, परिवार नियोजन। और आज हमारे साथ है आपकी हमारी समझदार और प्यारी टीकन भाभी।
1: नमस्कार दोस्तों, आरजे रीना ने मुझे फोन किया तो बोली भाभी आज का मुद्दा बहुत जरूरी है, आपके बिना बात अधूरी, तो बस मैं चली आई।
0: शुक्रिया भाभी, चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधे सवाल पर आती हूँ। महिलाएं जानना चाहती है परिवार नियोजन और उनके असल में क्या फायदा होता है, क्या इससे उनका शरीर मजबूत होता है और क्या ये घर की आमदनी पर भी असर डालता है।
1: सही कहा आरजे रीना, अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे गाँव की रेखा दीदी की शादी कम उम्र में हो गई थी। परिवार साधारण था, पांच बहनें थी। दसवीं के बाद पिता ने पढ़ाई छुड़वा दी और शादी कर दी। रेखा पढ़ना चाहती थी लेकिन घर वालों को लगता था अच्छा घर मिल गया तो पढ़ाई की क्या जरूरत है। शादी के कुछ महीने बाद ही सबने पूछना शुरू कर दिया बच्चा कब होगा, लेकिन रेखा जानती थी कि अगर उसने जल्दी माँ बनने का फैसला किया तो उसके सपने वहीं रुक जाएंगे। उसने अपने पति से बात की, कहा कि कुछ साल रुक जाइए, मैं पढ़ाई पूरी करके कंप्यूटर सीख सकती है और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। पहले तो पति नाराज हुए लेकिन धीरे धीरे समझ गए। उसने अपने परिवार को भी समझाया। रेखा ने घर के सारे काम किए, खेत में भी हाथ बटाया, बारहवीं की परीक्षा भी दी और कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की, फिर बीए में एडमिशन लिया और सरकारी नौकरी की तैयारी करनी शुरू कर दी। गाँव वाले ताना मारते थे, अगर बच्चा नहीं चाहिए था तो शादी क्यों की, नौकरी का क्या करेगी, लेकिन रेखा डरती रही और पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उसे कलेक्टर ऑफिस में एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वही लोग जो उसे ताना देते थे उसके पास अपने काम लेकर आने लगे। शादी के लगभग चार साल बाद जब रेखा 22 की हुई, उसने परिवार बढ़ाने का फैसला किया। सोच समझकर खुशी से अब वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार थी।
0: वाह भाभी, रेखा की कहानी तो सब कुछ साफ कर दिया। परिवार नियोजन से महिलाओं को न सिर्फ समय मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का, बल्कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। और जब माँ मजबूत होती है तभी परिवार भी मजबूत बनता है।
1: और सबसे जरूरी बात, ये फैसला जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, ये महिलाओं और उसके साथी दोनों की समझदारी आपसी बातचीत से आना चाहिए। सोच समझकर लिया गया फैसला ही परिवार को देता है सही दिशा। सेहत सही तो लाभ कई।
0: भाभी, कई लोग सोचते हैं कि बच्चों में उम्र का अंतर कोई खास मायने नहीं रख, लेकिन असल में इसका सेहत और परिवार दोनों पर बड़ा असर होता है ना?
1: बिल्कुल सही कहा बहन आपने। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ना समझी में मैंने पहला बच्चा खो दिया था, फिर मैंने और आपके सेहतिया भैया ने निर्णय लिया कि पहले मैं अपनी सेहत सही करूँगी फिर दूसरे बच्चे की सोचूंगी, और हमारे दोनों बच्चों में चार साल से भी ज्यादा का अंतर है। अगर एक बच्चे के पैदा होने के छह महीने के अंदर ही दूसरा गर्भ ठहर जाए तो माँ के शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता, इससे माँ कमजोर हो जाती है और आने वाले बच्चे को भी पूरा पोषण नहीं मिल पाता, कई बार बच्चा समय से पहले भी पैदा हो सकता है।
0: मतलब माँ की सेहत के लिए भी जरूरी है कि उसे पूरा वक्त मिले खुद को रिकवर करने का।
1: कम से कम दो साल का अंतर हो तो माँ का शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। याद रखे कि माँ के खून और माँ की हड्डियों से ही बच्चा, हड्डी से ही बीज बनता है। एक बच्चे के बाद कम से कम तीन साल का समय माँ को फिर से तंदुरुस्त होने के लिए मिलना चाहिए। अगला बच्चा तंदुरुस्त होगा और माँ भी, माँ के अंदर भी ताकत बनी रहेगी, इसलिए बच्चे के बीच गैप होना जरूरी है।
0: और अगर देखा जाए तो पूरे परिवार को भी इससे फायदा होता है।
1: हाँ आरजे रीना, जब बच्चे सोच समझकर और सही अंतराल पर हो तो परिवार आर्थिक रूप से मजबूत रहता है। बच्चों की पढ़ाई, उनके खाने पीने और इलाज का खर्च ठीक से उठाया जा सकता है। जल्दी जल्दी बच्चे होंगे तो खर्च भी बढ़ेगा और ध्यान भी बटेगा।
0: बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर भी इसका असर पड़ता है क्या?
1: बिल्कुल पड़ता है। जब बच्चों के बीच ठीक ठाक उम्र का फासला होता है तो छोटा बच्चा अपने बड़े भाई बहन से बहुत कुछ सीखता है, बोलना चालना समझना, इससे दोनों का विकास बेहतर होता है। लेकिन अगर दोनों बहुत छोटे हैं तो माँ बाप के लिए दोनों को संभालना मुश्किल हो जाता है।
0: आपने तो बड़े कमाल की बात कह दी।
1: ये बातें हर घर तक पहुँचे तभी तो हर परिवार रहेगा खुशहाल।
0: परिवार नियोजन से महिलाएं मजबूत होती है, ये बात कितनी सच है?
1: आरजे रीना, ये बात बिल्कुल सच है। एक महिला खुद तय कर सके कि कब माँ बनना है, कितने बच्चे चाहिए और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके, यही तो असली सशक्तिकरण है।
0: कैसे भाभी?
1: देखो, जब महिला के पास सही समय और सही योजना होती है तो वे अपने लिए सोच सकती हैं। मेरी बहन सरला की बात लो, उसने समझदारी से फैसला लिया, दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन अपनाया जिससे वो खुद और अपने बच्चों की परवरिश दे सकी। जब घर की जिम्मेदारियां संभाली गई तो उसने सिलाई का कोर्स किया, फिर धीरे धीरे अपना काम शुरू किया, पहले छोटी मोटी ऑर्डर लिया, फिर हुनर बढ़ाया और कमाई भी बढ़ने लगी। अब वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से संभाल रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है और खुद भी आत्मनिर्भर है। परिवार नियोजन ने से ये मौका दिया कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके और यही सही योजना है, सही दिशा की ताकत है।
0: मतलब परिवार नियोजन से सरला और मतलब परिवार नियोजन से सरला को अपनी जिंदगी संवारने का मौका मिला।
1: हाँ जब महिला पर जल्दी माँ बनने का दबाव नहीं होता तो उसे अपने भविष्य के बारे में सोचने का मौका मिलता है। वो पढ़ सकती है, काम कर सकती है, खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती है और जब वो आत्मनिर्भर होती है तो अपने परिवार की भी अच्छी देखभाल कर सकती है।
0: तो भाभी, परिवार नियोजन से न सिर्फ महिला की जिंदगी बेहतर होती है बल्कि पूरे परिवार का भविष्य भी अच्छा बनता है।
1: बिल्कुल सही कहा रीना, जब सही योजना बनाई जाती है तो पूरा परिवार खुशहाल होता है और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को अपने फैसले लेने की आज़ादी मिलती है।
0: श्रोताओं, कई जगहों पर परिवार नियोजन को अपनाने में सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं भी है, लोग सोचते हैं कि उनकी परंपराओं के खिलाफ है। टीकन भाभी, अपना इस पर क्या विचार है?
1: हमारे यहाँ परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हर परंपरा समय के साथ बदलती भी है। अगर कुछ चीजें हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं तो उन्हें अपनाने में कोई बुराई नहीं है। परिवार नियोजन का मतलब ये नहीं कि हम अपने मूल्यों को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने परिवार को सही तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। जब सही जानकारी मिलेगी तो लोग इसे अपनाने के लिए आगे आएंगे।
0: वैसे एक और मुद्दा है, पुरुषों की भागीदारी, कई बार महिलाओं को अकेले ही फैसला लेना पड़ता है, लेकिन अगर पति और परिवार साथ है तो फैसला लेना आसान हो जाता है।
1: देखो, परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, जब पति, पिता और अन्य पुरुष सदस्य इस विषय को गंभीरता से लेंगे तभी सही बदलाव आएगा।
0: लेकिन जब पुरुष नसबंदी की बात आती है तो कई पुरुष इसे अपनाने से डरते हैं, वो सोचते हैं कि इससे उनकी मर्दानगी पर असर पड़ेगा।
1: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। डॉक्टर कहते हैं कि पुरुष नसबंदी सुरक्षित और प्रभावी है, इससे पुरुष की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। पुरुष नसबंदी परिवार नियोजन को आसान और सुरक्षित बना सकती है।
0: वैसे सरकार भी परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है।
1: सरकार ने कई पहल की हैं, जैसे कि मुफ्त गर्भ निरोधक साधक, जागरूकता अभियान और विपत्ति प्रोत्साहन। कई राज्यों में महिलाओं और पुरुषों को परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने के लिए विशेष लाभ दिया जाता है। सरकार कोशिश तो कर रही है, पर साथ ही जागरूकता और सही जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और सही विकल्प चुने तो परिवार नियोजन का लाभ सभी को मिल सकता है।
0: छोटा परिवार सुखी परिवार, एक बार फिर बताइए, छोटे परिवार से क्या फायदा है?
1: आजकल एक बच्चे को पालने में ही बड़ा खर्च है, उसकी पढ़ाई, अच्छे खाने पीने का ध्यान, कपड़े, दवाई, सब में पैसा लगता है। अगर जल्दी जल्दी कई बच्चे हो तो खर्च इतना बढ़ जाता है कि माता पिता के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है।
0: मतलब अगर हर साल एक बच्चा हो तो मुश्किल बढ़ जाती है।
1: अगर हर साल एक बच्चा हो तो माँ के पास ना तो आराम करने का समय होगा, ना ही बच्चों की सही देखभाल करने का। पिता भी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में ही लगे रहेंगे और घर के बाकी खर्च पूरे करने में परेशानी होती है।
0: तो फिर क्या करना चाहिए?
1: समझदारी से योजना बनानी चाहिए। जब बच्चों के बीच सही अंतर रखा जाता है तो माता पिता उन्हें बेहतर पढ़ाई का मौका दे सकते हैं, अच्छा खाना खिला सकते हैं और सेहत का सही ध्यान रख सकते हैं। इससे बच्चे विशेष रूप में सफल होते हैं।
0: तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ खर्च बनाने की बात नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य का सही इन्वेस्टमेंट है।
1: सही कहा, जब बच्चों को अच्छी शिक्षा, सही पोषण और बेहतर जीवन शैली मिलती है तो वो बड़े होकर आत्मनिर्भर बनते हैं। इससे पूरा परिवार मजबूत बनता है और भविष्य में आर्थिक रूप से भी सुरक्षित रहता है। तो

0: ये जानकारी होनी चाहिए?
1: बिल्कुल होनी चाहिए। युवा अवस्था में अगर सही जानकारी मिले तो अनचाहे गर्भ अवस्था रोकी जा सकती है। हमारे गांव की रेखा को देखो, उसने शादी के बाद 2 साल तक बच्चा नहीं चाहा, पढ़ाई की, कंप्यूटर सीखा, अब वो सरकारी दफ्तर में काम कर रही है। सही जानकारी से महिलाएं अपनी जिंदगी खुद तय कर सकती हैं।
0: भाभी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि गोली खाने से बांझपन हो जाता है या कॉन्डम से मजा नहीं आता, क्या ये सच है?
1: ये सब अफवाह है। गोली हो या इंजेक्शन, ये सब सिर्फ थोड़े समय के लिए गर्भ रोकता है, बांझ नहीं बनाता। कॉन्डम का तो फायदा डबल है, गर्भ भी नहीं होता और बीमारी भी नहीं होती।
0: ये सारी जानकारी मिली कहाँ से है, कौन समझाता है?
1: हमारी आशा दीदी हर मर्ज की दवा है, वे घर घर जाकर लोगों को समझाती हैं, सही जानकारी देती हैं और दवाइयाँ लाकर देती हैं। अगर किसी को जरूरत हो तो हॉस्पिटल जाने में भी मदद करती हैं।
0: आशा दीदी तो सच में बड़ी काम की है, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं से मदद मिलती है? आशा दीदी के अलावा गर्भ निरोधक उपायों में और कौन मदद करता है?
1: सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और नर्स भी मदद करती हैं। अब तो स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं को खास परीक्षण दिया जा रहा है, जिससे वो लोगों को सही परामर्श दे सकें और गर्भ निरोधक उपायों के बारे में पूरी जानकारी दे सकें। इससे महिलाएं सही फैसला ले पाती हैं और परिवार की सेहत भी बनी रहती है।
0: परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए और क्या किया जा रहा है?
1: सरकार ने भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। अब नए गर्भ निरोधक उपाय जैसे इंजेक्शन, इम्प्लांट भी उपलब्ध हैं। इससे महिलाओं को सुविधाजनक तरीके से परिवार नियोजन करने में मदद मिलती है। मिशन परिवार विकास जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिससे जागरूकता बढ़ेगी और लोग सही जानकारी पा रहे हैं।
0: पर मिशन परिवार विकास है क्या?
1: मिशन परिवार विकास के अंतर्गत सरकारी नव दाम्पत्ति को परिवार नियोजन किट देती है, साथ ही सास बहू सम्मेलन का आयोजन करती है, जिससे कि सास और बहू के बीच बातचीत हो सके और उन दोनों को समझ आ सके परिवार नियोजन कितना जरूरी है।
0: तो क्या इसका मतलब है जो बहुएं अपनी सास पर सास को घर में बात नहीं समझा पाती, उनके इस सम्मेलन में संवाद करके आशंकाएं और नियोजन से संबंधित वार्तालाप कर सकती है?
1: जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने।
0: तो इसका मतलब परिवार नियोजन अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है।
1: ऐसा ही, अब तो मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के साथ गर्भ निरोधक सेवाएं भी जोड़ दी गई हैं। यानी जब भी कोई सरकारी अस्पताल जाता है, उसे परिवार नियोजन के विकल्पों की जानकारी भी दी जाती है। इससे लोगों को सही समय पर जरूरी सलाह मिल जाती है।
0: और ये मोबाइल हेल्थ और टेलीमेडिसिन क्या है?
1: मोबाइल पर भी जानकारियां मिलती हैं। परिवार नियोजन के हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से कॉल करके मदद मिल सकती है। अब तो बस एक फोन कॉल या ऐप डाउनलोड करने से ही सारी सूची मिल जाती है। टेलीफोन मेडिसिन के जरिए लोग डॉक्टर से सीधा बात कर सकते हैं, सही जानकारी पा सकते हैं और हाँ, याद दिलाने वाले रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, खासकर जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है।
0: तो सरकार के प्रयास से डॉक्टर, आशा दीदी और मोबाइल सेवाएं सब मिलकर परिवार नियोजन को आसान बना रहे हैं।
1: अब हर किसी के पास जानकारी है और सही रास्ता चुनने का मौका भी है। जब परिवार नियोजन सही तरीके से होगा तो माँ स्वस्थ रहेगी, बच्चा सेहतमंद होगा और पूरा परिवार खुशहाल रहेगा।
0: भाभी, आपने तो आज कमाल कर दिया, आसान भाषा में बड़ी जरूरी बातें समझा दी।
1: अरे बहन, बात सीधी है, सोच समझकर बच्चा पैदा करो, उनके बीच सही अंतराल रखो ताकि माँ का शरीर भी ठीक रहे, बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे और परिवार की जिंदगी भी खुशहाल बनी रहेगी। और हाँ, महिलाएं पढ़ें, आगे बढ़ें, कमाएं, तभी तो घर और समाज देश की असली तरक्की होगी।
0: तो साथियों, सुन लिया ना, परिवार नियोजन कोई मजबूरी नहीं बल्कि समझदारी भरा फैसला है। जब आप सही समय पर बच्चा पैदा करने का निर्णय लेते हैं तो आप न सिर्फ अपने परिवार की सेहत और खुशहाली की रक्षा करते हैं बल्कि अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य भी देते हैं। याद रखिए, माँ स्वस्थ रहेगी तभी बच्चा मजबूत होगा, बच्चा मजबूत होगा तभी परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तभी देश तरक्की करेगा। तो आज की चर्चा को सिर्फ सुनिए मत, अपने घर में अपने मोहल्ले में और हर उस जगह जहां आपकी बात पहुंच सकती है।

0: परिवार नियोजन के संदेश को फैलाइए, सेहत सही लाभ कई यही है हमारा नारा और यही है आगे बढ़ने की राह। सुनते रहिए कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। अगली बार फिर मिलेंगे नई और रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम रेडियो, बजाते रहिए एंड गुनगुनाते रहिए।
1: हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
3: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
3: शुक्रिया सेहतिया भैया।
1: तो दोस्तों, आज का हमारा यह सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। याद रखें, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दवाई जरूर खाएं। सेहतिया भैया के अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
0: सिजमी आरजे रीना एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम रेडियो, बजाते रहिए एंड गुनगुनाते रहिए जनाब। आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है हमारे लिए, क्योंकि आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और ये दिन हमें हमेशा याद दिलाता है कि बढ़ती जनसंख्या सिर्फ आबादी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। और परिवार नियोजन को लेकर क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है और आम जनता कैसे इसका लाभ उठा सकती है, इसी की जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं सीएमओ ऑफिस, जहां मेरे साथ है डॉक्टर संजीव जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं और विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है और 2025 का इसकी थीम क्या रहने वाली है। सर,
4: मैं डॉक्टर संजीव बेलवाल मुरादाबाद से हूं और मेरे पास प्लानिंग का भी कार्य मैं देखता हूँ और सभी और भी नेशनल प्रोग्राम्स मेरे द्वारा देखे जा रहे हैं। 11 जुलाई को बेसिकली विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम हमारे यहाँ रखी गई है, हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेस बिटवीन द प्रेगनेंसीज ऑफ द प्लांट्स एंड द पेरेंटहुड। माँ बनने की उम्र वही है वह जब तन और मन की तैयारी सही हो। तो बेसिकली हम लोगों को अपना एक पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, उसके बारे में हमें ये सारी लोगों को अवेयरनेस के बारे में हमें ब्रीफ करना होता है, सोसाइटीज को बताना होता है और जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स वो जगह जगह जाके वो सारी चीजें कुछ हम इसके लिए प्रसार प्रसार भी करते हैं। आईसीएस भी बनवाया जाता है, सास बेटा बहु सम्मेलन भी इसके तहत हमारे यहाँ पे कराया जाता है जो कि विलेज लेवल पे होता है। जो कपल्स होते हैं उन कपल्स को जितने भी हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल्स करने के मेथड्स होते हैं वो सारी चीजें उसमें समझाई जाती है। तो इस बार जो हमारी गवर्नमेंट ने जो थीम रखी है, हेल्दी टाइमिंग स्पेसिंग बिटवीन द प्रेगनेंसीज ऑफ द प्लांट पेरेंटहुड।
0: सर, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि भारत या विशेष रूप से हमारे जिले में जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान स्थिति क्या होने वाली है?
4: देखिए मैम, अभी भी कुछ अवेयरनेस की कमी है और कुछ तबका एक ऐसा होता है कि जो अभी इस पे ध्यान नहीं दे रहा, तो उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की साइड से विलेज लेवल्स पे, मोहल्लास में, सभी जगह आशाओं के माध्यम से, आंगनवाड़ी के माध्यम से और हमारे जितने भी आईसीस के माध्यम से हम उसको तो हमारी पॉपुलेशन है वो ज्यादा इंक्रीज ना हो, तो ये चीजें उसको बताया जाता है। और इसीलिए और अर्ली स्पेसिंग ना हो जल्दी से, बहुत जल्दी मैरिज ना हो, है ना, ये सारी चीजें जो रूढ़िवादी समस्याएं आती हैं उनके बारे में ब्रीफ किया जाता है। और अभी हम डिस्ट्रिक्ट हमारा मुरादाबाद जो अभी इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा, तो हमारे अच्छे खासे लोग हैं जो हमारी फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करते हैं।
0: सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो परिवार नियोजन में मदद करती है?
4: मैडम, बेसिकली क्या है कि इसमें टेम्पररी मेथड और परमानेंट मेथड दोनों ही इसमें प्रकार में यूज होते हैं। टेम्पररी मेथड्स में मेल एंड फीमेल दोनों को लिए होता है, जिसमें हम एनएसबी बोलते हैं और फीमेल स्टरलाइजेशन जो होते हैं, जो कि ट्यूबेक्टमी की जाती है, जिससे इसमें कोई हानि नहीं होती है, ना ही उसको कोई हेल्थ तो मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स होती कराने के बाद, तो ये परमानेंट मेथड्स के रूप में आते हैं। दूसरे टेम्पररी मेथड्स होते हैं, जैसे इंट्रा कॉन्सेप्टिव होती हैं, ओरल स्पिल्स होती है, हमारे पास छाया होता है, अंतरा होता है, और अन्य डिवाइसेस भी हमारे पास यूज होती है, और जो हमारा कॉन्डम्स यूज किए जाते हैं, ये सारी जो मतलब टेम्पररी में नहीं आती है, ये बेसिकली आदमी इनको यूज करने के बाद अपनी फैमिलीज को एक नॉर्मल उसमें साइज में रख सकता है। और कोई इसमें कुछ इंजेक्टेबल्स भी होते हैं जो कि कुछ 6 महीने के लिए दिए जाते हैं, और कुछ इंटरटाइन डिवाइसेस होती है वो उसमें यूज की जाती है, तो वो लोग सब यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं और अच्छी खासी मात्रा में हमारा ये।
0: क्या आज की पीढ़ी परिवार नियोजन को लेकर कितना ज्यादा जागरूक है?
4: अगर मैं बात करूँ तो पुराने जमाने में और आज के जमाने में काफी डिफरेंसेस है। पहले 80s में 70s की अगर हम बात करते तो एक फैमिली में मेल बेबी की लालसा में लोग अधिक बच्चे जन्म पैदा कर लेते थे फैमिलीज में, ये मैंने अपने गांव में भी देखा है, और कि वही एक बेटा आवश्यक है। लेकिन आज की कंडीशंस में जो यंगर्स हैं वो इस तरह की भावना को नहीं सोचते हैं, उनके लिए मेल बेबी और फीमेल बेबी दोनों ही समान होते, तो इस तरह की कंडीशंस अब बहुत कम हो गई है कि वे मेल की अपेक्षा ज्यादा रखते हुए और फैमिली को साइज एक रीजन से ये भी हुआ करता था। और आज लोग इसको जो यंगर्स हैं आज की जो पीढ़ी है वो फैमिली प्लानिंग को एक्सेप्ट कर रही है।
0: परिवार छोटा रखने से क्या फायदे हो सकते हैं?
4: देखिए मैम, परिवार अगर आपका छोटा रहेगा तो आपका एक मेंटल पीस रहेगा, फाइनेंशियल समस्याएं नहीं आएंगी, आप अपने बच्चे को अच्छी सी एजुकेशन दे सकते हैं। अगर कभी कोई हेल्थ इश्यूज आता है उसका भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो मेंटल पीस हो कि आपका सोशल एक्टिविटीज आप अच्छे से करा सकते हैं, बच्चे को अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं, कोई भी चीज आप किसी भी फील्ड में किसी भी साइड में अगर आप भेजेंगे तो उसको अच्छे से उसका लालन पालन पोषण किया जा सकता है। अगर बिग फैमिली से आपका जो साधन है, सोर्स ऑफ इनकम कम है और आपका बिग फैमिली, तो आपको मेंटली प्रॉब्लम्स होती है, हर चीजों की समस्या उसको जूझना से पड़ता है। आपका छोटा फैमिली होगा, खुशहाल रहेगा और अच्छे से जीवन जिएगा।
0: क्या आपको लगता है कि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है?
4: मैम, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट्स अभी हमारे जो हम ये फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम से ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी इसको समझ रही है कि ज्यादा अगर ये इस तरह से पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो उसमें आने वाली समस्याएं होंगी। तो बहुत सारी चीजें होती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती है, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट में समस्याएं आती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपको मतलब ऑक्यूपेशन में सर्विसेज लेने में या देने में सारी समस्याएं क्रिएट होती है अगर बहुत लार्ज पॉपुलेशन होती है। दूसरा हमारा एग्रीकल्चर पे लैंड पे भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी समस्याएं पॉपुलेशन की होने की वजह से कुछ बेसिकली एंटी एलिमेंट्स भी कभी कभी इस तरह से उत्पन्न हो जाते हैं, घर में फाइनेंशियल की क्राइसिस होती है और बच्चे किसी दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये सब चीज कंट्रोल होना आवश्यक है, और हेल्दी लाइफ, सुकून की जीवन जीना, पीसफुल लाइफ जीने के लिए आपको एक छोटा परिवार की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल। गांव और शहर में परिवार नियोजन को लेकर क्या फर्क है आजकल अगर देखा जाए तो आज के टाइम?
4: देखिए मैम, अभी जो हमारा गाँव में और शहर में दोनों में जो एजुकेटरी लेवल्स है वो लगभग समान सा आता चला जा रहा है, तो दोनों ही साइड में इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। विलेजेस में अभी थोड़ा सा जो हमारा एजुकेशन लेवल है थोड़ा कम है, तो वहाँ के जो अभी पुराने लोग हैं उनमें थोड़ा सा हमने देखने को मिला है, उनके तो अंदर थोड़ी सी हेजिटेशंस रहती है, तो उसी के लिए गवर्नमेंट के साइड से ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे सास बेटा बहु सम्मेलन। ये बेसिकली एक छोटे से गाँव में उसमें आंगनवाड़ी, आशा, एनम और अन्य गांव के समाज लोग वहां बैठते हैं एक साथ, और उसके पूरी फैमिली प्लानिंग के बारे में चर्चा की जाती है। उस चर्चा करने के बाद लोग इसको समझ रहे हैं धीरे धीरे, और हम शहर और गांव को बराबर लाने की कोशिश में लगी हुई है सरकार हमारी, तो जल्दी से जल्दी हम सोचते हैं कि इसका अनुपात बराबर आ जाए।
0: ओके सर। हाँ जी सर, जैसे कि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि हम दो हमारे दो, तो सर ये आखिरकार है क्या?
4: हाँ मैम, हम दो हमारे दो का ये स्लोगन तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, जब से मैंने जन्म लिया तब से मैं सुनता आ रहा हूँ कि हम दो और हमारे दो, ये अच्छा है और इसको लोग एक्सेप्ट करें और इसी स्लोगन को मानते हुए अपने जीवन में इसको लें और पॉपुलेशन को कंट्रोल करें।
0: सर लास्ट क्वेश्चन है कि आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में, छोटा सा मैसेज दीजिए।
4: हमारे मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो 11 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें जो भी हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, फीमेल हॉस्पिटल्स, वहां पे टेम्पररी मेथड को एक्सेप्ट करें और पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हमारे देश के और हमारे स्टेट की मदद।
0: थैंक यू सो मच सर। और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम रेडियो, बजाते रहिए एंड गुनगुनाते रहिए जनाब।
5: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
7: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
8: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किससे पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना ही होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे, गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार, सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहां लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए, छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है, ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षात्कार करें।
1: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहाँ बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दो गुना हो जाता है।
0: और यही एक भी सीख है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के बारे में।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
2: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुपी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं, हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है, देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है, सरकारी चीज है, संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें।
1: यही तो हुआ मेरे साथ, एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहां किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा, किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है, अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो। जैसे राशन की सूची लगती है, वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपने पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जाँच के बारे में पूछे। वे हमेशा कहती हैं, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है, महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है। बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
0: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ कही, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो UWIN पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चौथा, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। पांचवा, परिवार की राय सुनिए पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छठा, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सातवा, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। सातवा, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है। इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग जुड़ने का भरोसा रखें। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
2: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है। व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
1: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है। आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
0: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
1: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
2: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
0: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
1: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
0: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम सोच बदलो में। जी हाँ श्रोताओं, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और श्रोताओं, आज सोच बदलो प्रोग्राम में हम बात करेंगे समाज के उन छोटी छोटी बातों को जो हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती है, उन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस प्रोग्राम में मैं अकेला आपका साथ नहीं दे रहा हूँ, मेरा साथ निभाने के लिए कुमकुम मेरी प्यारी सी दोस्त मौजूद है इस प्रोग्राम में। हेलो कुमकुम, आप कैसे हो?
1: हेलो आनंद, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी बहुत अच्छे हैं।
0: बिल्कुल, हम जब अपने श्रोताओं से बात करने आते हैं तो हमारे अंदर चाहे कितनी भी ज्यादा टेंशन चल रही हो, लेकिन यहाँ स्टेशन में आके सब भूल जाते हैं और सब मधुर मधुर हो जाता है। क्यों, सही कहा ना?
1: बिल्कुल, मैं जिस टेंशन के साथ आई थी मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि मुझे दिक्कत क्या थी।
0: यार यही तो रेडियो की एक पावर होती है कि आप जो मर्जी मतलब जो है सोच लो, लेकिन जैसे माइक ऑन बटन ऑन आपकी टेंशन छू मंतर, मतलब ऐसा लगता है कि एक नया जन्म ले लिया है हमने थोड़े टाइम के लिए। करेक्ट?
1: या बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हम नहीं है, कुछ नए जनरेट हो गया है।
0: एब्सोल्युटली सही कहा। सो चलिए श्रोताओं, आज जो है इस प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाएंगे और आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में सोच बदलो प्रोग्राम में मोबाइल की दुनिया या रिश्तों की दूरी।

0: दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से वेलकम बैक करते हैं आपका। मैं आनंद और मेरे साथ है कुमकुम। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। सोच तो हमारी बदलेगी दोस्तों, जब हम प्रयास करेंगे छोटी छोटी चीजों को बदलने का तो सोच तो बदल ही जाएगी। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। दोस्तों आज हर हाथ में मोबाइल है लेकिन क्या दिलों में दूरी बढ़ रही है। घर में सब साथ बैठते हैं लेकिन बातें कम और स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है। तो आज हम इसी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। मैं यानी आनंद और मेरे साथ कौन है जी?
1: कुमकुम, आप सभी की प्यारी दोस्त
0: जी। तो कुमकुम बताओ जरा, अभी जैसे मैंने जिक्र किया यहाँ पर कि आजकल जो है ना हर घर में हर हाथ में मोबाइल है और साथ में बैठे हैं फिर भी दिलों में दूरियां हैं, उसका रीजन मोबाइल ही है क्या?
1: हाँ जी राइट। हमारे बीच बातचीत कम हो चुकी है। सास बैठी हैं, ससुर बैठे हैं, या मम्मी बैठी हैं, पापा बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, लेकिन कभी भी हम एक दूसरे से बातें करने की जगह अपने फोन में घुसे रहते हैं, जिससे लोग देखते हैं कि हाँ एक साथ होने के बाद भी, एक कमरे में होने के बाद भी आपस में एक फोन की वजह से कितनी दूरियां हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, सही कहा कुमकुम जी ने और ये मुझे लगता है कि हर घर की कहानी हो गया है मोबाइल। मोबाइल जब से आया है ना, बहुत सारे फायदे तो हुए हैं मोबाइल आने के, बट कहीं ना कहीं जो रिश्तों में गर्मियां थी, जो अपनेपन का एक एहसास था, वो भी कम हुआ है। और आज इसी प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे इस मोबाइल से और रिश्तों में जो एक दूरियां बनी है मोबाइल के आने की वजह से, क्या सच में ये बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही है? क्या सही में मोबाइल आने से हमारे आपस के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहे हैं? इसी पर मैं और कुमकुम आपसे लगातार बात कर रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, आप सुनते हैं जिसे आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी स्टोरी। एक परिवार था, मम्मी खाना बना रही थी, पापा ऑफिस के काम में मोबाइल पर व्यस्त थे, बेटा गेम खेल रहा था और बेटी रील देख रही थी। दादी ने कहा, अरे कोई 5 मिनट भी मेरे पास बैठ जाओ, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अचानक से कुछ देर बाद घर की बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगी और तब सब एक दूसरे से बात करने लगे। हंसी मजाक हुआ, पुरानी बातें हुई और दादी मुस्कुराकर बोली, देखो असली नेटवर्क तो दिलों का होता है। जी हाँ श्रोताओं, तो ये कहानी नहीं है, दरअसल ये हमारे और आपके जीवन की एक सच्ची घटना है। और आज सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए मैं और कुमकुम जी आपसे इसी विषय पर बात कर रहे हैं। लगातार ये मोबाइल आने से बहुत सारे फायदे हुए हैं मेरे और आपके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा है हमारे रिश्तों पर। साथियों आप क्या सोचते हैं इन बातों से, आप जरूर हमें बताइएगा हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके। हमारा इंस्टा हैंडल आपको मिलेगा रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से, आप मुझे ढूंढ सकते हैं, या हमारी ऑफिशियल आईडी आप फॉलो करें FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से। श्रोताओं आगे और भी बातचीत हम जारी रखेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी कि एक छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक। उसके बाद मैं और कुमकुम पुनः आपसे मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: वेलकम बैक है जी, एक बार फिर से आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आज बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हमने सुना, सैयारा, बहुत प्यारा गाना है। और इसी गाने के साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आपको बता दें प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा सोच बदलो। इस प्रोग्राम में मैं और कुमकुम आपके साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल और रिश्तों की दूरियों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल और के आने से चीजें, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, अच्छी हुई हैं, नो डाउट। टेक्नोलॉजी हमारी यूज के लिए बनी है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज वेरी अमेजिंग। बट कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्तों में गर्माहट थी, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो कम होती जा रही है। और उसकी वजह क्या मोबाइल है? मुझे तो ऐसा लगता है हाँ, अगर मोबाइल है तो फिर हमें अपनी सोच बिल्कुल बदलना चाहिए। वैसे कुमकुम आपका क्या मानना है, क्या सच में मोबाइल हो सकता है रिश्तों की दूरियों की वजह?
3: हाँ जी, जरूर हो सकता है, क्योंकि जब हम एक साथ बैठे होते हैं और उसके बाद भी आपस में बातें ना करके, आपस में टाइम ना दे के हम मोबाइल चलाएं, तो वो हमारी रिश्तों में दूरी ही लाता है। आनंद, आप खुद ही सोचिए जरा, क्या आपने भी कभी परिवार के साथ बैठकर मोबाइल का उपयोग किया है, मोबाइल को समय दिया है?
0: अच्छा, ओके ओके, मतलब कुमकुम मुझसे ये पूछना चाह रही है कि क्या आपने कभी अपने परिवार के साथ बैठते हुए मोबाइल का इस्तेमाल किया है? करेक्ट। देखिए मोबाइल का इस्तेमाल तो ऑफकोर्स करते हैं यार, क्योंकि आजकल ना 95% जो काम हो गए हैं ना, सब मोबाइल पे हो गए हैं। वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सारी चीजें डिजिटली प्लान हो गई हैं, सो ऑलमोस्ट हर एक चीज, हर बंदा मोबाइल से ही सर्वाइव कर रहा है, नो डाउट। बट सी, अगर हम परिवार के साथ हम लंच पे हैं, डिनर पे हैं या ब्रेकफास्ट पे हैं, फिर हम किसी और मीटिंग के लिए बैठे हैं अपने परिवार के साथ, एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम परिवार के साथ हैं तो फिर हमें परिवार को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। मोबाइल पर रील स्क्रॉल करने का जो टाइम है ना, वो एक अलग सेट कर सकते हैं हम। बस यही सोच बदलनी है श्रोताओं हमें। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसका एक पैरामीटर सेट करो कि आपने कब मोबाइल देखना है। और मैं तो कहता हूं, अगर आप देख भी रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आपके परिवार के साथ बैठना है तो अपने परिवार के साथ बैठ के अच्छी अच्छी चीजों पर आप बात कर सकते हो। बहुत सारे डिस्कशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। और आजकल ना मोबाइल के आने से एक चीज तो है यार, जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो अपने लोग हैं ना, मतलब एक ही फैमिली में 10 लोग हैं, अपने अपने रूम में बैठे हैं, मम्मी को अगर आवाज लगानी है तो वो अब व्हाट्सएप करके बोलती हैं, बेटा नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है, बेटा लंच रेडी है, नीचे आ जाओ। एक टाइम था जब हमारी माँ किचन से आवाजें मारा करती थी और हम भागे चले आते थे। मान लीजिए श्रोताओं, या कुमकुम आप ही मान लो, अगर एक दिन के लिए फोन बंद हो जाए तो आप अपने दिन को कैसे सेलिब्रेट करोगे? क्या करना चाहोगी अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, पूरा फोन बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, बिल्कुल हम बिल्कुल फ्लैश बैक में चले जाए एकदम पुराने जमाने में, तो आप क्या करोगी अगर मोबाइल नहीं होगा तो?
3: पहले कुछ टाइम के लिए तो सोचूंगी कि ये क्या हो गया। हाँ, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है,
0: क्योंकि एक तो एक्चुअली ना हमारी हैबिट हो गई है,
3: हैबिट हो गई है, और ऊपर से हमारी छोटी छोटी चीजें, सुबह को उठ के सबसे पहले फोन देखना और बाकी चीजें कॉन्टेक्ट करना, आज किस काम में क्या है, सारी डिटेल्स हम फोन में रखने लगे हैं।
0: करेक्ट। और दूसरों की लाइफ भी ताका झाकी करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू,
3: कहीं
0: ना कहीं, है ना,
3: व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम,
0: 100%। अगर एक दिन के लिए फिर भी फोन बंद हो जाए, सो प्लीज टेल अस, आप अपने दिन को कैसे बताओगे, मतलब क्या करना चाहोगे?
3: जैसे कि पुराने दिनों में कहा जाता था कि हाँ, खेत के पास जाना चाहिए, पेड़ों की छांव में बैठना चाहिए, दोस्तों के साथ मस्ती करनी चाहिए, तो मैं उन पुराने दिनों में वापस जाना चाहूंगी।
0: बहुत बढ़िया। और अगर मुझे ये मौका मिलेगा सच में श्रोताओं, तो मैं तो अपनी नानी के घर भाग जाऊंगा अपना बैग पैक करके। मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे को नानी के घर पे जाना छुट्टियों में बड़ा अच्छा लगता था। आजकल तो खैर बड़ा जमाना डिफरेंट हो गया, नानी दादी के घर

तो आप कोई जाना ही नहीं चाहता है, सबको दिल्ली मुंबई और सारे मेट्रो सिटीज में भागना है। आई नो दैट अपॉर्चुनिटीज आपको वहां मिलती हैं, लेकिन श्रोताओं रुकिए जरा, फिर से थमिए, सोच बदलने की जरूरत है। सब कुछ वैसा के वैसा ही है, बस जरूरत है एक चीज की, वो है मोबाइल से डिस्टेंस की। और सबसे जरूरी चीज पता है क्या है दोस्तों, भावना जी, आजकल जो मैं देखता हूँ लोगों में, स्पेशली मम्मी पापा में ये चीज नोटिस करता हूँ मैं, जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, आई एम श्योर दोस्तों आप भी ये चीज नोटिस करते होंगे, नहीं किया है तो जरूर करिएगा। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी पापा को बस में ट्रेन में डिस्टर्ब करते हैं तो ना मॉम डैड उन्हें चुप कराने के लिए सीधा मोबाइल पकड़ा देते हैं, और वो बच्चे मोबाइल पे वीडियो गेम देख रहे हैं, क्या खेल रहे हैं क्या देख रहे हैं, फैमिली को पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं व्हाटएवर उन्हें करने दो। मतलब पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि स्टिल हम फ्री हो जाएं और बच्चे जो देख रहे हैं देखने दो। भाई मैं तो, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के सामने खुद मम्मी पापा फोन चला रहे होते हैं, आपने भी देखा होगा कि इवन कई बारी हम किसी किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं तो वहां मम्मी का मेकअप खराब ना हो जाए, बच्चा उसे परेशान ना कर दे, मम्मी खुद फोन का इस्तेमाल करने लगती है या बच्चों को पकड़ा देती है फोन। तो गाइज फोन से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, ये फोन ही है जो आपकी और मेरी जिंदगी को आसान बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों का भी अंत कर रहा है ये मोबाइल। तो भैया मोबाइल फोन को चलाना है जरूरी, लेकिन डिस्टेंस के साथ मेंटेन करना भी जरूरी है। फिलहाल श्रोताओं बातचीत तो चलती रहेगी, अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, हम पुनः लौटेंगे इस प्रोग्राम में, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए सोच बदलो प्रोग्राम आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। कुमकुम और आनंद के साथ आप बने हुए इस प्रोग्राम में, और बाकी अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें साझा कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से ऑफिशियल आईडी मिलती है, प्लीज फॉलो कीजिए, वहां पर आके आप बताइए आपको हमारे स्टेशन के प्रोग्राम कैसे लगते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896। चलिए रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, उसके बाद फिर पुनः लौटेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत को सुन के वाकई में ही आनंद आ गया और मैं तो फ्लैश बैक में चला गया। आपको पता है कुमकुम, एक समय होता था जब लोग कहते थे अरे भाई चुप कर यार, कितना बोलेगा, और आज की डेट में लोग बोलते हैं अरे भाई कुछ तो बोल यार, चुप क्यों है, क्यों मोबाइल की दुनिया में घुसा रहता है हर टाइम, थोड़ी तो बात कर लिया कर, है ना। एक टाइम होता था जब मम्मी बोलती थी कितनी बकवास करता है, कभी तो शांति से चुप बैठ जाया कर, और आज की डेट वो है जब मम्मी बोलती है कि बेटा थोड़ी बातचीत तो कर लेकर, क्या 24 घंटे फोन में ही लगा रहता है। कुछ कहना चाह रही थी हमारी दोस्त कुमकुम आपसे, और साथियों उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तो कुमकुम आप कुछ कह रही थी, कुछ बताने की बात कर रही थी।
1: मैं कुछ अपने श्रोताओं को प्रेरणादायक संदेश देना चाहूंगी।
0: प्लीज, प्रेरणादायक संदेश तो मैं भी लेना चाहूंगा।
1: या ऑफकोर्स, जैसे कि हम जानते हैं मोबाइल हमारे लिए आजकल कितना जरूरी है, हर वर्क में यूज होता है, तो मोबाइल हमारे लिए बुरा नहीं है, लेकिन उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। इसलिए हमें खाना खाते समय मोबाइल को दूर रखना चाहिए, बच्चों से खुलकर करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा घर में टाइम, एक बार तो टाइम बनाना चाहिए पूरे दिन में जो लिखा हो कि हाँ नो टाइम मोबाइल। याद रखिए रील्स कुछ सेकंड की खुशियां देती हैं, लेकिन आपके अपने लोग पूरी जिंदगी का सहारा बनते हैं।
0: तो क्या क्या बात है। हाँ तो आगे बोलो,
1: तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आगे।
0: देखो कुमकुम, आपने बहुत अच्छी, बहुत ही मीनिंगफुल, थॉटफुल वाली बातें रख दी हैं, थैंक यू सो मच। और सच में ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ऐसे लगता है कि रील सिर्फ हमें थोड़ी देर की खुशी तो देती है, लेकिन एक्चुअली खुशी जो हमें मिलती है वो अपनी फैमिली के साथ बात करके, हमें अपने रिलेटिव के साथ बात करके मिलती है। दोस्तों वो कहते हैं ना, आजकल नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, लेकिन कोई अगर अपना बुलाए तो बस सिंपल सी आवाज निकलती है अभी बिजी हूं बाद में आऊंगा, ये वाली बात तो 100% आपके साथ भी होती होगी। मोबाइल ने भाई सबका टाइम चुरा लिया है कुमकुम, पापा फोन पर, रील्स पर, बच्चे गेम्स में, एक ही घर में रहते हुए भी सब अलग अलग दुनिया में व्यस्त है ना। कहीं ना कहीं ये जो व्यस्तता है बहुत जरूरी है, लेकिन श्रोताओं सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें मोबाइल का भी इस्तेमाल करना है और हमें अपने परिवार को भी पूरा वैल्यूएबल टाइम देना है। उसके लिए हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। सोच बदलने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जब आप अपने घर पर हो तो अपने फोन को थोड़ा साइड में रखें। अगर आपको पता है कि आप बेवजह का समय अपने फोन पर दे रहे हैं तो वही टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए अपने परिवार से बातचीत करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में ना जो रिश्तों में गर्माहट है वो बहुत जरूरी है, और रिश्ते कहीं ना कहीं आजकल इसलिए भी खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि अधिकतर बातें तो फोन पे ही हो जाती हैं। थोड़ी सी देर में बात हुई उसके बाद तुरंत डिलीट हो गई, अभी पता चला अभी नाराजगी थी, अभी ब्लॉक हो गई चीजें। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को ना एकदम से इन्होंने खेल बना के रख दिया है। स्पेशली आजकल तो ये व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सबसे मनहूस मेरे को लगता है स्नैपचैट। भाई सच बता रहा हूँ, इतने तगड़े तगड़े फिल्टर आते हैं ना, समझ में नहीं आता लौंडा लौंडिया कब बन जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये सब चीजें जो है ना मत करो भाई, करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज यार एक समय सीमा बना लो हर चीज की। सबसे जरूरी चीज है अपने परिवार को स्पेशल क्वालिटी टाइम देना, क्यों कुमकुम, सही कहा मैंने। हाँ तो बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों अब हम दोनों आपसे लेंगे जाने की इजाजत, और इतना ही कहना चाहेंगे जाते जाते, सोच बदलोगे तो इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। तो बस आप ऐसे ही सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन, अपना शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ये वही शहर।

0: अरे जहाँ की मूंग की दाल बड़ी फेमस है, ये वही शहर है जहाँ का पीतल बहुत पॉपुलर है, और ये वही मुरादाबाद है जहाँ का अपना सामुदायिक रेडियो आज आपके साथ है। तो जुड़े रहिए दिल से दिल तक, और आज रात का खाना अगर परिवार के साथ खा रहे हो तो ध्यान रखिए मोबाइल को थोड़ा सा जो है स्पेस दे दीजिएगा। बाकी मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर कुछ और नई जानकारियों के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तो अभी चले फिर कुमकुम।
1: जी हाँ चलते हैं।
0: बिल्कुल, तो कुमकुम भी अपना थैला उठाकर जाने को तैयार है और मैं भी अपना बैग लेकर बाहर निकलने को तैयार हूँ। तो सोच बदलो, क्योंकि अपने लोग ऑनलाइन नहीं आसपास होने चाहिए। याद रखिए, कोई भी चीज अगर होती है नेगेटिव वाली तो ऑनलाइन की दुनिया के लोग नहीं आएंगे, सबसे पहले आपके करीबी लोग आएंगे। तो इसलिए अपने करीबी लोगों को स्पेशल समय दीजिए। अभी के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और बजाते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नए सफर पर।

0: आजा।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुजाता जी।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
1: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
0: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
0: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
1: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
0: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें।

0: घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
0: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं, उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए। उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं, तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं, तो उसके बाद हाथ धोएं बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
1: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
0: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी, और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
0: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है, टीबी में हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
1: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
0: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है, और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
1: अच्छा, दस्त और डायरिया, उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
0: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें, और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है, और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें, और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरिनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं, या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
1: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
0: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं, वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
1: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
0: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है, लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
1: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
0: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्त्री होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें, कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
1: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
0: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है, तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
1: सर, आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
0: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये स्वास्थ्य की कुंजी है। और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए, अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं, तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है, एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं, आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हिंदू सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: लक्ष्य मिशेलसन को हराया।
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: खाना कहाँ से मंगवाया?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ प्राची और मेरे साथ हैं आरजी आनंद।
1: हेलो प्राची, हाउ आर यू?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं आप बताइए, आप?
1: मैं अच्छा हूँ। आज तुम मुझे कौन से प्रोग्राम में लेकर आ गई हो? ये
0: आज मैं आपको लेकर आई हूँ महिला मंच, हमारा जो प्रोग्राम है और आज हम करेंगे ढेर सारी बातें।
1: अरे वाह, महिला मंच में पुरुष मंच भी खोल दिया आज आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लगा कि मेल फीमेल सब बराबर है और सबको सबके प्लेटफॉर्म पे जाने का राइट है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन, और आज आनंद भी आपके साथ रहेगा और आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो घर और दफ्तरों की दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं।
0: आज की महिला डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, शिक्षक भी है और अधिकारी भी है, और हमारी बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जो बिजनेस वुमेन बन के उभर रही हैं, लेकिन इन कामयाबियों के पीछे उनकी संघर्षों की एक लंबी कहानी छिपी है।
1: बिल्कुल, तो आइए समझते हैं कामकाजी महिलाओं की चुनौतियों को और उनके हौसले को सलाम करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। क्यों प्राची?
0: हाँ बिल्कुल।

0: जी मैंने सोचा हम ही आपका वेलकम बैक कर लेते हैं। सभी सखियों को, भाभियों को और जितने भी पुरुष सुन रहे हैं उन भाइयों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। दीदी जी कैसी हैं आप? और प्राची जी आप बताइए, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और माइक को हिला रही हैं भाई।
1: मैं तो हूँ एकदम बढ़िया। और हम बात कर रहे हैं आज महिलाओं मंच की। हम अपनी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे स्ट्रगल करती हैं पूरे दिन भर, और ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों दोनों को बहुत अच्छे से निभाती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा प्राची तुमने। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लेडीज ना हर काम में एक्सपर्ट हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चल रही हों, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एक हमारी महिला सुबह उठती है तो उसका दिन घर की जिम्मेदारियों से शुरू होता है। परिवार का ध्यान रखना होता है, उन्हें बच्चों की भी देखभाल करनी होती है, और समय पर ऑफिस पहुंचना, ये सारी चीजें कहाँ आसान होती है
0: बिल्कुल
1: ना?
0: मुझे भी नहीं लगता है ये तो बिल्कुल आसान है। स्पेशली आजकल की मम्मियों के लिए तो बहुत टिपिकल है, बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आजकल तो मम्मियां भी वर्किंग हो गई हैं, है ना? बच्चों को संभालना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, उसके बाद ऑफिस भी करना, फिर वापस घर आके घर को भी मेंटेन रखना, तो इट्स नॉट इजी प्राची। आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है। बट बिल्कुल कई बार कार्यस्थल पर भी उन्हें खुद को साबित करना होता है कि भैया पुरुषों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है कई बार हमारी महिलाओं को, और साबित उन्हें ये करना होता है कि भैया हम भी किसी से कम नहीं है, हम अपने कार्य क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए हर एक चुनौती का सामना कर रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आरजे आनंद जी आपने। और समाज की सोच भी, आपको पता है कई बार लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो उनके लिए तरह से एक हर्डल बन जाता है।
0: आई एग्री।
1: आज भी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि हमें लेडीज को घर तक ही लिमिटेड रखना चाहिए, पर हमारी महिलाएं घर और ऑफिस दोनों को अच्छे से संभाल रही हैं।
0: नहीं, ये बहुत अच्छी बात है प्राची, और मुझे लगता है अब खैर जमाना बहुत बदल गया है, लेकिन कुछ ग्रामीण एरियाज, कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जहां पर अपना एक रिचुअल्स बना हुआ है, एक रिचुअल्स चलता हुआ आ रहा है कि उनकी घर की बीबी हैं, जो उनके घर की महिलाएं हैं, वो घर से बाहर काम काज करने के लिए नहीं जाती हैं या फिर वो नहीं जाएंगी। और देखिए हर किसी का अपना अपना एक रिचुअल्स होता है, हर किसी की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर घर की महिलाएं कुछ काम काज करेंगी तो शायद वो अपने फ्यूचर में थोड़ा सा और अच्छा कर पाएंगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होंगी और कहीं ना कहीं नया कंट्रीब्यूट हमारे समाज के लिए कर पाएंगी। क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छी बात है कि हमारी महिलाएं इतनी टैलेंटेड होती हैं, इतना उनमें पोटेंशियल होता है। जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो इस तरह से वो परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं।
0: एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि वो अपने करियर को और अपने काम को दोनों को ही बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो मतलब मुझे लगता है कि प्राची आज हम वुमेन्स की बात कर रहे हैं महिला मंच में, और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो अक्सर महिलाओं को जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें फेस करने पड़ते हैं, वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं आज उस पर बात करेंगे और क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उससे पहले प्राची कुछ कहना चाह रही हो, प्लीज सी समथिंग।
1: आपकी बात सुन के, आपने जो बात कही कि महिलाएं सारा काम अच्छे से कर पा रही हैं, और ये वो इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि उनके अंदर जो आत्मविश्वास है, जो उन्होंने हौसला अपने अंदर भर के वो चल रही हैं कि उन्हें रुकना नहीं है। तो उन महिलाओं को सम्मान देते हुए एक शायरी मुझे याद आ रही है।
0: वाह वाह।
1: हौसलों की उड़ान रखती हूँ, हर मुश्किल का समाधान रखती हूँ, मैं नारी हूँ जनाब, अपने भीतर पूरा आसमान रही हूँ।
0: वेरी नाइस। आज मैं ऊपर, आसमानी। बस इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हैं महिला मंच, ये है बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, और ये है आपकी शहर का अपना प्यारा रेडियो
1: FM मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो।
1: बजाते रहिए, गुनगुनाते रहो।
0: चलो जी अभी मिलते हैं एक छोटे से गाने।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन. यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम है महिला मंच. यहाँ पर महिलाओं की राइट्स की बात होती है, उनके अधिकारों की बात होती है. और आज इस महिला मंच में पुरुषों को भी यहाँ पर बुला के लाया गया है कि आप भी आइए और आप भी जरा बताइए कि काम काजी महिलाओं के लिए, तुम पुरुषों को जो लगता है ना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत ईजी होता है हर काम, सिर्फ मर्द को ही मुश्किल लगता है, बट ऐसा नहीं है. हम लेडीज को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने.
0: देखिए कोई भी काम करना प्राची मुश्किल तो नहीं है, है ना? अगर इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, पोटेंशियल है, अगर उसके इरादे मजबूत हैं, तो चाहे लेडीज हो या पुरुष हो बहुत अच्छे से अपने काम को कर पाते हैं. बट वही है सपोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: हाँ सपोर्ट बहुत जरूरी है. अगर हम उन्हें सपोर्ट देंगे, उनके काम को अप्रिशिएट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगी.
0: करेक्ट. कामकाजी महिलाओं के सामने एक और चुनौती है, मैं आपको सच बताऊं तो, और ये देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती यही है, वो है टाइम मैनेजमेंट यानी समय का संतुलन. वो अपने सपनों को भी जीना चाहती हैं, अपने परिवार की उम्मीदों को भी पूरा करना चाहती हैं, लेकिन उसी बीच एक चैलेंज उनके लिए सबसे बड़ा हो जाता है, वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को मेंटेन करना ये अपने आप में एक बहुत चैलेंज है.
1: टाइम मैनेजमेंट, वो जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट करती हैं, यही चीज जो है उन्हें बहुत ज्यादा खास बनाती है.
0: Correct.
1: क्योंकि वो अपने बहुत खूबसूरत बात कही, वो अपने ऑफिस की भी अपना बेस्ट देना चाहती हैं और घर की परिवार की जो उनसे उम्मीदें हैं उन्हें भी पूरा करना चाहती हैं. तो ये जो बात है इसके लिए जरूरी है कि हमें ऐसी वुमेन, जो भी हमारी ऐसी वुमेन है आसपास, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए उनके काम को.
0: करेक्ट, राइट राइट राइट. कहते हैं दोस्तों थक जाती है कभी कभी मगर रुकती नहीं है, कि थक जाती है कभी कभी मगर रुकती नहीं है, आंधियों के सामने भी झुकती नहीं है, उसके कदमों में छुपी है एक नई कहानी, उसके कदमों में छुपी है एक नई कहानी, वो कामकाजी महिला है जो हार मानती नहीं है मेरे भाई. और बिल्कुल हमें महिलाओं को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्यों प्राची?
1: बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात आपने कही. हमें ऐसी महिलाओं का सम्मान करने की जरूरत है और उन्हें सपोर्ट भी देने की जरूरत है ताकि वे अपने सपनों की उड़ान को और ऊंचा भर सके.
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी एक ऊंची उड़ान भरेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद. जल्दी वापस मिलेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे. आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो.
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो.

0: जी दोस्तों, वेलकम बैक है आपका और आप सुन रहे हैं महको पंच। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं आरजे आनंद।
1: क्या बात है प्राची, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, महिला मंच में आके मुझे बहुत मजा आ रहा है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें अपनी घर की विमेंस की, अपने घर की महिलाओं की, तो अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हो जाता है। लेकिन आजकल तो खैर प्राची, हमारी घर की विमेंस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई है। तुम्हें पता है ना, जैसे आजकल महिलाओं को बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना आसान बना दिया हमारी घर की महिलाओं के लिए। बहुत सारे द्वार खोल दिए हैं। आप घर से जो लोग अचार बनाते हैं वो घर से ऑनलाइन अपने अचार को कर सकती हैं, मतलब अपने अचार को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकती हैं। घर बैठे बैठे मार्केट तक, लोगों तक पहुंचा सकती हैं। कोई अच्छी सिलाई करती हैं, कोई अच्छा बुनाई करती हैं, अच्छी कढ़ाई करती हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं महिलाओं को आसान बना रही है, उनके काम को थोड़ा आसान बना रही है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी आ गई हैं।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। और क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं, जब से ये डिजिटल दुनिया का दौर शुरू हुआ है तब से वो अपने काम को, जो भी उनकी तरफ पोटेंशियल है, कोई अच्छा डांस करती हैं, कोई अच्छी सिलाई करती हैं, अच्छी बढ़िया बढ़िया
1: कोरियोग्राफी करती हैं, बहुत हाँ, बढ़िया है ना। और कुछ वुमेन्स बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो रेसिपी बनाना सिखा रही हैं। और कुछ महिलाएं बहुत अच्छी टिप्स देती हैं, स्किन के घरेलू रेमेडीज बताती हैं। तो सोशल मीडिया ने, तुम्हारे कहने का मतलब है, बहुत इजी कर दिया उनके टैलेंट को आगे पहुंचाने के लिए ना।
0: बिल्कुल, सोशल मीडिया एक बहुत ही, कह सकते हैं हम, एक बहुत ही बढ़िया माध्यम बन गया है, ऐसा सशक्त माध्यम जो महिलाओं को बहुत आगे लेकर जा रहा है।
1: Gotten. मुझे भी लगता है दोस्तों, और आजकल महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी आ गई हैं, क्योंकि महिलाएं हमारी किसी भी क्षेत्र में आप उठा लीजिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और आजकल महिला हो या पुरुष, हर किसी को अपने लाइफ में, हर किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का राइट है, अपने सपनों को जीने का राइट है, क्यों प्राची?
0: बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की।
1: चलिए तो एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक एंड वी कम बैक विद यू आनंद एंड प्राची।
0: यस।

0: मकसद है देश की रक्षा, उसके लिए सबसे पहले आप सबको एक सिपाही बनना पड़ेगा, तभी आप कॉकपिट में दाखिल होने के लायक बन पाएंगे। कल से आप सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर?
1: यस सर।

0: वेलकम बैक है प्राची और आनंद के साथ हैं आप। आज हम लोग महिलाओं की राइट्स की बात कर रहे हैं, महिलाओं की उन कामकाजी वुमेन्स की बात कर रहे हैं जो अपने टैलेंट को अब बहुत इजीली लोगों तक पहुंचाती हैं। और आज हम उन सभी टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं जो हमारी वुमेन्स के लिए बड़े चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन जब वो दिल से करती है ना तो उनके लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। राइट प्राची?
1: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और डिजिटल मीडिया ने महिलाओं को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खोल दी हैं। और बड़ी बड़ी वो बिजनेस अपने जो भी उनके अंदर स्किल था, आज उन स्किल्स को वो बहुत आगे बढ़ लेकर जा रही हैं। और बड़ी क्या बोलते हैं, एक तरह से एक बहुत ही बड़ा उन्होंने अपना बिजनेस भी स्टैब्लिश कर रही हैं वुमेन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगे।
0: एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि हर वुमेन्स की अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक संघर्ष की कहानी है,
1: बिल्कुल
0: है ना। हमारी मम्मियों को देख लो यार, जिन्होंने कभी बस कलर टीवी पे रंगोली देखी थी, आज वो भी इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दे रहे हैं, है ना। वेल, मेरी मम्मी तो खैर नहीं करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो हमें और डांटती है कि फोन भी घुसे रहोगे, इसके बाहर भी निकल के देखोगे। वेल, आजकल की मम्मियां वेल बहुत एक्टिव होती है, अच्छी अच्छी हमारी मॉम्स को रेसिपी, अचार और पापड़ और ना जाने कितनी सारी चीजें आती है। और जब वो सोशल मीडिया के थ्रू लाखों लोगों तक सर्कुलेट करती है तो उन्हें जो खुशी मिलती है ना, उन्हें देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है।
1: बिल्कुल, जो उनका जो फील था हम बस घर तक समझते थे, मतलब ऐसा एक हमारा लोगों का कहीं ना कहीं परसेप्शन था कि उनका जो फील्ड है वो बस घर की चार दीवारी तक है। पर आज जो मोबाइल ने हमारी मम्मी, जो हमें हमारी आसपास आंटीज हैं, उनको एक तरह से पूरी तरह से वो एम्पावर्ड कर दिया है। जो भी उनके अंदर स्किल है, भले वो बहुत छोटा स्किल हो कि कोई बड़ा स्किल हो, फिलहाल स्किल तो स्किल होता है, उसका अपना इम्पोर्टेंस होता है।
0: मुझे लगता है, प्लीज प्लीज कंटिन्यू प्राची।
1: और अपने उस स्किल के दम पर भले उनको मेहंदी आती हो, अपना बिजनेस उन्होंने इस तरह से एस्टेब्लिश किया है, जो नेटवर्क अपने लिए
0: क्रिएट किया है
1: और इससे जो वो अर्न कर रहे हैं, एक तरह से एम्पावर्ड बन रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक बहुत ही अच्छे दौर में हम आ गए।
0: करेक्ट। तो दोस्तों, बस आज का यही संदेश है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए चुनौतियां आना कंपल्सरी है। जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारी लाइफ में चैलेंजेस, चुनौतियां तो आती ही हैं। जिस लाइफ में चैलेंज रहा हो वो लाइफ ही किस काम की, क्यों प्राची? तो बस आपको चैलेंजेस का सामना करना है। और कोई लीडी अगर चुनौतियों का सामना कर रही है तो हमें उनका सामना करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है, उनको कॉन्फिडेंस देना है और उनके साथ उनके काम को सराहना है और उनके आत्मविश्वास के साथ उन्हें और ज्यादा पुश करना है कि वो और मोटिवेट हों।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हमारा FM मुरादाबाद 89.6 ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करता है और सब उन्हें और उन्हें प्लेटफॉर्म देता है कि वो आके अपनी बात कहें, अपने स्किल, अपने टैलेंट से पूरे शहर को, पूरी दुनिया को रूबरू कराएं।
0: क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ फिलहाल तो मैं लूंगा आपसे इजाजत। बस यही कहना मैं चाहता हूं जाते जाते, क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो वो सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ती है, पूरे समाज को, पूरे परिवार को और पूरे देश को आगे बढ़ाती हैं। राइट प्राची?
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हम करते हैं सलाम ऐसी महिलाओं को।
0: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। और बस मैं तो जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर कोई स्किल है ना आंटी, अगर आपके अंदर कोई बढ़िया टैलेंट है दीदी, तो उसको बाहर निकालो भाभी जी, सिर्फ किचन तक मत रखो। अगर आप बहुत अच्छा राजमा चावल बनाती है, आप बहुत अच्छे कढ़ी चावल बनाती है, आप बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती है, तो उसको सोशल मीडिया पे शेयर करो। हो सकता है वो छोले भटूरे का रेसिपी किसी और के काम आ जाए और उसकी जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाए।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
0: आजकल लड़कियां ना ऐसा हो गया है कि मतलब यू नो खाने बनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं, क्योंकि उनको स्टडी करना है, उनको फ्यूचर ड्रीम पूरे करने, तो यूट्यूब भी उनके लिए हेल्पफुल होता है।
1: हाँ।
0: है ना, तो ऐसे में जो हमारी प्यारी प्यारी भाभी जी हैं, जो हमारी प्यारी प्यारी दीदी जी हैं, जो बहुत एक्सपर्ट है,
1: इतना एक्टिव है,
0: एब्सोल्युटली, तो उनकी रेसिपी देख के आज की जेंजी को, आज की लड़कियों को एटलीस्ट कुछ तो हेल्प हो जाएगा यार। तो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है, प्लीज आइए एंड लाइफ में ऐसे ही रॉक मचाती रहिए। बाकी मोर डिटेल्स के लिए, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सुनते रहिए
1: FM मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। चलिए हम लेते हैं आपसे इस प्रोग्राम से इजाजत और फिर मिलेंगे जल्दी इस नए कार्यक्रम में और कुछ नई बातों के साथ। और ये तो महिला छह महिलाओं का कार्यक्रम, अगर आप आना चाहती हैं, आप कोई अपनी प्यारी बात करना चाहती हैं, कुछ सुनाना चाहती हैं, तो बिल्कुल आपके लिए भी ये मंच खुला है, क्यों प्राची?
1: आप हमसे जुड़ सकती हैं, हमारी फरमाइशी नंबर 8968968968 एक बार और बता देती हूँ, 9837896896।
0: बिल्कुल, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए अपना टैलेंट और अपना नाम, हो सकता है अगली मॉर्निंग आप हमारे साथ स्टेशन पे हो। फिलहाल हम दोनों जाते हैं छोड़ के कुछ खूबसूरत गीत के साथ। आप सुनते रहिए महिला मंच, जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू
1: FM मुरादाबाद 89.6।
0: बाय बाय
1: बाय बाय।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों, कहते हैं ना कि मौसम का भी ना एक अपना ही मूड होता है। कभी बादल की ठंडी ठंडी छाओ तो कभी अचानक खिलखिलाती धूप। और आज का ये बदला मौसम जैसे कह रहा हो, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा मुस्कुराइए और इस खूबसूरत दोपहर को अपने नाम कीजिए। और दोस्तों, इस ब्यूटीफुल सफर में मेरे साथ जुड़ जाइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। शो का नाम है हेलो फरमाइश, जहां पर आप सुनेंगे अपने पसंद के गाने। जी हाँ, ये कार्यक्रम रहने वाला है, 5 बजे तक होने वाला है और आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिर सोचिए मत, जल्दी से कॉल लगाइए और हमारे श्रोता 3 घड़ी में बजते रहिए, कॉल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये रेडियो के प्रति जो आपकी दीवानगी है ना, सच में बहुत प्यारी है। और अभी बात करते हैं अपनी फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार, हम बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके और आपके परिवार का।
0: जी जी सर, हम तो ठीक हैं, आप बताइएगा, आपकी दुआएं हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं और आपके परिवार में सब कैसे हैं सर?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत अच्छे हैं, परिवार में भी बहुत अच्छे हैं। कुछ तबीयत मेरी खराब है।
0: हाँ, मैं अभी कहने ही वाली थी, आपकी आवाज में मुझे ऐसा झलक रहा था कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है।
1: जी, अभी तो आपको कॉल पिछले हफ्ते भी कॉल नहीं करी थी।
0: जी, तो अभी कैसे है सर, आपका स्वास्थ्य अभी ठीक है?
1: तो ठीक है, अभी तो आपको कॉल लगा।
0: चलिए, ऊपर वाली से हम दुआ करते हैं कि आप और जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। जी,
1: मैं अपना तारुफ करा दूं।
0: हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
1: आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: आज की फिल्म का गाना सुनना चाहूंगा। गाने के बोल हैं, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी हर खुशी हो।
0: ठीक है सर, कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे आप?
1: बिल्कुल, राबिया खान है, सिमरन खान है, शहनाज बाबू अंसारी है, मिराज अंसारी है, शफी अहमद, रईस दुलर, शानूर अंसारी, शारिक अली, इरशाद अली, लाल मोहम्मद अंसारी, अयूब खान, ईशान मारती, यही सब सुनना चाहेंगे।
0: ठीक है सर, आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और सुनी गए खूबसूरत से गीत आपने कॉल किया, शुक्रिया आपका।
1: आपका भी बहुत शुक्रिया।
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुनाई बेहतरीन सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी आशिकी, अनुराधा पौडवाल और साथ में कुमार सानू जी की बहुत प्यारी आवाज। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी, हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं नाजिया।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं नाजिया? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से बात कर रहे हैं। बताइएगा नाजिया, कैसे हैं आप?
1: मैम हम बहुत अच्छे हैं, आप बताएं आप कैसे हो?
0: हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। बताइएगा नाजिया, क्या कर रहे हो आप?
1: मैम इस टाइम हम काम कर रहे हैं।
0: इस टाइम आप क्या काम कर रहे हैं?
1: मैम हम हैंड वर्क काम कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइएगा आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हो आप?
1: मैम हमें न्यू गाना सुना है, दर्द से तू मेरा इम्तिहान ले।
0: ओके, और ये ट्रैक आप किन के साथ सुनना चाहते हो?
1: मैम मेरी सिस्टर है सना, और मेरे नाना है, मेरे खाचो से शमशाद अली
0: जी,
1: और मेरी पूरी फैमिली।
0: ठीक है, आपकी पूरी फैमिली के साथ सुनवाते हैं गाना। थैंक यू डियर, अपना ख्याल रखो अच्छे से और प्यारे प्यारे गाने एंजॉय करो। मोस्ट वेलकम। तो चलिए अभी फन सुनते हैं नाजिया की पसंद पर ये गाना, उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत। आप भी जल्दी से कॉल लगाइएगा।

0: हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आरजी खुशी करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:22। साथियों, इस फोन इन कार्यक्रम में आप भी कॉल कर सकते हैं और उसके लिए हमारा नंबर आपको डायल करना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश
1: जी।
0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: सलमान हाशमी
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं सलमान आप?
1: अदालतपुरा।
0: मुरादाबाद से?
1: जी जी।
0: ओके, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: छोटी जगह दे दे मुझे, मेरे पास रह जाओ मैं।
0: अच्छा, ओके। और ये ट्रैक किन के लिए सुनना चाहते हैं आप?
1: दोस्तों के साथ है।
0: ओके
1: जी,
0: ठीक है, सुनवाते हैं गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप कॉल लगाना बिल्कुल मत भूल जाना। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराना तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है? और एंजॉय कीजिएगा ये ट्रैक। मैं बस आती हूँ अभी वापस।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: सिर पे हाथ।
1: जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए अब खास बात खुदा में है।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी आपके साथ है। और अभी आपने ये टाइटल ट्रैक सुना विशाल मिश्रा जी की आवाज में, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक, एक दीवाने की दीवानियत। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, मोहम्मद उस्मान साकिब उल्लाह के नक्की पैसे बोल रहा है, मोहम्मद उस्मान और गुप्ता
0: जी बताएगा। ठीक है सर, सुनवा देते हैं गीत आपको। आपने कॉल किया, शुक्रिया आपका,
1: धन्यवाद सर, प्रोग्राम अच्छा चलाते।
0: शुक्रिया शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक इलू इलू। ठीक है, और आप भी जल्दी से मुझे कॉल लगाइए बिना किसी देरी के। हमारा ऑफिशियल नंबर है,
2: बताइए क्या होता है
0: इलू का मतलब, आई लव यू। तो चलिए दोस्तों, हम लौट कर आते हैं, है ना। आप भी कॉल लगाइएगा, आपका कॉल भी जल्दी से लग जाएगा।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
1: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
0: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत आज ही खुशी करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने ये गाना सुना, बहुत ही प्यारा सा, कविता कृष्णमूर्ति जी और साथ में उदित नारायण जी की आवाज, सुखविंदर सिंह दे रहे थे साथ, और मनोहर दास जी की भी आवाज एंड लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के, और म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी। अभी फिलहाल बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो बहन जी, नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: बहन जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बहुत मजे में हैं बहन जी, बहुत आनंद में है।
0: आनंद में ही रहना चाहिए हमेशा। बताएगा आज मौसम कैसा है चंडीगढ़ का, पंजाब चंडीगढ़ का?
1: और पंजाब का ठीक है, लगभग एक सा ही मौसम होता है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो हमारे जहाँ अभी दिन में तो गर्मी पूरी होती है बहन जी।
0: अच्छा।
1: और सुबह शाम का थोड़ा थोड़ा मौसम अब बदलने लगा है।
0: हाँ, टेम्परेचर इवनिंग का थोड़ा सा चेंज हुआ है और मॉर्निंग में भी।
1: हाँ, और दिन में तो लगभग अभी काफी गर्मी होती है।
0: हाँ जी,
1: धीरे धीरे मौसम बदल जाएगा, अभी और एक महीना लग जाएगा, फिर काफी ठीक हो जाएगा जी, गर्मी से राहत मिल जाएगी।
0: हाँ जी, हाँ जी। बताएगा आज आप क्या सुनेंगे सर?
1: बहन जी, आज एक बड़ा ही दार्शनिक गीत है, फिल्म है कठपुतली।
0: हाँ जी,
1: और किशोर कुमार जी की आवाज है
0: जी,
1: बोल उसके मैं गुनगुना के बताऊंगा।
0: हाँ जी, हाँ जी, गुनगुनाइए, हम तो सुनने के लिए तैयार हैं।
1: शुक्रिया जी, शुक्रिया। जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी,

0: अरे वाह, बहुत खूबसूरत गीत है, लिरिक्स बहुत ही प्यारे हैं सब, और आपने भी बहुत अच्छा गुनगुनाया है, तो सुनवाते हैं ये खूबसूरत
1: धन्यवाद
0: गीत आपको।
1: बहन जी,
0: मोस्ट
1: धन्यवाद
0: वेलकम सर।
1: धन्यवाद।
0: तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं किशोर कुमार जी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत, लौट कर आते हैं हम, तब तक आप भी प्रयास कीजिएगा, आपका कॉल भी जल्दी से लग जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजी खुशी के साथ शो चल रहा है हेलो फरमाइश। और अभी सुना आपने किशोर कुमार जी की आवाज में खूबसूरत से गाना फ्रॉम द मूवी कठपुतली जो 1971 में आई थी। और अभी बात करते हैं अपने अगली कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी, हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, कैसे हो? जय श्री कृष्ण।
0: जय श्री कृष्ण। तमे केम छो?
1: मजामा। तमे केम छो बेन?
0: मजामा। बताएगा गुजरात का मौसम कैसा है? सो
1: गुजरात का मौसम तो अभी कच्छ का तो बिल्कुल धूप है।
0: अच्छा,
1: बारिश की बहुत जरूर है, लेकिन अभी एक डेढ़ महीना जैसे होने आया है।
0: हाँ,
1: बिल्कुल बारिश नहीं है।
0: ओके, एक डेढ़ महीना हो गया है, बारिश नहीं हुई वहाँ पर?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं है बहन जी, हो गया कम से कम एक डेढ़ महीने जितना होने को आया है अभी।
0: ओके,
1: बिल्कुल बिल्कुल एक मतलब इतना कौन के एक छाता भी नहीं गिरा है जैसे के।
0: अच्छा,
1: और वो ऐसे ही मतलब पहले से ही कच्छ में बारिश इस साल तो कम ही है।
0: ओके,
1: अभी किसानों को बहुत परेशानी है।
0: हाँ, क्योंकि पानी की नीड तो होती है खेतों में जब हम कोई फसल उगाते हैं।
1: फसल में जो लगाया है जो उसके ऊपर वाले के भरोसे जो लगा दिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो
0: सही कह रहे हैं।
1: लगा दिया अभी वो तो आया नहीं, तो अभी किसको हम दोष दे, है ना?
0: हाँ, राइट
1: जी। तो मुझे गाना सुनना है आज।
0: जी बिल्कुल, बताएगा कौन सा गीत आपको सुनना है? सो
1: बाजी फिल्म का गाना है। उसमें उदित नारायण और साधना सरन की आवाज है
0: जी,
1: और गाने के बोल है धीरे धीरे आप मेरे मेहमान हो गए।
0: अरे वाह, बहुत खूबसूरत गाना है
1: जी। और बहुत टाइम के बाद अभी फोन किया हूँ
0: जी।
1: जी, क्या व्यस्त रहते हैं खेती बाड़ी में तो थोड़ा टाइम कम मिलता है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: रहते हैं।
0: हाँ, कार्यक्रम तो सुनते रहते हैं आप, काम भी करते रहते हैं, कॉल लगाने में ऐसा होता है ना सर, टाइम लगता है फोन लगाने में।
1: हाँ, वो क्या है जब थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, तो उसमें थोड़ा फुर्सत हो तो अभी 15-20 मिनट तक आप ट्राई मार सकते हैं, तो उसमें चांस रहता है ना।
0: जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर।
1: हाँ जी,
0: तो आपको सुनवाते हैं गाना, आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।
1: धन्यवाद
0: जी। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर मैं वापस आती हूँ, तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा, आपका कॉल भी जल्दी से लग जाएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: तो दोस्तों अभी आपने सुनाई प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी बाजी जो 1995 में आई थी और इस खूबसूरत गीत को गाया था उदित नारायण जी साथ में साधना सरगम जी की बहुत प्यारी आवाज। और बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से कौन हमारे साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: फरमाइश, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर?
1: हाँ जी आकाशवाणी रेडियो मुरादाबाद जी।
0: हाँ जी सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल बेटा, खुशी बेटा, प्यार अते सत्कार भरी सत श्री अकाल भाई, पंजाब से बोलता हूँ बेटा।
0: हाँ जी, नाम दसो।
1: नाम बेटा पिंड माउण खुद जिला बठिंडा पंजाब तो जगजीत मट्टू बोलता भाई, दोबारा सत श्री अकाल बुलाता हूँ भाई।
0: सत श्री अकाल जी, बताइएगा सर बठिंडा पंजाब का कैसा मौसम है?
1: मौसम बेटा सावन भाई सारा सुखा गया भाई, गर्मी ज्यादा है।
0: बारिश नहीं हुई उथे?
1: बारिश भाई मेहनत हुई है पर इतनी नहीं हुई, ज्यादा नहीं हुई भाई।
0: अच्छा बताइएगा आप कैसे हैं?
1: बेटा अपने मुरादाबाद कैसे है मौसम?
0: मुरादाबाद का मौसम तो ऐसा है, कभी धूप निकल आती है तो कभी बादल छा जाते हैं। हां जी, हमारे फैमिली विच सब वधिया है, तुसी दसो
1: की ठाक भाई? छोटे नाल गल बात करके दा भाई साडा मन बाग बाग हो जांदा है भाई।
0: थैंक यू जी, बताएगा
1: छोटे भाई इन्ने सोहने प्रोग्राम चलदे बेटा, खुशी बेटा तुसी इन्ना सोहना प्रोग्राम दिंदे भाई, छोटी उम्र बड़ी तो बड़ी हो भाई, बाबा नानक नूं चढ़दी कल जाके भाई।
0: थैंक यू सो मच सर, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्रिया आपका। बताएगा आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: बेटा फिल्म है की खतरों के खिलाड़ी, पुरानी फिल्म है धर्मेंद्र भाजी की।
0: हाँ जी
1: ते गीत बेटा गीत ने गाया आनंद बाखी साहब ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का जी, ते आवाज हैगी बेटा ये भैन अनुराधा जी की, अनुराधा पौडवाल साहब
0: जी।
1: गुनगुना लो। धन्यवाद बेटा, थैंक यू जी, बाबा नानक जी आपकी कला चला सुनो बेटा।

0: ना हो ना, एक ही था बेटा।
1: अरे वाह, बहुत प्यारा गुनगुनाते हैं आप तो।
0: धन्यवाद बेटा, जे तुम्हारा हुक्म होवे याद हो तो बना ले दूं।
1: हाँ जी हाँ जी
0: बेटा, मेरे मान जो बड़े भाई है सरदार प्रगट सिंह ढिलो साहब, रविंदर सिंह टग्गर साहब जी,
1: हाँ जी,
0: तेजी संतोख सिंह मित्री साहब जी, तेजी तेजी प्रिंसिपल अमरजीत सिंह बाला साहब जी,
1: हाँ जी,
0: ते बेटा एक मेरे स्वामी साहब जी कथा की कथा बात खान बेटा धर्मपाल, एक धर्मपाल है जी वो एल आई सी का काम करता है जी,
1: okay, जी।
0: बेटा आपको प्यार सत्कार भी सत श्री अकाल
1: बुलाते हैं। सत श्री अकाल जी, थैंक यू आपने कॉल किया सर, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और सुनिएगा एक खूबसूरत गीत।
0: ठीक है बेटा, चंगा भाई बाबा नाल की अर्धी आवाज रखे भाई, जम दे रहे बात दे रहे।
1: तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और लौटकर मैं वापस आती हूँ, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, हमें उम्मीद है आपका कॉल लग जाएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 98 378 96 896।

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: Hi everyone, good evening. आपका वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर एंड हमारे साथ हमारी नेक्स्ट कॉलर कनेक्ट हुई है, उनसे बात करते हैं. हेलो फरमाइश.
1: हेलो
0: फरमाइश. हाँ जी, क्या नाम है आपका? इनाया. इतने फोन से दूर क्यों हैं आप? थोड़ा सा फोन की क्लोज आइए. क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, सॉन्ग सुनने के लिए, सुनाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बट फोन के पास तो आइए या फोन को अपने पास लेकर आइए. आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है मेरे को.
1: अच्छा, फोन तो पास में है, कान पे है.
0: हाँ, अभी ठीक है आपकी वॉइस आई है. बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: मुरादाबाद
0: से बात कर रहे हो. ओके, लाइन पर से बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आज आप.
1: ए मेरी
0: हम सफर. ठीक है, सुनवाते हैं गाना. ओके नाया. या बाय. तो चलिए नया की पसंद पर सुनते हैं ये अमेजिंग सा ट्रैक उदित नारायण जी और साथ में अलका याग्निक जी की बहुत प्यारी सी आवाज. और इस गाने को हम एंजॉय करते हैं मिलकर सब. आप भी कॉल लगाना एवरीवन.

0: देखिए दोस्तों, अगर आप भी अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं, कहने का मतलब है अगर आप घर ऑफिस से घर जा रहे हैं तो केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा। और हाँ, ये प्यारे से क्यूट से चेहरे पर ना स्माइल रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुस्कुराते हुए आपसे बहुत प्यारे लगते हैं, तो मुस्कुराइए। और अभी बात करते हैं अपने अगली कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार। राधे राधे।
0: राधे राधे आपको भी सर, बताइएगा अपना शुभ नाम।
1: जी मैं जिला मुरादाबाद सम्मल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप और परिवार में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: सब बढ़िया है परिवार में, बस मौज आ रही है, ऊपर वाली कृपा है बाकी।
0: हाँ जी, उनकी कृपा रहती है तो सब मौज में ही रहते हैं।
1: जी जी, तभी खुश रहने चाहिए, तभी खुशी है अपनी भी।
0: हाँ जी बिल्कुल सही सही कहा आपने सर। बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जी आज फिल्म का नाम है भीगी पलकें।
0: हाँ,
1: और गाने के बोल हैं, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा।
0: अरे वाह,
1: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है।
0: जी जी जी, सुनवाते हैं गीत आपको।
1: जी कुछ नाम तो ले दूं मैं?
0: हाँ हाँ बिल्कुल लीजिएगा, नाम के बिना तो आपका मुझे लगता है कि गाना अधूरा है। हाँ
1: हाँ
0: जी।

0: मीना मुन्नी पवित्रा अजय आंचल आकांक्षा आकाश और खंडिया गैस से हैं अमरजीत भाई।
1: ओके
0: जी, सभी की फरमाइश पर ये गाना सुनना चाहता हूँ।
1: ठीक है सर, आप अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक राधे राधे आपको भी। एंड एवरीवन, आप भी जल्दी से ट्राई करो ना, क्यों इतना मतलब देर लगा रहे हो? अच्छा मौका है, जल्दी से कॉल लगाओ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और अभी सुनिएगा एक खूबसूरत सा गीत।

0: बिल्कुल दोस्तों, आपका और हमारा साथ भी बना हुआ है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजी खुशी आपका वेलकम करती है। और ये खूबसूरत से गाना अभी हमने सुना, कितना खूबसूरत ट्रैक था ना एवरीवन, जितनी खूबसूरती से इसको गाया गया है, लिरिक्स भी उतने ही खूबसूरत थे। एम जी हसमत जी ने इस खूबसूरत गीत को लिखा था और इस ब्यूटीफुल ट्रैक को गाया था मोहम्मद रफी साहब ने, और साथ में लता जी की बहुत प्यारी आवाज। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्ते आपको भी सर, अपना नाम बताइएगा।
1: मैं रमेश पात्र गोलाघाट असम से बात कर रहा हूँ
0: जी। बताइएगा कैसा मौसम है असम का?
1: मौसम तो ठीक है, मौसम तो साफ है।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप बताइएगा कैसे हाल चाल है आपकी?
1: हाल चाल तो बहुत अच्छा है।
0: बहुत ही अच्छा रहना चाहिए जी। बताइएगा।
1: तो खुश हो गया।
0: हाँ, आप मेहनत करने के बाद जब हमें सफलता मिलती है तो खुशी तो होती ही है।
1: होती है, होती है
0: जी। आप बताइएगा सर, आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश है साजन का घर मम्मी का गाना है, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही शानदार सा गाना है।
1: मैं कुछ दोस्तों का नाम याद कर लूं?
0: हाँ बिल्कुल बताइएगा।
1: अमल बसुमतारी, बिमल बसुमतारी, भाईकन मुंडा, देवाशी सागरिका, गोनू पात्र, लाकी दीपांकर, पूरण सिंह वर्मा, भगवान सिंह वर्मा, शिवा लोहार और तानुषी।
0: हाँ ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और हमें कॉल लगाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।

तो दोस्तों अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक अलका याग्निक जी और साथ में कुमार सानू जी की आवाज में। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। देखिए ढूंढने से कहते भी है ना कि भगवान मिल जाते हैं, और खुशियों की बात रही तो जिंदगी में गम और खुशियां दोनों ही आते हैं। तो जब आप अभी सोच रहे हैं कि लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, खुशी का तो नामो निशान ही नहीं है, दोस्तों आप कोशिश तो कीजिए। जब आप चेहरे पर स्माइल लेकर आएंगे ना

आएगा, क्या फरमाइश है आपकी? जी सर, आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही, क्या बोलना चाहते हैं आप? हम जरा गुनगुना दें, ये कहना चाह रहे हैं सर? आपकी वॉइस ना मुझे क्लियर नहीं मिल पा रही है प्रॉपर, एक्चुअली आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है, आप प्लीज। ठीक है, सुनवाते हैं गाना, आप एंजॉय कीजिएगा और मिलकर दोस्तों के साथ खूब गुनगुनाइएगा ये खूबसूरत सा गीत। तो चलिए सुनते हैं एवरीवन, उसके बाद लौट कर आएंगे, तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा ट्रैक अभिषेक रैना की आवाज में। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं राइट नाउ। हेलो फरमाइश। हाँ जी, खुशी बात कर रही हूँ मैं। सर
1: मजा माँ
0: तुम्हें केम छो?
1: आनंद में।
0: अच्छा, नाम बताइएगा अपना सर।
1: मैं गांव मेकपटी टोड़ी द्वारका गुजरात से झाला रमणीलाल बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, आप कैसे हैं सर?
1: आनंद मंगल में है। हमारे कृष्णाष्टमी मनाई द्वारका हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। जन्माष्टमी का शुभ कामना।
0: हाँ, कान्हा का जन्मदिन तो अभी कंप्लीट हो गया, अब राधा रानी जी का बर्थडे आने वाला है। हाँ जी,
1: गणपति बापा मौर्या।
0: गणपति बापा मौर्या, या बताएगा आप क्या सुनेंगे आज सर?
1: आज फिल्म 10 नंबरी का टाइटल गीत है, दुनिया 1 नंबरी में 10 नंबरी एक गीत जरूर सुना दीजिए। साथी मित्रों का नाम ले सकता हूँ?
0: जी जी जी बिल्कुल बताइएगा।
1: तो मेरे साथ जूनागढ़ है और ज्योतिलाल गड्डिया जयपुर का है। सभी मित्रों आपका मुरादाबाद रेडियो सुनता है, सभी ग्रुप हमारे, तो आप सभी को मेरा शुभेच्छा।
0: ओके, आपको भी नमस्कार, सभी आपके सुनने वाले दोस्तों को भी। और सुनिएगा एक खूबसूरत सा गीत। धन्यवाद सर, आपने कॉल किया हमें। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मोबिक किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। आरजी खुशी आपके साथ है और मेरे साथ एक मैम जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हेलो
1: मैम।
0: हाँ जी मैम, जय श्री राम। जी मैं ठीक हूँ, आप बताइएगा आप कैसे हैं?
1: बढ़िया है मैम।
0: क्या नाम है आपका? हाँ जी मैं भी ठीक हूँ मैम, अपना नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम गीता शर्मा है।
0: गीता शर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मुरादाबाद से।
0: मुरादाबाद से बात कर रही हैं, बताइए मैम क्या सुनना चाहती हैं आज आप?
1: जी हम हनुमान हंस का वो सागर में नैया डाल गई वो है।
0: हाँ जी हाँ जी, ये सुनना चाहते हैं आप?
1: जी मैम जी।
0: ठीक है, सुनवा देते हैं आपको। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।
1: थैंक
0: यू, मोस्ट वेलकम। तो चलिए मैम की पसंद पर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत सुनील लोधी जी की आवाज़ में। सुनील लोधी जी की आवाज़ में ये प्यारा सा ट्रैक, और ये फिल्म बहुत ट्रेंडिंग रही है, अभी भी चल रही है कंटिन्यू, एंड हम भी डिसाइड कर रहे हैं कि इस फिल्म को देखने के लिए जाएं। तो चलो अभी गीत सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: तो दोस्तों अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत एंड फ्रॉम द मूवी हनुमान अंश, सुनील लोधी जी की आवाज में बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं और गीत भी बहुत प्यारा गाया है उन्होंने। दोस्तों जब जिंदगी में ना कुछ समझ नहीं आता ना, चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां नजर आती हैं, तब हमें एक ही आसरा नजर आता है, वो है प्रभु का। और जब हम उनके भरोसे रहते हैं ना, जब हम सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देते हैं, तो यकीन मानिए एवरीवन, सब कुछ ठीक होता है। और अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए आप भी ख्याल रखिएगा अपना, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। और आज आपका कॉल नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, आप कल भी कॉल लगाइएगा, ये अवसर अभी आपको सैटरडे तक मिलने वाला है। तो बस बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अपने स्माइल को ना बिल्कुल भी कम मत होने दीजिएगा, ठीक है। Bye bye, take care everyone, keep smiling.
1: Every brand sounds identical.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है, मस्त नजरों से अल्लाह तुम्हें बचाए। फिलहाल तो मैं कहती हूँ जी, देखिए यहाँ पर कोई आपको नजर लगाने वाला नहीं है क्योंकि आप अपने घर बैठ कर ही रेडियो सुनेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, रेडियो की ट्यूनिंग ना बिल्कुल भी आपने चेंज नहीं करनी है, कनेक्ट करके रखना है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:12 हो चुके हैं, इवनिंग मस्ती शो शुरू हो गया है, तो आपने बस कनेक्ट रहना है क्योंकि हम बात करेंगे लोकल से लेकर फॉल वोकल, यानी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, और साथ ही साथ आज का स्पेशल डेज क्या है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं भैया। क्योंकि आज की अगर तारीख की बात करूं तो 10 सितंबर, और 10 सितंबर को मैंने आपको कल ही बताया था कि आज से राशन बटना शुरू हो गया, यानी कि फ्री राशन आप उठा सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ यूपी वालों के लिए है ये। और ये टाइमिंग रहेगी आपकी पूरा, मतलब बीच का गैप दिया गया है 25 तारीख तक, मतलब ये इसलिए शुरू हो रहा है कि जो बीच में जिन्होंने राशन अभी तक नहीं उठाया है वो उठा सके, ताकि जिनका राशन कार्ड है वो सील ना होए, मतलब बंद ना होए। अगर बंद हो जाता है तो आपने दोबारा बनाना पड़ेगा और फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, तो 3 महीने की टाइमिंग आपको लग सकती है। तो बस आज रीना के साथ कनेक्ट रहिए, और आज जिनका बर्थडे है ना भैया, उनको हैप्पी वाला बर्थडे, और साथ ही साथ बताएंगे कि आज एक स्पेशल भैया है जो जिनका बर्थडे है उनका भी नाम अनाउंस करेंगे आप सभी के साथ। फिलहाल ये गाना

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद। Thank you.

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है आरजे रीना के साथ। अब कनेक्ट है और समय की बात करूं तो 5:00 यानी कि 21 मिनट हो चुके हैं और आप इवनिंग मस्ती शो एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं भैया, देखिए हर कोई मैच खेलने के दीवाने होते हैं ना, तो अपने जो हार्दिक पांडे हैं जो यानी कि अक्टूबर से फिर से BCCI में वो कनेक्ट होने वाले हैं और उन्होंने काफ़ी छुट्टियां ले ली है, लेकिन अब फिर से रिकमबैक करने वाले हैं, फिर से कनेक्ट होने वाले हैं और वही छक्के चौके वही जलवे फिर से दिखाने वाले हैं, जिन्हें हर लोग कहता था ये तो छपरी है, लेकिन इसी रुतबे ने हर किसी के दिल में उन्होंने अपनी जगह बनाई। और आज भैया जब वो मैदान में उतरता है ना लड़का, तो छक्के चौके ही झाड़ता है और साथ ही साथ विकेट की तो बस पूछो मत। जब तक वो जब एक बार भी उसको मौका मिले तो एक विकेट तो हमेशा उड़ाना ही उड़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस तैयार रहिए और साथ ही साथ आप ऑन द वे हैं तो आप सभी से बस यही कहना चाहेंगे कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा कर सकता है। और साथ ही साथ आप ट्रैफिक में हैं, चाहे हरथले की तरफ हो, चाहे PSC की तरफ हो, चाहे रेलवे स्टेशन की तरफ हो, चाहे दिल्ली रोड की तरफ से आप रवाना हो रहे हैं, जीरो पॉइंट की तरफ से आप रवाना हो रहे हैं, या फिर मुरादाबाद आना चाहते हैं, तो देखिए जीरो पॉइंट दिल्ली रोड से आ रहे तो जीरो पॉइंट की तरफ से आप आएंगे तभी आप मुरादाबाद आ पाएंगे, अदरवाइज पता चले कि आप दूसरे रूट पर पहुंच गए हैं। सो उसके लिए क्या करना है जी आपने, अरे बस कुछ नहीं करना है, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाते रहना है और आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है। ऑनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए आपने प्यास लगी है, आई नो मुझे पता है प्यास लगी, तो ये गाना सुनाते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी।

और वो स्वस्थ रहे, इसलिए ये पोषण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप जो फ्रूट्स हैं, जितने भी न्यूट्रिशन वाले खाने हैं, उसको आप भरपूर मात्रा में खाइए। और अपने आंगनबाड़ी, नज़दीकी आंगनबाड़ी से कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ पर आपको हर एक जानकारी मिलेगी। और जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी डॉक्टर आपको बताते हैं कि एकदम ज़्यादा नहीं खाना है आपने, थोड़ा थोड़ा खाना है, लेकिन पौष्टिक आहार आपने खाना है, ताकि आप भी स्वस्थ रहेंगे और आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और आज रीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। श्रोताओं, और समय की बात करूँ तो 5 बजकर यानी कि 33 मिनट हो चुके हैं। और देखिए, हर कोई अपने घर में ना ये कहता है कि मुझे ताजा खाना खाना है, ताजे फ्रूट्स खाने हैं। हम मार्केट्स भी जाते हैं ना, तो फल जो होते हैं, सब्जियां होते हैं, तो उन्हें चेक करते हैं कि ये ताजे हैं या नहीं है। और वो ताजे होते हैं तभी लेते हैं, और वो भी हम छाट कर लेते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भैया कश्मीर को बड़ा तोहफा मिलने वाला है, यानी कि जल्द ही चलेगी फूड ट्रेन, दिल्ली मुंबई पहुंचेगा ताजा सेब। जी, कश्मीर से यानी कि अब बहुत ही जल्द ट्रेन चलने वाली है, जिसमें ताजे फ्रूट्स इंडिया और मुंबई पहुंचाया जाएगा, ताकि हर किसी के पास शुद्ध यानी कि जो ताजे फल है वो हर किसी तक पहुंचे। और ये कहा जा रहा है कि यानी कि जम्मू से करीब 7 से 8 घंटे यानी कि पहुंचा जा सकता है, जो यानी कि ट्रेनें चलाएगी, जिससे रफ्तार भी सही रहेगी और जो फ्रूट्स है वो भी इंडिया आसानी से पहुंच पाएगा बिना किसी परेशानी के। अब सोचिए, जो हम फ्रूट्स यहाँ पर, एप्पल की बात करूँ तो 120, 150, 200 रुपये किलो तक मिलते हैं, और वहीं जब आप कश्मीर जाएंगे तो भाई वह थोड़ा सा जो भाव है ना वो डाउन हो जाता है। क्यों? वहाँ पर तो इसके खुद पेड़ होते हैं, पेड़ उगते हैं। और सच बताऊँ, ताजे जो एप्पल होते हैं ना, जो रसीले होते हैं, और साथ ही साथ ग्रीन वाले एप्पल, आय हाय, मतलब इतना टेस्टी लगता है ना कि आप भैया एक खाओ, एक के साथ साथ दो भी बोलोगे कि नहीं मैं दो भी खा लूंगा, तीन भी खा लूंगा, इतने रसीले लगते हैं ताजे एप्पल। तो अगली बार जब मार्केट जाए तो हम देखिए, हर कोई छाट कर ही लाता है, भैया नहीं हम तो ताजे लेंगे। और बहुत से होते हैं कि सस्ते के चक्कर में बोलते हैं, भैया सस्ता ये तो उठा लो, तो ऐसा नहीं करना, आपने देख कर लाना है। पता चले सस्ते के चक्कर में अंदर से गले सड़े, सड़ेले मड़ेले मिल जाए, तो उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और भी ढेर सारी बातें करेंगे। और आज करण मेहरा का भी बर्थडे है, जिनको आपने सीरियल में भी देखा होगा, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। और साथ ही साथ आज हमारे सीएमओ ऑफिस से यानी कि अंकित सर है, उनका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। जब भी जाओ भैया यानी कि सीएमओ ऑफिस, तो वो काम ना बड़े जल्दी करवाते हैं, तो आज उनका भी बर्थडे है। तो हैप्पी वाला बर्थडे आपको अंकित सर, और आप यूं ही अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, आगे बढ़ते रहे और खुशियाँ बांटते रहे। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।

या कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई चीटिंग वाला केस बेबी, शरीफ हूँ मैं।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज।

0: आकिब, ओए होए क्या बात है जी, बहुत ही शानदार कोक्का वाला आप गाना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आरजे रीना भी आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है वेदर अपडेट लेकर। हां जी, क्योंकि आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तो 10 सितंबर है और हमारे मुरादाबाद की फिलहाल टेम्परेचर यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। बादलों के साथ साथ धूप और हवाई की तो बात पूछिए मत ना, मतलब एक पेड़ का पत्ता तक हिल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। पवन देव भगवान कह रहे कि नहीं नहीं बेटा, तुमने एक हफ्ते बहुत आनंद लिए है तो इसलिए आज मैं थोड़ा थम जाता हूँ, थोड़ा रुक जाता हूँ। फिलहाल धूप बहुत ज़्यादा थी आज, गर्मी भी और साथ ही साथ उमस वाली गर्मी। तो भैया ये जो महीना है यानी कि चिपचिपी वाली गर्मी, ऊपर से इतने मच्छर कि पूछो मत, मच्छरों की तो मतलब समझ लो टोली निकल जाती है शाम होते होते। और अगर मैं आज की अगर वेदर की बात करूं तो 10 सितंबर को ये बताया जा रहा है कि 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, यानी कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि आज मौसम बहुत ही ज़्यादा शाम के टाइम ख़राब होने वाले हैं, आंधी तूफान की संभावना जताई जा रही है और 56 की स्पीड में हवाएं चलने वाली है। और साथ ही साथ ये दिल्ली, हरियाणा, यूपी की बहुत से राज्य में आज बारिश बताई गई है। तो बस यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रही है और भी ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल बात करने वाले हैं आज के स्पेशल डेज के बारे में। एक मैसेज आता है हमारे पास, रीना जी गुड इवनिंग, रीना जी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग प्ले करती हैं लेकिन कभी कभी जैसे बीच में आप सॉन्ग रोक कर और कनेक्ट हो जाती, तो देखिए सर हमें कनेक्ट भी होना पड़ता है। तो इनका कहना है कि थोड़ा सा मजा मतलब किरकिरा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं जी, हम आपको गाना डेफिनेटली पूरा सुनाएंगे, डोंट वरी। आप बस बिंदास होकर आरजे रीना के साथ कनेक्ट रही और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते।
1: और सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज अगर समय की बात करूं इवनिंग मस्ती शो में, तो समय हो चुका है 5:54 और आज का डे बहुत ही खास है। आज है 10 सितंबर और आज मनाया जाता है यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है यानी कि रोकथाम, इसके प्रति जागरूक बढ़ाना और मानसिक परेशानी से जूझ रहे लोगों को मदद और सहारा करना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दिमाग से थोड़े मतलब वो बीमार भी रहते हैं, जो कुछ समझ नहीं पाते हैं और थोड़ा मेंटली डिप्रेस रहते हैं, उनके लिए है कि WHO ने ये स्कीम चलाया है कि इनकी अच्छे से देखरेख की जाए और ये भी अच्छे और स्वच्छ जीवन जी सके। इसीलिए ये डे मनाया जाता है आज 10 सितंबर को। तो बस आपके आसपास भी अगर कोई है जो लग रहा है कि भैया ठीक हो सकता है, तो उसको गाइड करिए, अस्पताल पहुंचाइए, ताकि वो भी को जितना जल्दी हो सके ठीक रहे और इस दुनिया को और अच्छे तरीके से इन्जॉय कर पाए। क्योंकि देखिए, इंसान को ना हेल्प कर देना चाहिए, कोई भी हो, अगर आप किसी की मदद करते हैं ना तो भगवान खुद आपकी मदद करते हैं, आपको कभी मतलब परेशान नहीं होने देते। इसीलिए हमेशा दूसरों की मदद करना बहुत ज़रूरी है और हमेशा यूं ही दूसरों की मदद हमें करती रहनी चाहिए। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होती हूँ जी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। देखिए, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:03 हो चुके हैं और अब हम बात कर लेते हैं मूवी रिव्यू। हाँ जी, अगर हनुमान अंश मूवी की बात करूँ तो 35वें दिन हनुमान अंश मूवी ने यानी कि 500 करोड़ की यानी कि पैसे कलेक्शन कर चुकी है। और साथ ही साथ अगर टॉक्सिक मूवी की बात करूँ तो भाई इनके तो भैया इतने लागत से पैसे मूवी बनी, लेकिन उस लागत से इनकी कमाई नहीं हो पा रही है। फिलहाल अगर आप मूवी देखने गए होंगे तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कि इनकी जो मूवी है आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी वाली मूवी लगती है। आप बता सकते हैं मैसेज करके, नंबर है 9837896896। और मैसेज की बात करूँ तो हेलो रीना जी, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। ये विक्की सागर जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, बढ़िया। हाँ जी, एकदम बढ़िया है। ओहो, कॉफ़ी भेज रहे हैं सर, ज़रा ऑफिस भेज दीजिए, व्हाट्सएप पर कॉफ़ी भेजते हैं, बताइए, इसको पी भी नहीं सकता है कोई भी। हम समझ गए थे कि कॉफ़ी भेजा है आपने। चलिए, फिलहाल एक हरियाणवी ट्रैक सुनाते हैं आपको गाना, उसके बाद कनेक्ट।

हेलो जी, गर्द वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ। अब कनेक्ट हो गए श्रोता और समय की बात करूं तो 6:10 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 10 सितंबर है। और आज ये कहा जा रहा है कि देखिए, अगर आप चांदी खरीदना चाह रहे हैं तो चांदी में भैया अभी गिरावटें आ चुकी हैं। अगर पहले चांदी की बात करूं तो 2,57,000 रुपये था और अब वही घटकर 2,49,900 हो चुका है। सोने और चांदी में हल्की सी गिरावटें आई हैं। तो आप चाह रहे हैं लेने के लिए, जो भी कुछ बनवाना चाहते हैं, कुंडल, नोच पिन, इयररिंग्स, तो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि फिर से सस्ता होएगा, तो शायद ऐसा मौका ना मिले, तो इसलिए बनवाइए और एंजॉय।

0: 9.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

हेलो जी, गर्ड वाली इवनिंग है, आर्जेरीना के साथ आप कनेक्ट हैं। और समय की बात करूँ तो 6 बजकर यानी कि 18 मिनट हो चुके हैं और आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट हैं इवनिंग मस्ती शो में। और अब ये कहा जा रहा है कि हनुमान अंश का जो पार्ट 2 आएगा उसमें विराट कोहली और अनुष्का नजर आने वाले हैं। जी, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी उसमें अपना अभिनय करते हुए आपको नजर आएंगे। ये बताया जा रहा है कि वो भी पार्ट 2 में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जो पार्ट 2 देखा और साथ ही साथ वो बहुत पहले से भी यानी कि नीम करौली बाबा जाते थे नैनीताल घूमने के लिए भी, दर्शन करने के लिए। और ये मूवी देखने के बाद भैया उन्होंने एक मैसेज हम सभी के लिए भी दिया कि हर किसी को ये जो हनुमान अंश मूवी है इसको आपने देखने जाना चाहिए। और ये बहुत अच्छी मूवी है, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, हर किसी को ये मूवी जरूर एक बार देख कर आनी चाहिए। और इसके बाद इन्होंने तो भैया अब ये कहा जा रहा है कि ये भी पार्ट 2 में नजर आने वाले हैं। और साथ ही साथ आज का कड़क सवाल भी तो पूछना है, बहुत आसान पूछेंगे आप सभी से। आज ना आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ज्यादा आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ। तो आई होप कि आप सभी रेडी रहेंगे आज। और साथ ही साथ मैसेज की बात करूँ तो बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, आपको प्यारी प्यारी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हेलो, गुड वाली इवनिंग है, इवनिंग मस्ती शो में आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है जी, आप बताइए कैसे हैं। ललिता जी कनेक्ट होती हैं। और आज मौसम बहुत ही गर्म हो रहा है। हाँ जी, आज भैया गर्मी है, हाय गर्मी, हाय गर्मी। और इनका कहना है कि चाय पी लीजिए। बिल्कुल जी, हम बिल्कुल चाय पी लेंगे, डोंट वरी। और ये साथ ही साथ लिखती है, गर्मी से गर्मी को मात देने का नज़ारा निराला है। रीना मैम की आवाज में भी एक ठंडा सा उजाला है। मौसम चाहे कितना भी तपता रहे दिन रात, आपकी मुस्कान से महक उठती है हर बात। क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने लाइन लिखी। और इसी के साथ एक और गाना और फिर हम आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। बस आप सभी से यही कहेंगे कि आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रही, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है, यादों की बारात। आर्जेरीना के साथ यादों की चादर ओढ़े हुए हैं, यानी कि आर्जेरीना के साथ अब कनेक्ट है। समय की बात करूं तो 6:28 हो चुके हैं और अपने मुरादाबाद में भी गणेश उत्सव को लेकर भैया जगह जगह तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और हाई होप कि आप सभी ने भैया तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि पप्पा के स्वागत में ना कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम धूमधाम धमाल से होनी चाहिए उनके बर्थडे का सेलिब्रेशन, यानी कि गणेश उत्सव और आने वाला है बहुत ही जल्द। तो उनकी भैया जो तैयारियां है ना, अभी से हर कोई तैयारियां करने लगे हैं और साथ ही साथ पप्पा को लेने के लिए पहले ही चले जाते भैया और उन बोल देते हैं, फिक्स कर आते कि ये वाले जो गणेश जी है हमारे घर जाएंगे, तो इसीलिए फिक्स है, आप किसी और को मत दीजिएगा, है ना। हाँ, ये पहले से फिक्स हो जाता है। और साथ ही साथ देखिए, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम की डेट है वो भी फिक्स हो गई है, यानी कि 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 25 अक्टूबर, यानी कि 2 शिफ्ट में अब की बार एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बस आपने क्या करना है भैया, अभी से ही अपनी जो तैयारियां है जोरों शोरों से रखिए और पढ़ते रहिए और ध्यान लगाकर पढ़िए, ताकि भैया आपने जो मेहनत करी है ना उसका परिणाम तो मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल वाला मैं पूछने वाली हूँ आप सभी से, ज्यादा कोई भी प्रेशर वाला नहीं है, आपने सोचना नहीं पड़ेगा, गूगल पर नहीं जाना पड़ेगा, व्हाट्सएप नहीं यानी कि यूट्यूब नहीं खोलना पड़ेगा आपको कि भैया सर्च करो आखिरकार जो मैंने पूछा है उसका आंसर क्या हो सकता है, बल्कि आज मैंने आप सभी के लिए बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन लेकर आई हूं। यानी कि आज का हमारा क्वेश्चन है कि आपने अपनी पहली सैलरी से सबसे पहले क्या किया था, यानी कि बहुतों की जब पहली सैलरी आती है तो फैमिली वालों के लिए कपड़े कुछ ना कुछ ज़रूर लेते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं, बहुत से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ना कुछ आए हाय लेते हैं, देखिए चेहरे पर स्माइल तो देखो कितनी अच्छी वाली आई है, गर्लफ्रेंड के नाम लेते ही है ना। तो आपने बताना है कि जब आपकी पहली सैलरी आई तो आपने किसके लिए क्या लिया, यानी कि पहली सैलरी से आपने कहाँ यूज़ किया अपने पहली सैलरी को, बस आपने मैसेज करके बताना है। नंबर है 9823789698। देखिए अगर आप बताएंगे ना तो मैं भी बताऊंगी, क्योंकि जो मेरी पहली सैलरी आई थी तो मैंने क्या किया था। फिलहाल आपने मैसेज करके बताना है कि पहली सैलरी से आपने अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ लिया था, या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करा था आपने, या फिर जिनके भैया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके लिए कुछ लिया था। देखिए जब पहली सैलरी आती है ना, पहली कमाई और पहली कमाई की पहली सैलरी की खुशी अलग ही होती है, तो आपने बताना है कि अपने फैमिली वालों के लिए क्या लिया था और क्या करा आपने। फिलहाल एक और गाना सुनते हैं और लौट कर आती हूँ आप सभी के बीच, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के दिमाग।
6: प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का

0: की फीलिंग्स।
1: ओए होए क्या बात है जी, मेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया। ये गाना सुनकर भैया आज तो हर कोई यही कह रहा होगा, भैया दिल टूटे तो टूटे लेकिन क्या एंजॉय करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना। भैया बॉस ऐसे होते हैं कि ब्रेकअप होने के बाद बोलते हैं चलो यार पार्टी शार्टी करते हैं, क्योंकि जिससे मैं पीछा छुटाना चाह ही रहा था आखिरकार फाइनली अब मैं फ्री हो गया हूँ, तो बहुत से पार्टी करते हैं, बहुत से गम में डूबे रहते हैं। फिलहाल एक ही बात कहना है कि गम में डूबने से कुछ नहीं होता है, आप अपना ही दिमाग खराब करेंगे और अपना ही फ्यूचर खराब करेंगे, क्योंकि जाने वाला तो जाएगा ही, चाहे आप उसको कितना भी रोकने की कोशिश कर लीजिए। जो जाता है वो कभी रुकता नहीं है, क्योंकि आप आंधी तूफान को रोक नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी कर लो, घर में डस्ट वगैरह तो आएगा ही आएगा। तो इसी के साथ ये कहा जा रहा है भैया, देखिए आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूँ तो 6:42 हो चुके हैं, और ये कहा जा रहा है देखिए कल मुरादाबाद में भी बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि फिर से दोबारा पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो फिर से बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, अभी ये फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं, बढ़ने की संभावना है। यानी कि ये इसलिए किया जा रहा है, देखिए सरकार को तो यही लग रहा है ना कि हम मतलब जितने भी महंगाई करेंगे तो थोड़ी गाड़ियां कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता है, देखिए इंसान खाना खाना भूल सकता है लेकिन गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं भूल सकता है। अब बात कर लेते हैं फोन के रिचार्ज की, महंगाई इतनी हो चुकी है भैया, रिचार्ज करो तो एक बार रूह कांप जाती है, जब पहले अगर करे तो करते थे तो एक महीने की 300 होती थी, लेकिन अब बढ़ा दी गई है भैया रिचार्ज भी, तभी भी इंसान नहीं मानता ना, रिचार्ज तो करवाता ही है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, गाड़ी तो चलेगी अपनी, गाड़ी नहीं रुकने वाली है। लेकिन उसी के साथ साथ हेलमेट अगर आप पहन के जाते हैं तभी आपको पेट्रोल और डीजल मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलने वाले हैं। फिलहाल अपने मुरादाबाद की ही बात करूँ तो मैं हम परसों ही पेट्रोल पंप की तरफ से आ रहे थे, तो मैंने बहुत से ऐसे देखे कि जो हेलमेट भी पहन कर नहीं आ रहे थे लेकिन वो किसी और से लेकर पेट्रोल ले रहे थे, क्योंकि उनको अलाउ नहीं है कि बिना जो हेलमेट नहीं लगाते उनको पेट्रोल ना मिले, तो इससे वो क्या कर रहे थे, दूसरे से हेलमेट लेते और खुद पहनकर जब डीजल लेते थे हेलमेट पहनकर। तो मुझे ये ना हमें ये लगता है कि देखिए मेरे बोलने से या सरकार के बोलने से बहुत से ऐसे रेयर ही होंगे जो अपनी जान उनको प्यारी होती है, और बहुत से सोचते हैं अरे यार छोड़ देना, 2 घंटे 2 मिनट लगेंगे यहाँ जाने तक, क्या ही जाता है, ऐसे चले जाते हैं बिना पहने, लेकिन 2 घंटे मतलब 2 कदम की दूरी पर कब क्या हो जाए आपको भी नहीं पता है, इसीलिए हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट पहनना आपकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि आप अपनी सुरक्षा के लिए पहन सकते हैं ताकि आप सेफ रहेंगे। और साथ ही साथ आज का कड़क सवाल भी मैंने आप सभी से पूछा है, कुछ नहीं करना यार, सिंपल सा आपने हमारे पास आंसर पहुंचाना है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने सैलरी पूछी है कि पहली सैलरी आपकी कितनी थी, तो वो बिल्कुल नहीं पूछा है मैंने, सिर्फ आपसे ये मैंने पूछा है कि जब पहली सैलरी आई थी तो घर वालों के लिए आपने मम्मी पापा के लिए कुछ लिया था, या फिर मम्मी को पैसे दिया था, या फिर दोस्तों के साथ आपने पार्टी करी थी, या फिर गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड के लिए कुछ लिया था, या फिर अपनी पहली सैलरी आपने सेव करके रखा कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इसका यूटिलाइज करूंगा, क्योंकि पहली सैलरी होती है और उसकी खुशी ना नेक्स्ट लेवल वाली होती है। तो बस यही आपने बताना है हमें मैसेज करके, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9823789689 पर आप मैसेज करके बता सकते हैं, क्योंकि भाई हर किसी को खुशी होती है अपनी पहली सैलरी की। फिलहाल मिलेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: ਜਨਾਲੋ ਵੀਰੇ ਆਜ਼ਾਬ ਬੜੇ
1: बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है भैया, और सच बताऊं ऐसे ऐसे गाने सुनने को मिल जाए ना तो इवनिंग अपने आप मस्त हो
2: जाए।
1: समय की बात करूं तो 6:55 हो चुके हैं और आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है, और अब देखना ये है कि भैया किनका हमारे पास क्या मैसेज आता है। मैंने आप सभी से यही पूछा था कि जब पहली सैलरी आई थी आपकी तो आपने क्या किया था। चलिए मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं इरशाद हुसैन अंसारी जी, सैयद शारिक अली जी, रीना जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे, आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत चंगे होंगे। आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ गाने बहुत ही शानदार प्ले कर रही हैं आप, थैंक यू जी। विक्की सागर जी का कहना है कि जब मेरी पहली सैलरी आई थी तो मैंने मम्मी को ही दी थी। ओके, अगले मैसेज की बात करूं तो ये ललिता जी हमारे साथ कनेक्ट होती है, और इनका कहना है कि जब मेरी भी पहली सैलरी आई थी तो मैंने अपनी मम्मी को ही दी थी, और मेरी पहली सैलरी उस टाइम 1500 थी। क्या बात है जी, देखिए पैसे कितने भी हो लेकिन अपनी पहली सैलरी जब आती है ना तो बड़ी खुशी होती है। दौलत बाग मुरादाबाद से अंसार हुसैन जी कनेक्ट होते हैं। रीना जी आप का दीवाना था, थैंक यू सो मच सर, और सारे प्रोग्राम बहुत ही सुंदर और अच्छे होते हैं, शुक्रिया जी। अगले मैसेज की बात करूं तो हमारे साथ दीपक जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि जब मेरी भी पहली सैलरी आई थी ना तो मैंने अपनी मम्मी के लिए साड़ी ली थी। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है, फैमिली के लिए हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेना चाहिए। और अगली मैसेज की बात करूँ तो रूपाली जी कनेक्ट होती हैं मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि जब मेरी भी पहली सैलरी आई थी तो मैंने ना अपनी मम्मी को घुमाने के लिए लेके गई थी मैं वृंदावन। ओहो, ये तो मेरी वाली कहानी सेम हो गई, लेकिन मैं अपनी मम्मी को सालासर लेके गई थी बालाजी यानी कि मेहंदीपुर घुमाने के लिए अपनी मम्मी को। राहुल जी कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना कि जब मेरी भी पहली सैलरी आई थी तो अपनी मम्मी पापा के लिए मैंने कपड़े लिए थे, और फिर शाम को हमने पार्टी रखी थी तो बहुत अच्छा लगा था मैम, क्योंकि पहली सैलरी चाहे 500 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 10000 हो, 20000 हो, लेकिन पहली सैलरी की ना खुशी ही अलग होती है। और आज वो दिन है कि मैं एक टाइम मैं घर वालों से फोन बोलता था कि मुझे दिला दो, अब मैं घर वालों को मैंने खुद अपने पैसे से फ़ोन दिलाए हैं, और आज हमारी फैमिली बहुत हैप्पी है, हम सभी बहुत हैप्पी है, और भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारी फैमिली हमेशा ही यूं ही रहनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, भगवान से यही गुजारिश है कि बस हर किसी की फैमिली खुश रहे। देखिए खुशियों के लिए ना ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास दौलत शोहरत हो, जिनके पास दौलत शोहरत है उनके पास खुशियाँ नहीं है, और जिनके पास दौलत शोहरत नहीं है ना उनके पास भी बहुत खुशियाँ हैं। तो खुशियों के लिए ना जरूरी नहीं है कि दौलत शोहरत हो हमारे पास, बस प्यार होना चाहिए, इंसानियत बनाकर रखिए अपने अंदर। और अगले मैसेज की बात करूँ तो ये

हमारे साथ कनेक्ट होते हैं विवेक जी दिल्ली से, और आज जिनका कहना है कि भैया मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ लेकिन मैं दिल्ली रहता हूँ, आज स्टडी करता हूँ और आज अपने मुरादाबाद आ रहा हूँ और आपका रेडियो सुन रहा हूँ और पता ही नहीं चल रहा कि कब मैं घर पहुँचने वाला हूँ। मतलब इतना मज़ा आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है ना कि क्या ही कह सकते हैं। फिलहाल मेरी कोई पहली सैलरी तो नहीं आई है, लेकिन हाँ पहली जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं अपने मम्मी पापा को ना घुमाने के लिए लेकर जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने मम्मी पापा को घुमाने के लिए।

0: ਹੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਚ ਗਾਲ ਨੀ ਕੱਢਣੀ
1: ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ
2: टिकोरे खांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जिनफिंग 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यह यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा प्रभाग के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि आने वाले विशिष्ट अतिथियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है।
3: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रसिद्ध समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगा खान विकास नेटवर्क के समाज सेवी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पानी और साफ सफाई, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा और सामुदायिक विकास में आगा खान विकास नेटवर्क के योगदान पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चीन के पूर्वी बंदरगाह शहर चिंगदाओ में एक मरम्मत के लिए खड़े विदेशी ध्वज वाले मालवाहक जहाज में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार लाइबेरिया के ध्वज वाले बल्क कैरियर ओशन मेलोडी में आज सुबह आग लगी। खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

0: हेलो जी नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
1: प्राची।
0: यस, और प्राची आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
1: हाँ, किस चीज की बताइए?
0: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
1: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोंडा की गलियों में, जहाँ की हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, जहाँ की परंपराएं आज भी दिलों में बसती है, जहाँ स्वाद में संस्कृति है और विकास में एक नई पहचान, जहाँ छोटे छोटे हुनर बन रहे हैं बड़े सपनों की उड़ान। ये है नया उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की उन कहानियों से जो सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा, स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र, और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
0: और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहां की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहां गलियों में स्वाद बसता है और जहां हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा, और आज यहाँ बात होगी यहाँ के मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
0: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी नई।

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी,
1: और सामने बड़ी सी भगौनी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुँह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की पहचान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिले में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहाँ तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को जो जिला स्तर पर अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको सम्मान मिला है, उनको प्रोत्साहित करने की योजना है।
2: चलिए बताइए, इस योजना से आपको व इस व्यापार के लोगों को, जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा?
3: इस योजना से हमें तो बहुत लाभ होगा और हमारे साथ जो व्यापार में, इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ होगा, जिससे कि ये कल्याणकारी योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना है। और इससे जुड़े हर जिले में जो अहम खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य आइटम, मशहूर खाद्य पदार्थ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है। उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, मतलब जो भी सरकार से हर तरीके का, हर संभव मदद मिलती है, लोन संबंधी हो या हर तरीके का, सरकार उसमें मदद कर रही है। और छोटे व्यापारियों को जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करके फ्रंट पर ला रही है।
1: और अब बात करते हैं गोंडा की दूसरी पहचान, खस्ता कचौड़ी की।
0: दोस्तों गोंडा पर अवध संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और अवध की रसोई हमेशा से अपने नसाफत से भरे स्वाद और मसालों के लिए मशहूर रही है।
1: यही वजह है कि यहाँ की कचौड़ी भी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास होती है।
0: इसकी भराई में उड़द दाल, हींग, धनिया, सौंफ, काली मिर्च और कई देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है
1: और फिर इसे धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार ना हो जाए।
0: गोंडा में सुबह सुबह दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये एक आम बात है, कोई चाय के साथ कचौड़ी खा रहा है तो कोई दोस्तों के संग नाश्ते का आनंद ले रहा है।
1: और सबसे मजेदार बात, यहाँ कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
0: दोस्तों गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
1: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
0: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
1: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
0: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
1: गोंडा की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: यानी जूस स्वाद पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
1: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गाँव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
0: दोस्तों, किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती,
1: बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
0: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
1: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा

0: से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
0: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं।
1: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है,
0: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
1: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना, तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूँगा।
0: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए तो?
1: तो भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज आएंगी।
0: दोस्तों, अगर आप कभी गोंडा जाए, वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर।
1: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
0: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं, यादों का भी हिस्सा होता है।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
0: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
1: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ। तब तक सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, मैं आनंद और मेरे साथ
0: प्राची,
1: जल्दी आपको मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।
0: बाय बाय।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। ये है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जिसपे हम कुछ न कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद हैं, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी बातें करती हैं, और बहुत ही अल्टीमेट सी यू नो वाइब आ रही है मुझे इनके साथ यू नो बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था मैम बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी उनकी, आपको अल्टीमेटली वो एक फील यू नो आएगी बातों में, और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम आपको स्टेशन आके कैसा लगा, हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का यू नो एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
1: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं, नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? सो गाइज, आई होप आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली, और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जैसे पुराने जमाने
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: ठीक है, तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीजें, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के लिए आप आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है, तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेस, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं, बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती है, उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभाल जल्दी है पर उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
1: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते
1: हैं। आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर वर टू पीपल, ठीक है, हमारी स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है। अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड। तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पॉर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें। तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ, एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम जो पैप स्मियर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो, डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें, बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे, आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे। तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ, अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकते, और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
0: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैम ने कहा। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं आज, वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच, आजकल के लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जैसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
1: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर।
0: ठीक है
1: अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर। ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपके सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है। इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे। करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है, इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रहे हैं। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले। पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है, कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए,
0: करेक्ट करेक्ट,
1: गवर्नमेंट इज रनिंग कि एब्सोल्युटली अब पोलियो इराडिकेट हो गया हमारे। ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन्ड तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए। अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3 से 4 हजार रुपए की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट
0: बिल्कुल,
1: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है।

0: देयर इज इंक्रीजिंग रेट।
1: ठीक,
0: तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप ईयरली नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली बाय ईयरली आप मेमोग्राफी करा ले प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती है।
1: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया। यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो HPV वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है। पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है। आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
0: I would say कि प्लीज लगवाइए, ठीक है। इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही। कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए,
1: Absolutely.
0: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा।
1: करेक्ट मैम, बिल्कुल।
0: और पहले जब पैसे देके लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है। नो, इट इज नॉट अ स्कैम। इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को। प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें।
1: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एवी का वैक्सीन आप जरूर कराएं। ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैम थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारे यू नो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स यू नो लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में। अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेके बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं? यू नो, पैड्स मत यूज करो, ये मत करो।
0: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है। आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है, ठीक है। अब इफ आई वुड से, ये सब नॉर्थ में है। इफ यू सी सनातन धर्म, दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल। क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना। जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, दैट द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच। तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन। अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी।
1: Correct.
0: मंदिर ऊपर हुआ करते थे,
1: right.
0: तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था। तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं। दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था। इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है, हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना। सो अभी भी, अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। द थिंग इज, जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू, आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो, ठीक है। मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माय मदर, ठीक है। मम्मी जब होती हैं तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स, की ठीक है। व्हेन आई एम अलोन एट माय होम आई फॉलो माय रिचुअल। तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते। थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी। जब इतना लास्ट, पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। तो थिंग्स आर चेंजिंग, व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग, व्हाई कांट वी अपडेट ना।
1: करेक्ट। अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं?
0: एग्जैक्टली exactly.
1: तो उसके विषय में थोड़ा सा यू नो आप बताएं।
0: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज। आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज, ठीक है। अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमेनोरिया यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज। तो ये सब बीमारियां हैं। अब पीरियड नहीं आए, एक दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है, बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास 3 पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32 एंड 3 साल से एमिनोरिक है यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा, हेड देख

0: कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम.
1: ओके वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. सो आई होप जो भी वुमेन्स जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे. आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही है. बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं. एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीजों को यू नो एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज से कहीं ना कहीं.

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

अध्यक्ष से संवाद का अवसर मिला। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने आज सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एससीएल दास को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। श्री दास ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर श्री सूद ने श्री दास को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और उम्मीद व्यक्त की कि उनके व्यापक प्रशासनिक अनुभव का लाभ दिल्ली के विद्युत क्षेत्र को मिलेगा। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली

0: सरकार बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध मादक गोलियां की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 किलोग्राम 832 ग्राम से अधिक वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद की। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 पहिया वाहन भी बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने आज दिल्ली यातायात पुलिस की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया है। इस वेबसाइट के जरिए लोग टोक की गई गाड़ी की ट्रैकिंग, चालान की स्थिति और उसके भुगतान तथा यातायात अपडेट आसानी से देख सकेंगे। लोगों की मदद के लिए इसमें ट्रैफिक सारथी नाम का AI चैटबॉट भी शुरू किया गया है, जो तुरंत जानकारी और सहायता देगा। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह वेबसाइट सिर्फ सरकारी सेवाओं तक सीमित न रहे, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने का भी माध्यम बने। उन्होंने कहा कि तकनीक और नागरिकों को साथ लेकर चलने से दिल्ली को और सुरक्षित, स्मार्ट और बेहतर बनाया जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने आज टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि क्षय रोग से प्रभावित लोगों के संपर्क में आए पात्र परिवारों में क्षय रोग से बचाव के इलाज का दायरा 55% और डिफ्रेंशिएटेड टीबी केयर 74% तक पहुंच गया है। साथ ही 980,000 से ज्यादा चेस्ट एक्सरे किए गए हैं और निक्षय मित्रों के जरिए 115,000 से अधिक फूड बास्केट बांटी गई है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बचाव के लिए इलाज को तय समय सीमा में हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन आकलन के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने के साथ साथ नवीनतम तकनीकों के इस्तेमाल पर बल दिया। श्री यादव ने आज नई दिल्ली में वन और वृक्ष संसाधनों के आकलन में नवीनतम तकनीकों के उपयोग विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया। श्री यादव ने कहा कि मनुष्य प्रकृति से ऊपर नहीं है और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के लिए उसका सम्मान करना जरूरी है। उन्होंने स्वदेशी तकनीकों और वन कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के महत्व पर भी बल दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया।

है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। उन्होंने कहा कि आज विज्ञान केवल वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रह सकता, वैज्ञानिक अनुसंधान को सफल, टिकाऊ और व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए संचार प्रबंधन और कार्बन सिंक बनाने के देश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तकनीकी नवाचार के साथ मजबूत संस्थागत क्षमता भी जरूरी है। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के वन विभागों, वैज्ञानिक संस्थानों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसमें वन सीमाओं के डिजिटलीकरण, वन और वृक्ष आवरण के आकलन तथा कार्बन भंडार के अनुमान पर 3 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी तैयार, वैश्विक नेताओं का आगमन कल से शुरू। दिल्ली सरकार आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के लिए राज्य आपदा मोचन बल का गठन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। टोकी गई गाड़ी की ट्रैकिंग, चालान भुगतान तथा यातायात अपडेट के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की नई वेबसाइट शुरू। और 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ और आरजे खुशी। मतलब भाई देखिए, जब भी टाइम मिलता है शाम को भी शो करने का तो हम सोचते हैं कि क्यों आ ही जाते हैं शो करने के लिए, क्योंकि आप सभी से दूर तो हम भी नहीं रह पाते हैं। घर आने के बाद थोड़े बोर होने लग जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि चलो यार स्टूडियो चलते हैं, आप सभी के साथ कुछ गप्पे शप्पे लगाते हैं। फिलहाल आप ऑफिस से निकलने की तैयारियों में होंगे और बहुत से तो अभी ऑफिस में ही होंगे, और क्योंकि उनकी टाइमिंग होती है 10 बजे तक भी होती है। तो फिलहाल खुशी, तुम ये बताओ, अभी घर से भागी भागी आई हो, क्या हाल है तुम्हारे?
1: मेरे हाल चाल बहुत ही अच्छे हैं। और शाम की चाय, ओए होए होए,
0: मतलब तुम चाय पी के आ गई हो?
1: हाँ, मैं चाय पी कर आई हूँ। मम्मा ने गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय बनाई थी, तो उन्होंने कहा बेटा अब आप ऑफिस जा ही रहे हैं तो क्यों ना एक कप मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पी कर जाओ, आपका दर्द भी नहीं होगा और आप एनर्जेटिक फील करोगे। तो मैंने कहा चलिए, एनर्जी हाई लग रही है या नहीं लग रही है आपको बताओ मुझे?
0: नहीं, एनर्जी तुम हाई है क्योंकि तुम मम्मी के हाथ से चाय पी कर आई है ना, इसलिए।
1: हाँ, लड़की इशारा मेरा समझ गई है।
0: हाँ, और देखिए एक कप चाय मिल जाए ना तो आपकी थकान वैसे भी दूर हो ही जाती है, छूमंतर हो जाती है। तो फिलहाल हम इस इवनिंग शो में हम करने वाले हैं ऑफिस का मूड, यानी कि जब भी हम ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं ना तो जल्दबाजी में कभी कभी हम कुछ चीजें ऑफिस में ही छोड़ जाते हैं।
1: मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है यार। अभी देखो मैं ऑफिस से घर जाती हूँ तो कभी मैं अपना चार्जर भूल जाती हूँ, कभी मैं,
0: ये तो तुम डेली भूलती
1: हूँ, कभी मैं कुछ जो यू नो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, कुछ ऑर्डर्स मेरे आते हैं
0: वो भी बहुत टाइम तक रहते हैं तुम्हारे ऑफिस में।

0: एंड कोई मुझे गिफ्ट देकर जाता है तो वो भी मेरे यहीं पर रखे रहते हैं। और वो काम पहुंचाना रीना का होता है। रीना मेरी घर आती है, कहती है बहन आप अपनी ये जो चीजें हैं जो गिफ्ट्स हैं इनको संभालो वरना मैं रख लूंगी।
1: हाँ एक्चुअली मैं शाम को ऐसा होता है कि जब मेरे को यहाँ मौका नहीं मिलता है तो मैं अकेली बोर होती हूँ तो मैं इसके घर चलाती हूँ और देखती हूँ कि इसका सामान यही रखा है तो मैंने कहा चलो यार पहुंचा देते,
0: काम भी हो जाएगा नाम भी हो जाएगा।
1: यही है ना, किसी घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए भले ही सामान आपका हो।
0: हाँ एक तीर से दो निशाने, देख रहे हैं आप हमारे श्रोता सुन रहे हो ना आप। चलो अभी हम कार्यक्रम को ना आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले, जैसे अभी रीना ने कहा कि ऑफिस में ना हमारी कुछ ना कुछ चीजें छूट ही जाती हैं, है ना। अपने ऑफिस का आप काम पूरा किया, लैपटॉप बंद किया, बैग उठाया और सीधा घर की तरफ निकल गए। रास्ते में मूड एकदम अच्छा है लेकिन घर पहुँच कर जैसे ही फोन निकालते हैं एंड बैटरी देखते हैं 8% होती है और तभी याद आता है चार्जर। लेकिन चार्जर तो ऑफिस में ही रह गया जनाब, अब वापस ऑफिस जाने का मन भी नहीं है और फोन बंद होने का डर भी है। कई बार घर जाने की इतनी जल्दी होती है ना कि हम अब फोन का चार्जर, ईयरबड्स एंड बॉटल जैसी छोटी छोटी चीजें वही छोड़ आते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है दोस्तों, अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले वही चीज ढूंढते हैं जो हम शाम को भूल जाते हैं, है ना। आप भी ऐसा करते हो ना, मुझे पता है तभी आप इतना मुस्कुरा रहे हो जनाब। देखिए सबके साथ ये होता है, कॉमन सी बात है। ऑफिस से जब हम पूरा दिन काम करके थक कर घर जाने का जो एक्साइटमेंट होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है।
1: और तुमने ऑफिस की बात करी तो मेरे को ना कॉलेज की बात एक याद आ गई।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बताइए।
1: मैंने जबकि मुझे पता था कि 10 दिन की छुट्टी पड़ने वाली है और मैं लंच बॉक्स कॉलेज में भूल आई थी।
0: ओहो
1: 10 दिन बाद गई तो सोचो मैं उस लंच खोलने के बाद। और मेरी मम्मी डेली सुनाती थी पड़े होंगे ऐसे ही ना, तूने उसे धो के रखा होगा, अब जाएगी ना 10 दिन बाद जब उसको खोलेगी अच्छी परफ्यूम वाली खुशबू आएगी तेरे को। तो वो दिन मेरे को याद ही रहते हैं। बाकी ऑफिस से जब हम निकलते हैं तो जल्दबाजी इतनी होती है कि कुछ चीजें ठीक ही जाते हैं।
0: और सुबह जब हम ना बड़े प्यार से ऑफिस निकलते हैं ना तो मम्मी बड़े प्यार से ना जो लंच बॉक्स पैक करके देती हैं, दोपहर में खाना खाया और फिर काम में लग गए। शाम जब आती है ना तो घर जाने की जल्दी इतनी होती है कि बैग उठाया और निकल गए। घर पहुँच कर बैग खोला और अचानक याद आया, अरे यार लंच बॉक्स तो ऑफिस में ही रह गया। फिर दिमाग में पहला सवाल आता है अब कल सुबह कौन लेकर आएगा, और दूसरा सवाल क्या उसमें कुछ बचा भी है या ऐसे ही छोटी छोटी चीजें ऑफिस लाइफ का हिस्सा है। खासकर जब दिन भर काम ज्यादा हो और शाम को जल्दी निकलना हो तो दिमाग बस घर पहुंचने पर लगा रहता है। तो बताइए आपने ऑफिस में अब तक सबसे अजीब चीज क्या छोड़ी है लंच बॉक्स में। हाँ बताओ लंच बॉक्स में क्या छोड़ा है, कुछ बचाया है या नहीं, बस पूरा टिफिन फिनिश कर लेते हैं आप। कभी कभी ऐसा होता है ना रीना कि हम ना बाहर से कुछ ऑर्डर कर देते हैं या फिर दोस्त वगैरह ले आते हैं, हमारे जो क्लिक्स होते हैं जो हमारे है ना फ्रेंड्स होते हैं तो वो कुछ ले आते हैं तो हमारा लंच रखा रह जाता है।
1: हाँ,
0: चलो आज तो पेट भर गया अब लंच खाने का भी मन नहीं करता है।
1: और पता है जब घर जाते हैं ना तो देखते हैं मम्मी देख तो नहीं रही है, लंच को छुपके छुपके जो वो जो गाय के लिए खाना रखते हैं उसमें आराम से डालते हैं ताकि मम्मी को आवाज ना जाए। अगर मम्मी के पास आवाज गई तो 70 लेक्चर सुनने को मिल जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए सुबह उठती हूँ, तुम्हें ये नहीं दिखता है कि मैं तुम्हारे लिए सुबह उठ के लंच बनाती हूँ, यानी कि मुझे तो नींद आती नहीं है, तुम सबको ही नींद आती है इसीलिए तुम लंच खाते नहीं हो वापस ले आते हो। मतलब इतने ताने सुनने को मिल जाते
0: नहीं
1: हैं।
0: वो ताने सुनाने का उनका पूरा राइट भी बनता है ना रीना। देखो ना हमारी मम्मा सुबह 5 बजे उठ जाती है और इतनी मेहनत सबके लिए करती है, है ना, तो फिर थोड़ी सी तकलीफ तो होती है।
1: बिल्कुल, इसीलिए जब भी आप लंच लेकर जाए
0: तो उसको पूरा फिनिश करें,
1: करके ही लाए। अगर देखिए आप नहीं भी खा रहे आप आपने सोचा कि हम बाहर से कुछ खा लेते हैं तो कुछ जरूरतमंद को खाना आप दे दीजिए,
0: आप दे हाँ उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, ये ज्यादा बेस्ट आइडिया है।
1: लेकिन हम मिलेंगे म्यूजिकल ब्रेक के बाद, वो भी बहुत जरूरी है।
0: अरे हाँ यार चलो गाना सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा, उसके बाद लौट कर आएंगे, करेंगे आपसे और भी बातें। बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर मजेदार गानों के साथ, बातों के साथ। दो कुड़ी इधर बैठी है जी।

0: श्रोताओं, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। फिलहाल आप सभी को गुड वाली इवनिंग है। आई होप कि आप सभी ने भैया घर में पकवान है ना बना ली होंगी, है ना। खुशबू जो आ रही है मुझे यहाँ तक आ रही है, खुशबू तुम्हें आ रही है?
1: हाँ, मुझे खुशबू आ तो रही है,
0: सोंधी सोंधी सी।
1: मुझे ना आलू गोभी की खुशबू आ रही है।
0: ये लड़की आलू गोभी बहुत खाती है इसलिए इसको आलू गोभी याद आ रही है।
1: मुझे मिक्स वेज बहुत पसंद है, आलू गोभी मटर और भी उसमें बहुत सारी सब्जियां हूँ। और हो
0: बहन, ठंड का मौसम आने वाला है, मटर आलू मटर ही मिलेगा, टेंशन मत ले।
1: हाँ, आलू मटर फिर तो बस हर घर में यही है,
0: आलू मटर गोभी मटर।
1: कोई रिलेशन वालों को फोन आते रिश्तेदारों का भी तो हाँ जी ठीक है, हाँ आज खाने में क्या बनाया है? गोभी आलू, आज बनाया है मटर आलू, आज क्या बनाया है? गाजर आलू।
0: मोस्टली यही सुनने को मिल जाता है। फिलहाल देखिए हम काम की बात पर आते हैं।
1: हाँ।
0: यानी कि घर से शॉपिंग लिस्ट, शाम को ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और तभी घर से फोन आता है, आते हुए सब्जी ले आना और हाँ वो वाला सामान भी। अब वो वाला सामान तो पता नहीं कौन सा होता है। आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया इसका। और दूध भी, और आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं हाँ हाँ सब याद है, रहेगा, सब ले आऊंगा। फोन रखा और दो मिनट बाद आधी लिस्ट गायब हो जाती है। रास्ते में ट्रैफिक मिला, फोन आया, किसी फ्रेंड से बात हुई और शॉपिंग वाला बात दिमाग से निकल गई। घर पहुंचते ही पहला सवाल, सामान लाए? और हम बैग की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे शायद सामान खुद बैग में आ गया हो। तो आज शाम घर से अगर शॉपिंग लिस्ट मिले तो उसे याद रखने की कोशिश मत करना, फोन में लिख लेना और बताइए आपके घर में शाम को सबसे ज्यादा कौन सी चीज लाने की बोली जाती है, तुम बताओ।
1: मेरी घर में सबसे जब मैं घर की तरफ जाती हूँ तो मेरी मम्मा का मुझे कॉल आता है कि बेटा जब आप आओ ना तो उधर से दूध लेकर आना।
0: हाँ।
1: और कुछ सब्जियों की लिस्ट वो बता दी थी को कॉल पे, ये सब्जी लेकर आनी है। तो मैं जब घर ऑफिस से घर जाती हूँ तो मैं सामान जरूर लेकर जाती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे अभी आपने बोला कि फ्रेंड का कॉल जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार मेरी दोस्तों का कॉल आ जाता है। और आपको बताया कि जब लड़कियां बात करना शुरू करती है ना तो वो रुकने का नाम नहीं लेती। एग्जाम्पल हमारे दोनों का ही ले लीजिए। तो क्या होता है, मैं भूल गई एक बार ऐसा ही, तो मम्मी ने बोला बेटा मैंने आपको सामान लाने के लिए बोला था, कहाँ है? तो मैंने सोचा वो तो मैं भूल गई और मैंने मम्मी को मतलब एक बहाना दिया। मैंने बोला मम्मी वो ना रास्ते में एक आंटी जी मिल गई थी तो उनसे मैं बात कर रही थी और मैं भूल गई आपको सामान लेकर आना।
0: तो बात मम्मी बोलती है कि दोबारा जाओ, है ना।
1: हाँ, फिर मम्मी बोलती है अभी दोबारा जाओ, सामान लेकर आओ, उसके बाद घर पे बैठना आराम से।
0: लेकिन पता है खुशी, ऑफिस से निकलने से पहले घर से कॉल भी आ जाता है, अरे कितने मिनट में निकलना है? तो हम बोलते हैं बस 10 मिनट में निकल जाएंगे।
1: हाँ, बहुत कॉल आते हैं यार, मेरी फैमिली के तो बहुत ज्यादा कॉल आते हैं।
0: ऑफिस में शाम को एक लाइन बहुत बोली जाती है, बस ये काम खत्म कर लूं फिर निकल लूंगा, और बस और यही बस कभी कभी आधा घंटा खा जाता है। एक काम खत्म हुआ तो दूसरा सामने, दूसरा खत्म हुआ तो कोई और मैसेज आ गया, फिर अचानक लॉक देखते ही अरे इतना टाइम हो गया, घर पर भी बोल रखा है कि आज जल्दी ही आऊंगा, अब जल्दी निकलना है तो काम भी करना है और बैग भी पैक करना है। ऐसे में दिमाग की हालत ऐसी होती है जैसे एक साथ 5 ऐप चल रहे हो। तो बताइए आपके ऑफिस में बस 10 मिनट वाली बात सच में 10 मिनट रहती है या लंबी हो जाती है? मेरी लिस्ट तो हमेशा लंबी हो जाती है।
1: जब हम ऑफिस से घर की तरफ निकलते हैं ना तो हम सबसे कह देते हैं कि हाँ बस 10 मिनट लगेगा, लेकिन वो 10 मिनट ना कब 10-15 मिनट 20 मिनट में तब्दील हो जाते हैं हमें भी नहीं पता चलता है। और ऑफिस से निकलते वक्त अपने लैपटॉप बंद किया, चार्जर निकाला, बैग उठाया, बाहर आ गए, लिफ्ट में पहुंचे, अचानक दिमाग में ना सवाल आता है लैपटॉप बंद किया था या नहीं यार, अब वापस डेस्क पर जाने की इच्छा भी नहीं होती है, है ना, लेकिन मन है कि मानता नहीं है। फिर किसी आप कलीग को कॉल करते हैं, यार मेरे टेबल पे देखा लैपटॉप बंद था या नहीं, और अगर कोई बोले हाँ बंद है तब जाकर चैन मिलता है। सच में एवरीवन यही होता है जब दिमाग घर जाने की जल्दी में होता है, छोटी सी बात भी बड़ा डाउट बन जाती है ना, डाउट हो जाता है ना मन में देना। कई बार मेरे मन में भी डाउट हो जाता है कि पता नहीं मैंने चीजें ठीक से ऑफ की है नहीं की है, पर मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तुम बोलती हो हाँ ठीक है, तब मुझे लगता है कि चलो थैंक गॉड सब चीजें अच्छे से हो गई हैं।
0: लेकिन मुझे इसकी टेंशन नहीं होती है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बाद भी कोई शो करने के लिए आने वाला है।
1: हाँ, फिर तो कोई इशू नहीं है, बट मेरे साथ होता है।
0: और मेरे साथ ऐसा कब होता है जब मैं घर से निकलती हूँ ना तो ताला बार बार चेक करती हूँ, ये बंद हुआ या नहीं हुआ,
1: कभी खुल तो नहीं रहेगा। हाँ, मेरी फैमिली मेंबर्स भी ऐसे ही करते हैं, जब हमें कहीं जाना होता है घूमने के लिए या फिर कहीं भी रिलेशन में कहीं भी हम जाते हैं, मार्केट ही जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो ऐसे ही मैं भी ताला चेक करती हूँ लॉक किया है ठीक से या नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि हमने सोचा

0: लिंच, ट्रैफिक पूरे दिन ऑफिस में बैठकर काम किया और अब लगता है कि बस जल्दी से घर पहुंच जाए, लेकिन सड़क पर निकलते ही हर किसी को जल्दी होती है। आगे वाली गाड़ी धीरे चल रही है, पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है और साइड से कोई निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रैफिक में हॉर्न बजाने से सड़क खाली होने वाली नहीं है। इसीलिए जितनी जल्दी घर जाने की हो उतनी ही जरूरी है पेशेंस रखें, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है और उसकी जल्दी नहीं, आप बस सुरक्षित पहुंच जाइए। तो आप देखिए, जब ऑफिस से निकलते हैं तो आपको जल्दबाजी रहती है या फिर सोचते हैं कि यार घर ही तो जाना है, कौन से मुझे बॉस का डांट सुनना है जो मैं इतनी जल्दबाजी करूं। पेशेंस के साथ गाड़ी चलाइए जी, क्योंकि शाम के वक्त ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा आपको मिल जाता है। लेकिन देखिए, ट्रैफिक के साथ साथ हम आगे भी बढ़ेंगे।
1: अब बात कर लेते हैं हम सिग्नल पर जल्दी। आजकल ना पता है दीदा क्या हो गया है ना, आज के टाइम में ना इंसान के अंदर धैर्य बहुत कम हो गया है। पेशेंस नाम सुना है ना, धैर्य, पेशेंस।
0: हाँ बिल्कुल,
1: आजकल हर लोग सोचते हैं जैसे 5 मिनट में मैगी बन जाती है ना, वैसे ही कि सारी चीजें 5 में हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। शाम को ट्रैफिक में सबसे ज्यादा टेम्पेशन कब होता है, जब रेड लाइट लगी हो और आपको लगता हो कि बस अभी निकल जाऊं तो 2 मिनट बच जाएंगे, लेकिन वही 2 मिनट कभी भी बहुत भारी पड़ सकते हैं। घर जाने की जल्दी में ट्रैफिक रूल्स को भूलना बिल्कुल समझदारी नहीं है। रेड लाइट है तो रुकना है, हेलमेट है तो पहनना है, सीट बेल्ट है तो लगानी है, और ड्राइविंग करते समय फोन नहीं चलाना है, क्योंकि ऑफिस में आज का काम ना भी जरूरी क्यों ना हो, घर पहुंचने के बाद कल भी काम किया जा सकता है। लेकिन आपकी सेफ्टी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो आज शाम घर निकलते समय एक प्रॉमिस करें, जल्दी होगी लेकिन रूल्स नहीं भूलेंगे।
0: ये तो बात तुमने बिल्कुल सही कही है, जल्दी हो लेकिन जल्दबाजी में जो ट्रैफिक रूल है उसको नहीं भूलना चाहिए। बस पहुंचने वाली हूँ, है ना, यही बोलते हैं। घर से फोन आया, कहाँ पहुंची, और जब जवाब बस 10 मिनट में। अब असली कहानी शुरू, 10 मिनट बाद फिर फोन, अब कहाँ हो, जवाब बस ट्रैफिक में हूँ, और 20 मिनट बाद फिर से वही ट्रैफिक। शाम के समय हम सबने कभी ना कभी ये 10 मिनट वाला झूठ बोला ही होगा, और शायद अभी भी आपने बोला होगा। मतलब झूठ नहीं, उम्मीद होती है कि सच में 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक वाली प्लानिंग से नहीं बचता। इसीलिए घर वालों को एग्जैक्ट टाइम बताने की बजाय थोड़ा सस्पेंस, मतलब देखिए, आप कभी भी घर से फोन आए तो ये मत बोलिए कि मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, उनको बोलिए कि आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पास कॉल भी आधे घंटे बाद ही आएगा। अगर आपने 5 मिनट बोला तो घड़ी में घर वाले ना टाइम देखते रहते हैं, भैया जैसी 5 मिनट 10 मिनट हुआ कॉल आ जाता है आपके पास। और अगर देर हो गई तो एक कॉल करके बता दे, आखिर घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। और इसी इंतजार के साथ मैं लेती हूँ यहाँ पर म्यूजिकल ब्रेक, और फिर मिलेंगे आप सभी के साथ श्रोताओं। यही मिलने वाले, कहीं नहीं जाइएगा, ठीक है जी।

0: अरे वारीना, ये गाना कितना खूबसूरत है ना। हमारी शाम कितनी खूबसूरत हो गई और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी ये गाना अब बहुत पसंद आया होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। और दोस्तों, रास्ते में ना याद आया काम, ऑफिस से जब आधा रास्ता हम निकल चुके होते हैं ना, फिर अचानक याद आता है, अरे वो जरूरी फाइल तो मैं ऑफिस में ही भूल गई या भूल गया। जब मन में दो आवाजें कहती हैं वापस जाऊं, दूसरी आवाज कहती है कल देख लेंगे, काम जरूरी है तो वापस जाना पड़ेगा, और अगर जरूरी नहीं है तो पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचते हुए निकल जाएगा। देखिए, जब आप ऑफिस से घर आते हैं ना, तो उससे पहले ना, घर आने से पहले ऑफिस में आप 5 मिनट ये चीजों चेक कर लीजिए, जो आपकी इम्पोर्टेंट फाइल हैं, जो मोस्ट फाइल्स हैं, कुछ काम है, कुछ चार्जेस वगैरह हैं, तो इनको पहले ही चेक कर लीजिएगा, एंड आपको शाम का ना, आपका जो शाम का आधे घंटे का स्ट्रेस है ना, वो बच जाएगा। ओके, तो इन चीजों को ध्यान में रखो, बाकी अपने सफर को एंजॉय करो। और आगे क्या बोलने वाले हो रीना, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो इतना? हाँ,
1: अरे मैं ये इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि घर पहुंचकर भी आराम नहीं मिलता है ना।
0: घर पहुंचकर आराम तो मिलता है, फोन चला। अच्छा चलो, अभी ये आराम की बात आपने की है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप ऑफिस से घर जाती हो तो सबसे पहले क्या करती हो आप ऑफिस से घर जाने के बाद?
1: देखिए, सबसे पहले मैं ऑफिस से घर जाती हूँ तो मेरा पहला काम यही होता है पूजा, क्योंकि यहाँ तो मेरी मम्मी पापा नहीं, मैं अकेली रहती हूँ ना, तो भाई पूजा टाइम पर होनी चाहिए। 7 बजे, 7 बजते ही घर में दीपक जलने स्टार्ट हो जाते हैं, शाम को 6 बजते ही।
0: जी जी जी,
1: लेकिन मैं तो लेट जाती हूँ, 7:30 भी हो जाते हैं, तो मेरे दिमाग में पहले पूजा ही क्या ख्याल आता है, उसके बाद फिर मैं किचन की तरफ बहुत सोच समझ।
0: पूजा का ख्याल आता है और दीपक का ख्याल नहीं आता है?
1: अरे पूजा दीपक एक ही साथ जल जाता है ना।
0: पूजा तो अलग होती है और दीपक अलग होता है?
1: नहीं, हम भगवान जी का नाम लेते हैं।
0: हाँ देखिए, पूजा करना उसके बाद दीप जलाना, ये बहुत ही घर में एक पॉजिटिव वाइब आती है और अच्छा भी लगता है। अरे जब हम पूरा दिन ऑफिस से थक जाते हैं, जब हम भगवान के सामने मस्तक अपना झुकाते हैं और दिया जलाते हैं, तो मन को सुकून मिलता है।
1: हाँ, उनके सामने मतलब दिन भर की जो थकान होती है ना, मैं कभी कभी मतलब मैं परेशान भी होती हूँ ना, तो तुलसी के पौधे के पास जाकर बैठ।
0: अरे वाह क्या बात,
1: वहाँ जाकर मैं गुनगुनाती हूँ, कुछ मैं बातें कहती हूँ,
0: वहाँ पॉजिटिव वाइब फील होती है आपको?
1: मतलब मेरे अंदर जो भड़ास होती है ना, मैं सारी कहती हूँ वहाँ पे, आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मैं परेशान।
0: अच्छा,
1: मतलब मैं उनसे बात करने की कोशिश करती
0: हूँ। हाँ नहीं, कोशिश अच्छी बात है, अपनी ना दिल में ना कोई भी बात रखनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी चीजें हैं वो उसको एक्सप्लेन करने से ना हमारा मन हल्का हो जाता है।
1: और मैं कहीं भी, चाहे घर रहूं चाहे बाहर रहूं, तुलसी का पौधा जरूर मैं अपने पास अपने घर में लगाती हूँ, और परेशान होती हूँ तो मेरा वही अड्डा होता है।
0: नहीं बहुत अच्छी बात है, अब नेक्स्ट टाइम कभी तुम परेशान, मुझे लगा ना कि लड़की दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं अब मेरे को आइडिया मिल गया, ये पक्का तुलसी जी की पौधे के पास जाकर बैठी होगी।
1: हाँ, अब तुम्हें आइडिया मिल गया ना।
0: हाँ,
1: तो देखिए, ऑफिस से निकलते समय हम सोचते हैं आज घर जाकर आराम करेंगे, आराम करूंगी, लेकिन घर का दरवाजा खुलते ही दूसरा शेड्यूल सामने आ जाता है। सब्जी काटनी है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, घर का कोई काम है, या अगले दिन की तैयारी करनी है। जो हमारी लेडीज होती है ना, प्यारी विमेन होती है, उनके दिमाग में ये खुराफात जरूर चलता है जो ऑफिस से काम करके आती है। और साथ ही साथ खासकर वर्किंग वुमेन के लिए ऑफिस खत्म होने के बाद, मतलब हमेशा काम खत्म होना नहीं होता, इसीलिए अगर आप ऑफिस और घर दोनों संभाल रही हैं, तो खुद को भी थोड़ा टाइम देना बहुत जरूरी है। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कभी कभी कभी खाना।
0: आज जब आप ऑफिस से घर निकले एक

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
1: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
0: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक DM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है? शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
0: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: कार्य।
1: नमस्कार मुरादाबाद, कैसे हैं आप सभी? तो आज होगी खूब सारी बातें, और कहते हैं ना जी, शाम हो चुकी है, दिन भर की भागदौड़ थोड़ी धीमी हो चुकी है और वक्त है अब बातें करना। थोड़ा सा पॉज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई साहब, इतना सुना है आज, मन कर रहा बस चुपचाप से फटाफट घर पहुँचूँ, जल्दी से खाना खाऊं और थोड़ा आराम दूं। जब पूरे दिन की थकान हो जाती है ना, तो भाई किसी को भी कुछ सुनने का मन ही नहीं करता। वो कहते हैं जी बस गाने सुनो बढ़िया से और थोड़ा दिल को आराम दो। तो आज भी ना हम शो बिल्कुल हल्का फुल्का रखेंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग, और सिर्फ दिल की बातों की बातें करेंगे। थोड़ी सी मस्ती होगी, थोड़ी शरारत होगी, कुछ प्यारी सी शायरी होगी, आपकी खूब सारी कॉल्स होंगी 9837896896 पे। जैसे ही आप डायल करेंगे, इधर से आवाज आएगी, हाँ भाई साहब दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? और उसको सुनकर आप ये बोलोगे, अरे यार ये तो हमें पहले से ही पता, हम कैसे हैं, कुछ नया पूछो। तो कुछ नहीं साहब, दुनिया की नई नई झटपट खबरें भी आपके साथ पेश करेंगे, मगर पहले हम लेते हैं अपने नए कॉलर को और बात करते हैं हमारे पहले कॉलर से कि वो क्या कहना चाहते हैं आज। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
2: हेलो दिल से दिल तक सर, सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
1: सर हमें भी आप, मतलब हम भी कहते हैं आपसे मोहब्बत भरा नमस्कार। आप एकदम ऐसी लाइन बोल देते ना, मोहब्बत भरा नमस्कार, कंफ्यूज हो जाता है भाई साहब, एकदम मोहब्बत वाला नमस्कार कैसे आ गया?
2: सर जब बोलो तो मोहब्बत भरी बोलो ना।
1: हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही बोली। और क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप अपना नाम बताइए बाकी श्रोताओं को जो आपको पहली बार सुन रहे हैं।
2: सर मैं जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से आपका नेम श्रोता मोहम्मद इशरत आपसे बात कर रहा हूँ।
1: तो इशरत जी इस समय क्या कर रहे हैं आप?
2: सर इस टाइम तो खाना खाकर छत के ऊपर बैठा हूँ आराम से और प्रोग्राम सुन रहा था आपका, काफी अच्छा लगता सर आपका प्रोग्राम।
1: तो छत पे बिल्कुल नेटवर्क बढ़िया करके आ रहे हैं
2: सर? नेट बड़े मस्त आ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम में थोड़ी चेंजिंग हो रही है, दिन में ठंडा और मतलब रात में ठंडा दिन में गर्म।
1: मौसम में चेंजिंग कर दिया आपने?
2: जी सर बिल्कुल,
1: वेदर चेंज कर दिया आपने
2: सर, बारिश कम है, कुल मिलाकर रात को अच्छा हो रहा है मौसम, दिन में गर्म है।
1: तो कोई जो है कोई बात जो दिल से निकली हुई है आप सुनाना चाहेंगे?
2: सर मैं सभी से कहना चाहता हूँ आप उसमें भाईचारे के संग रहें और किसी के साथ में बुरा नहीं करें, जो फिगर अच्छी करें और मतलब किसी को खमाखाई नहीं सताएं।
1: आप मुरादाबाद कितनी बार घूमने आए हैं?
2: सर मैं मुरादाबाद चला गया लगभग 10 दफा।
1: 10 दफा में कोई ऐसी जगह जहां आपको पसंद आई हो कि भाई साहब मैं जब भी आऊंगा तो इस बार यहां पे जरूर घूम के जाऊंगा?
2: सर मुरादाबाद में मतलब जहाँ भी चले जाओ सारी जगह अच्छी है काफी।
1: ये तो आपकी तारीफ जो है ना बिल्कुल बिल्कुल एकदम जो है अच्छी लग रही है, मगर ये जगह बताओ
2: सर,
1: आप
2: अच्छा शहर है मुरादाबाद, घूमने जाए वहाँ पे काफी अच्छा लगता है सर।
1: क्या डाक खाना भी अच्छा लगता है आपको?
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो डाक खाने ही है।
1: तो आप क्या सारी चिट्ठियाँ यहीं पे, मतलब सारी चिट्ठियाँ ला के यहीं डालते हो आप मुरादाबाद में?
2: सर रामपुर में डाल देते हैं, मुरादाबाद में डाल देते हैं।
1: तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, क्या है दिल की फरमाइश आज?
2: सर आज मैं गाना सुनूंगा, मूवी का नाम है चाहत, और चाहत मूवी का टाइटल सॉन्ग प्ले कर देना आज के शो में सर।
1: चाहत मूवी का टाइटल सॉन्ग, मगर ये बताइए कोई शायरी, तब तक हमें कोई शायरी एक आध अपने श्रोताओं को सुनाइए।
2: कहते हैं किसे अपना बनाए कोई इस काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए कोई इस काबिल नहीं मिलता, यहाँ पत्थर तो बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता।
1: क्या बात कही आपने, क्या बात कही, मजा आ गया
2: सर जी। सर गाना आपको डेडिकेट हो सकता सुनने वालों को।
1: धन्यवाद साहब, धन्यवाद, जरूर आपका ये जो गाना जो आपने हमें डेडिकेट किया है हमें भी अच्छा लगता है ये गाना सुनने में, बहुत ही बढ़िया।
2: पहले कहना चाहता हूँ आप हमारे तरफ आओ रामपुर में सर।
1: जरूर जरूर रामपुर आएंगे, जरूर रामपुर भी आएंगे और आपसे भी मिलेंगे और सारी खूब सारी ढेर सारी बातें भी करेंगे।
2: बिल्कुल सर हमें इंतजार रहेगा।
1: जरूर जरूर, तो चलिए आपकी फरमाइश ही पूरी करते हैं और खूब सारी बातें करेंगे।
2: थैंक यू, नमस्कार सर।
1: नमस्कार जी, नमस्कार। तो इशरत जी ने तो अपनी दिल की बात बता दी, वो कह रहे हैं साहब ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इस समय वो अपनी फरमाइश में चाहत मूवी का टाइटल ट्रैक सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर उनकी ये फरमाइश भी पूरी की जाएगी, और आपकी भी कोई फरमाइश हो ना तो सिंपल सा है साहब, सिर्फ फ़ोन उठाना है, जो भी आपके पास रखा है सामने डैशबोर्ड पर रखा है या हैंड ब्रेक के पास रखा है, 9837896896 पर कॉल करना और सिंपल से अपनी फरमाइश हमें बता देनी है। तो उठाइए किस बात की देरी है और मिलाइए फटाफट।

बहुत ही सुंदर ट्रैक है अलका याग्निक और विनोद राठौड़ जी की आवाज में, चाहत मूवी का, चाहत ना होती तो क्या होता। तो जरूर सुनिए, लिरिक्स लिखी है निदा फाजिल जी ने, तो जरूर इस गाने को एंजॉय कीजिए।

और साहब हर जगह जो है ना इस समय सिर्फ एक ही ट्रेंड चल रहा है। साहब कैसे लगते हैं आप 80 के दशक में? तो मेरे ख्याल से आपने भी ट्राई तो कर ही लिया होगा, और नहीं किया है ना तो साहब जरूर कीजिए, मजा कुछ और ही आ रहा है। तब तक करिए आप इस गाने को एंजॉय, और खूब सारी बात करनी हो दिल की तो 9837896896 याद तो आपको है।

दिल डूबा जी, दिल डूबा, हाँ जरूर डूबा होगा, इधर उधर तो कहीं ना कहीं डूबा होगा। जो कोई आपके पास में बैठा होगा उसके लिए तो कुछ ना कुछ डूबा ही होगा। तो दोस्तों, शाम का समय भी ना वैसे ही बहुत ही खूबसूरत होता है। सुबह तो होती है जिम्मेदारियों के नाम पे, दोपहर होती है अपने काम के नाम पे, लेकिन शाम, शाम जो होती है ना वो अपने लोगों के नाम ही होती है। एक शायरी इसी के ऊपर, कुछ रिश्ते आवाज़ से नहीं खामोशी से समझ आते हैं, कुछ लोग पास नहीं होते फिर भी दिल के सबसे पास होते हैं। तो बताइए, आपके लिए वो कौन है जिसे आप रोज़ याद तो करते हैं लेकिन बात रोआ जो है ना आपकी उससे रोज़ नहीं हो पाती? भाई साहब, भूल जाते हैं कभी कभी, या फिर आप ही भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई तो दोस्त होगा, कोई तो अपना होगा जिसकी यादें तो रोज़ आ रही हैं मगर बातें नहीं हो पा रही, या फिर कोई ऐसा खास इंसान जिसका नाम लेते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और कहते हैं ना, जब चेहरे पे मुस्कान आती है तो कई सारी बातें खुद ब खुद आपको ध्यान हो जाती है। तो कोई नहीं, हमारे पास लिसनर्स के बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, चलिए उन्हीं में से एक मैसेज शेयर करते हैं आपके साथ। हमारे पास मैसेज है, हेलो अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है जी, दिल से दिल तक, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपकी आवाज़, बोलने का अंदाज़ बहुत ही प्यारा है। ललिता कश्यप, नवीन नगर, मुरादाबाद से। ललिता जी धन्यवाद बहुत बहुत, और आपका भी मैसेज करने का अंदाज़ बहुत प्यारा है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मौसम ने करवट बदल ली है। अच्छा जी, स्टूडियो में है तो पता नहीं चल रहा, मगर अगर मौसम ने करवट बदल ली है ना तो मज़ा ही आ जाएगा। थोड़ी मीठी मीठी और ठंडी ठंडी हवा ज़रूर चलनी चाहिए, गर्मी से राहत मिलने वाली है सर जी, ज़रूर गर्मी से राहत मिलेगी। एक शायरी भी आपने लिखी है, ठंडी हवा चली तो दिल ने कहा कुछ खास है, आज की शाम में शायद कोई मीठी सी बात है, अखिल सर का नाम आते ही मुस्कान आ गई, लगता है इस मौसम में भी आपका ही एहसास है। क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद, क्या शायरी लिखती हैं आप। शायरी जो है ना, मतलब कहते हैं कभी कभी बिल्कुल दिल से आती है, और सच में जब सुनते हैं और उसे पढ़ते हैं ना तो बिल्कुल ही वो दिल वाला एहसास होता है। ठंडी हवाओं का मौसम है, फिजाओं में मिठास है, आज की शाम में कुछ तो खास एहसास है, अखिल सर जहाँ मुस्कुरा दें महफिल खिल उठे, शायद इसी का नाम खूबसूरत मौसम का राज है। क्या बात है, ये तो आपने एक पहेली भी पूछ दी साहब, खूबसूरत मौसम ऐसे ही होता है। तो ज़रूर आपकी फरमाइश वाला गाना जो है प्ले होगा और खूब सारी बातें होंगी। ये जो गाना है आपने, तेरी यादें चादर ओढ़े हैं, हस्बैंड को डेडिकेट करती हैं, तो ज़रूर आपके हस्बैंड को हम ये गाना डेडिकेट करते हैं और खूब सारा एन्जॉयमेंट करें, ये गाना सुने। फिर मिलेंगे आप सभी से 9837896896 पर, फिर मिलेंगे मतलब कॉल पे मिलेंगे, फिर मिलेंगे, ये नहीं कि भाई साहब अभी चलिए, अभी सिर्फ 9:30 हैं, तो खूब सारी मस्ती हमारी चलती रहनी चाहिए और दिल की बातें।

बिल्कुल ऐसे ही चिपके बैठना है गाड़ी में भी, क्योंकि स्टेयरिंग को आराम आराम से घुमाना है, सीधे पहुंचना। थोड़ा सा जाम होगा मगर फिर रास्ता बहुत ही आसान होगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपका भी मैसेज अभी हम पढ़ने वाले हैं।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
1: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
0: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉर्गेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: हे, यू आर ट्यून्ड इनटू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।

0: हर्ष पे। और कहते हैं ना साहब, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते के साथ ही आप खो जाते हैं। तो पक्का मुझे यकीन है इस गाने को सुन के आप भी खो गए होंगे, क्योंकि आपके अपने टाइम में जब भी कोई तस्वीर देखी तो कहते होंगे यार अब ये जो है ना तस्वीर से बाहर निकल आओ। और कहते हैं हर गाने की एक कहानी होती है, और इस गाने में जब ये पिक्चराइजेशन हुआ था तो इस गाने में जो आप पीछे कोरियोग्राफर देखेंगे बिल्कुल ब्लू कलर की, कहते हैं ना उन्होंने एक जैकेट सी पहन रखी है ब्लू कलर का, एक ड्रेस में है वो, तो वो कोई और नहीं, वो आपके खुद के गुरु, खुद क्या कहते हैं मतलब रेमो डिसूजा सर हैं, जो बहुत ही नामी कोरियोग्राफर हैं इस समय, और आपको तो पता ही है डांस इंडिया डांस के जज भी हैं। तो कहते हैं वो खुद ही, उनका एक स्टेटमेंट रहा है कि मैं इस गाने के बाद उनके खूब सारे चेंजेस हुए कोरियोग्राफी में और वो आज इस मुकाम पर हैं। तो हर गाने की सच में कोई ना कोई एक कहानी तो होती ही है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। और कहते हैं ना जब होती है खूब सारी नोकझोंक, खूब सारी बातें, तो ऐसा ही बंदा होता है कि घर में सबसे ज्यादा ना वो कहते हैं झूठ बोल देता है। तो कौन बोलता है झूठ घर में? कभी कभी पति कहता है कि भाई साहब मैंने तो पैसे खर्च नहीं किए, पत्नी कहती है कि मैंने भी शॉपिंग नहीं की है, और दोनों बच्चे जो कहते हैं ना वो कहते हैं भाई साहब हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो हो जाता है कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि सारी चीजें पकड़ी जाती हैं। चलिए कोई नहीं, अपने नए लिसनर से बात करते हैं और वो पूछते हैं उनसे क्या कह रहे हैं वो, आज क्या है उनकी दिल की बातें। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप
1: हेलो।
0: सर? कैसे हैं आप और कहाँ से बात कर रहे हैं, हमें सभी हमारे सारे श्रोताओं को बताइए।
1: मैं अच्छा हूँ सर। मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे, खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर।
0: तो इस समय क्या कर रहे हैं अमरजीत जी?
1: इस समय तो सर इंदौर में हैंडओवर का काम कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: तो इंदौर में इस समय इंदौर का मौसम कैसा है?
1: इंदौर का मौसम तो काफी अच्छा हो रहा है सर, ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश यहाँ पे गिरती रहती है।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कोई शायरी सुनाना चाहेंगे आप?
1: नहीं सारी तो नहीं सुनाना चाहूंगा, बाकी आपसे बात हो गई तो काफी अच्छा लग रहा है, आपका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज काफी पसंद आता है सर हमें।
0: धन्यवाद, धन्यवाद अमरजीत जी। तो ज़रूर कोई गाना बताइए, क्या फरमाइश है जो इस समय दिल से निकलना चाह रही है आपके?
1: सर मैं गीत सुनना चाहूंगा, कितनी हसरत छुपाए बैठा हूँ ये ना समझो के मुझसे प्यार नहीं।
0: कितनी
1: कितनी हसरत छुपाए बैठा हूँ ये ना समझो के तुमसे प्यार नहीं, ये गीत लगा देने का।
0: तो ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और किसको डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: ये थे मेरे भाई लोग, बड़े भाई शिवनाथ ऋषि पाल, बड़े भाई साहब अमर पाल, छोटा भाई श्री अम्मा, छोटा भाई शीतलाल, बस कहना दाता राम से दुआई ठाकुर जी, और बरेली से सारे मूल अंतर जी, मुरादाबाद से सलमान भाई जी, मुकेश कश्यप जी, अतर सिंह सैनी जी, रामपुर से भाई रफत साहब हैं, और आदिल खान हैं, और कुछ एमपी मध्य प्रदेश से रहेंगे जैसे नरेश त्रिपति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, भगवान सिंह परमार हैं, और अरगत सिंह लोधी हैं, और प्यारे प्यारे सुनने वाले हैं, साथ में आप हैं, अमरजीत नहीं सर।
0: इतनी लंबी लिस्ट थी, मैं तो सोच रहा था कि मैंने क्या लगता है आज जो है ना 5-10 मिनट तो पूरा डेडिकेशन में चला ही जाएगा।
1: नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर, आपके प्रोग्राम सुनते हैं ये लोग ना।
0: हाँ, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। चलिए ये भी आपने बता दिया इनडायरेक्ट वे में कि इतने सारे लोग तो हैं जो सुन ही रहे हैं हमें।
1: जी सर आपके प्रोग्राम काफी अच्छे लगते हैं, और सर मैं इस समय मोबाइल ऐप से आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं सर, इंदौर के पास में एक धारबिला पड़ता है नायसगढ़ के पास में,
0: ओके
1: तो
0: ओके,
1: वहाँ एक कंपनी है सर, उस कंपनी में काम करता हूँ मैं, कसीदा नाम से है वो कंपनी, और उसका जो ब्रांड भी रहता है सर दीवा नाम से रहता है,
0: किस नाम से?
1: दीवा नाम से रहता है उसका ब्रांड, जो कपड़े के शोरूम होते हैं उसमें
0: ओके
1: यहाँ पर
0: ओके
1: लेडीज
0: ओके,
1: सूट बनता है सर।
0: सही है साहब, सही है सही है। तो खूब खूब अच्छे से करिए काम, और जब भी आए रामपुर तो एफएम को फिर से याद करिएगा और मुलाकात करिएगा।
1: बराबर आपको याद करते रहते हैं, प्रोग्राम भी सुनते हैं सर आपके बराबर।
0: धन्यवाद अमर जी, जी धन्यवाद, आपकी भी फरमाइशें पूरी करते हैं और जल्द ही मुलाकात करते हैं दोबारा। धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
0: तो श्रोताओं, आज हमारे अमरजीत जी जो रामपुर के रहने वाले हैं मगर इस समय इंदौर में हैं अपने काम की वजह से, जहां वो काम करते हैं। तो खूब बढ़िया सी एक फरमाइश भेजी है। लिस्ट तो आपने सुने ली थी कि उनकी लिस्ट कितनी लंबी थी, तो चलिए उनकी फरमाइश सुनते हैं। मगर हाँ, जैसे जैसे हम पहुँच रहे हैं अपने शो के एंडिंग की तरफ, तो हमारे लिसनर्स हैं जो हमें मैसेजेस कर रहे हैं, थोड़े से उनके भी नाम ले लिए जाए, उनसे भी बात कर ली जाए। एक हमारे लिसनर हैं, कह रहे हैं सर जी प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, सलमान अख्तर साबी दोस्त बिजनौर यूपी 20 से। तो सर बिजनौर से तो हमारा खास जुड़ाव है, और बहुत ही बढ़िया जो आपने बिजनौर से हमें मैसेज कर दिया। उसके बाद है हमारे पास हमारी ही परमानेंट लिसनर यादव फैमिली से मैसेज है। सर हमारे पूरे परिवार की तरफ से अखिल सर जी को प्यार भरा नमस्कार, हमारी तरफ से भी आपके पूरे परिवार को प्यार भरा नमस्कार। लाइन पर मुरादाबाद प्रकाश नगर चौराहे से बोल रहे हैं यादव फैमिली। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ जिंदगी की ना टूटे लड़ी ज़रूर ये गाना हम आपकी प्ले करेंगे अभी। और एक शायरी लिखी थी, फूल है गुलाब का नशा है शराब का, आप तो कभी पूछते नहीं इसलिए हम ही पूछ रहें क्या हाल है आपका। तो साहब बिल्कुल हाल बढ़िया है और मस्त है। तो चलिए करते हैं खूब मस्ती, ये गाना सुनते हैं और फिर आपकी फरमाइश पूरी होती है।

जिंदगी की ना टूटे लड़ी। एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुराद। ये आपका अपना

जैसे जैसे सुइयां 10 की तरफ बढ़ रही हैं, वैसी वैसी हमारी भी स्पीड इस शो की तरफ बढ़ती जा रही है कि कब जल्दी से जल्दी शो में मज़ेदार दिल की बातें हों और उसके बाद आराम से प्यारी सी नींद सी हो। तो कोई नहीं, थोड़ी सी लेटेस्ट न्यूज़ सुनाते हैं आप भी और हम भी, देखते हैं क्या चल रहा है इस दुनिया में इस समय। सबसे पहली खबर यह है कि ब्रिक्स समिट पर जो होने वाली है अपनी ही नई न्यू दिल्ली में, उस पर सबकी नज़रें हैं और ये होने वाली है 12 और 13 सितंबर को, जिसमें ब्रिक्स के लीडर्स दुनिया भर से आ रहे हैं जो ब्रिक्स समिट में हैं। और मध्य पूर्व में जो चल रहे तनाव है ना, उनके बीच में ये बैठक हो रही है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ब्रिक्स देशों के बीच क्षेत्रीय संकट, ऊर्जा और वैश्विक राजनीतिक जैसे मुद्दों पे चर्चा की उम्मीद है। तो मतलब यही कहा जा सकता है, यानी आने वाले दिनों में दिल्ली सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया की निगाहों का भी केंद्र रहने वाली है। भारतीय शेयर बाजार ने आज उतार चढ़ाव के बीच दिन का अंत बढ़त के साथ किया। सेंसेक्स करीब 138 पॉइंट्स ऊपर, जबकि निफ्टी करीब 46 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। तो साहब, मार्केट वालों के लिए तो आज का दिन थोड़ा रोलर कोस्टर जैसा रहा होगा। 100% है आज, इधर उधर खूब भागा दौड़ी रही होगी। तो चलिए कोई नहीं, लास्ट न्यूज आप सभी के लिए सुना देते हैं। फिलीपींस में पेलवान के पास एक फेरी में आग लगने की खबर सामने आई। तो शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों को बचाया गया और कई लोग लापता बताए गए। हादसे की जांच जारी है। तो सर, हमारी संवेदना प्रभावित लोगों के साथ है, उनके परिवार के साथ है, जल्द ही सब अच्छा होगा। चलिए, इतनी सारी खबरों के बाद अब थोड़ा सा टाइम है आप सबके मैसेजेस पढ़ने का और हमारे जो कॉलर लाइन पे उनसे बात करने का। मगर उससे पहले जो हमारे लिसनर्स के मैसेजेस रह गए थे उनको थोड़ा सा बता देते हैं आपके लिए भी। हमारे पास शायरी आई है, तेरे बाद किसी से दिल लगाया ही नहीं, टूटे हुए दिल को फिर समझाया ही नहीं, तूने तो भुला दिया हमें पल भर से, हमने तुझे आज तक भुलाया ही नहीं, हर रात तेरी यादों में गुजर जाती है, आँखों से नींद भी रूठ जाती है, तू लौटे या ना लौटे मेरी ज़िंदगी में मेरा दिल तेरा इंतज़ार करना छोड़ता ही नहीं। तो रामपुर से शबनम बी जी का ये मैसेज है और ये पूछ रही, हेलो सर कैसे हैं आप, ये शायरी इशरत जी के लिए। तो इशरत जी ने तो अब तक सुन ली होगी ये शायरी। अगला मैसेज है हमारे पास, अखिल सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी बातें करने का अंदाज हमें बहुत पसंद आता है और आपकी आवाज़ सुन के प्रोग्राम का मज़ा और भी बढ़ जाता है। तो मेरी भी एक छोटी सी फरमाइश है, अगर प्रोग्राम के हिसाब से मुमकिन हो तो ये ज़रूर सॉन्ग प्ले करेगा, ज़रूर ज़रूर आप बता दीजिए, आपकी आवाज़ में अपनी फरमाइश का गाना सुनने का इंतज़ार रहेगा। है राज जरा थम के गुजर मेरा चांद मुझे आया है नज़र, तो ज़रूर ये आपकी फरमाइश प्ले होगी। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स आसिफ फ्रॉम इटली, तो इटली में हैं आप और आपको ये गाना तो हम ज़रूर प्ले करेंगे, चलते चलते ये सॉन्ग भी आपके लिए ज़रूर प्ले होगा। तो चलिए दोस्तों, खूब सारे मैसेजेस आज हमने पढ़ लिए, हमारे साथ जितने भी हमारे लिसनर्स के मैसेज आए थे हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर कोई रह भी गया तो कोई बात नहीं साहब, कल का दिन भी अभी बाकी है।

0: चलिए अपने लिसनर को लेते हैं लाइन पे, कॉल पे, और बात करते हैं क्या कहते हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका? गुंजन जी, कैसी हैं आप? बढ़िया है। और क्या कर रही हैं इस समय आप? आप गाना सुनना चाहती हैं, शायरी सुनाना चाहती हैं? सुनाइए सुनाइए, जरूर जरूर। पीछे से एफएम की जो आवाज है वो थोड़ी हल्की कर लीजिए।
1: बादल बादल बरसा पानी, आज रंगम सब मनमानी, रिम रिम रिम रिम बरसा पानी।
0: क्या बात है, क्या बात है। शायरी कम, पोयम ज्यादा है। तो कौन सा गाना सुनना चाहती हो गुंजन जी? ये आपने शायरी की तरह सुना दिया, चलिए बहुत ही अच्छा। और खूब सारी पढ़ाई करो, खूब सारे मजे करो, ठीक है?
1: गुड नाइट भैया, पूरे सुनाना।
0: गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। तो ये जुड़ी थी हमारे साथ गुंजन जी, छोटी सी है मगर है ये पटाखा बड़ी। हमारे साथ आज नरेंद्र सिंह जी भी जुड़े थे, जिन्होंने कहा था कि दर्द भरा गाना हमारे लिए प्ले करेगा। तो हमने जिंदगी की टूटी हुई लड़ी है वो गाना भी होने के लिए हमने डेडिकेट कर दिया था। तो चलिए पढ़ते हैं आगे इस गाने के साथ, और आपकी भी कोई फरमाइश हो तो बता दिएगा, क्योंकि अभी एक लास्ट कॉल बाकी है।

0: तो दोस्तों आज का 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। शायरी भी हो गई, मस्ती भी हो गई और थोड़ी बहुत दुनिया भर की खबरी भी हो गई। तो ज़िंदगी में ना, मतलब एक बात जो मेरे मन में आई है और जाते जाते ज़रूर मैं बात कहूँगा, ये कि ज़िंदगी में परेशानियाँ हमेशा रहेंगी, लेकिन मुस्कुराने की वजह हमें खुद ही तलाशनी होगी। और मेरी तरफ से आपके लिए ना एक आखिरी शायरी है, मुस्कुराते रहो तो ज़िंदगी खूबसूरत लगती है, खामोश रहो तो हर बात अधूरी लगती है। जो पल मिला है उसे भी जी भर के जी लो, जो पल मिला है उसे जी भर के जी लो, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं बस यादों में लौट कर आती है। तो मैं हूँ आपका अपना अखिल और आप सुन रहे थे अभी दिल से दिल तक। चलने से पहले हमारे पास स्वाति जी की कॉल आई थी और स्वाति जी ने एक बढ़िया सा गाना अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट करने को कहा था, तो क्यों नहीं एक बढ़िया सा गाना डेडिकेट करते हैं और आपसे भी विदाई लेते हैं, जहाँ हमारी खूब सारी आज बातें जो हुई है ना, खूब सारी यादगार बन गई है। तो मिलते हैं फिर कल एक नई शाम को, नई बात के साथ, नई मस्ती और नए अंदाज के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिएगा।
1: के हमने सारी पीली हंसी।
0: हाँ जी, तो ये डेडिकेट किया है स्वाति जी ने अपने हस्बैंड के लिए और आपकी भी जो डेडिकेशन है ना, वो कल ज़रूर पूरे होंगे। 9837896896 पर कॉल मिलाते रहिए और अपनी फरमाइश प्ले करवाते रहिए।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
1: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
0: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर साहनी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉर्गेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।